0: ताकि जो मतलब तुमसे फौत हो गया हो उसका गम ना खाया करो और जो तुमको उसने दिया हो उस पर इतराया ना करो और अल्लाह किसी इतराने और शेखी भगाड़ने वाले को दोस्त नहीं रखता।
1: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد।
0: जो खुद भी बुखल करें और लोगों को भी बुखल सिखाएं और जो शख्स रूगर्दानी करे तो अल्लाह भी बेपरवाह है और वही सजावार हम्द सना है।

وقال

وضع

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और इन बागों के अलावा दो बाग और हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? दोनों खूब गहरे सब्ज, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

0: के लिए हैं, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हर चीज जो आसमानों और जमीन में है उसकी तस्बीह कर रही है, और वो जबरदस्त और हकीम है। ए अल्लाह पाक, तू रहमान है, तू रहीम है। हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हमें माफ फरमा। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा। ए अल्लाह पाक, इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान हैं, हमारे वतन के अवाम भी परेशान हैं। हमें इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल। अपने प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके में अमान दे दे, हमारे दिलों को मोहब्बत से भर दे। तू रहमान है, तू रहीम है, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो मातूब नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं हैं। ए हमारे रब, हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाएं, उन पर गिरफ्त न कर। मालिक, हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। परवरदिगार, जिस बार को उठाने की ताकत हम में नहीं है वो हम पर न रख। हमारे साथ नरमी कर, हमसे दरगुजर फरमा, हम पर रहम कर। तू हमारा मौला है, काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। ए करीम, हमें माफ फरमा। तू रहमान है, तू रहीम है। हमारी दुआएं अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके में कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظيم.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101.

निकल जाता हूँ रास्ता देखने। और सुबह 10 बजे धूप की पहली किरण लगती है, थोड़ा सा हीट मुझे मिलता है, अचानक मेरा जो है जिसमें एक झटका सा महसूस होता है और मैं अपने आप को कहता हूँ कि यार उस वक्त मेरा सेंस

0: 101
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
2: सुनते रहिए FM 101.
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101।

شکریہ آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: तेरह जून PC होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
2: शुक्रिया आपने
1: FM 101 किया। सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
2: शुक्रिया आपने
3: FM 101 किया। मैंने सुना है खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
4: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
3: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
5: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
6: खानदानी मंसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
5: सोच को आजाद करो, खानदानी मंसूबा बंदी को आम करो।
7: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: सुनते रहिए FM 101 101।

0: चलो यार।
1: हेलो।
0: हेलो। ओके।
2: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
3: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
2: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
4: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
5: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
4: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
6: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
7: सुनते रहिए FM 101.1। सुनते रहिए FM 101.1।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: सुनते रहिए FM 101 101।

सुनते रहिए FM 101 101।

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: सुनते रहिए FM 101 101।

0: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अल्शफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की ज़िंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मज़ीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विज़िट करें www.alshifaeye.org।
1: सुनते रहिए FM 101। सुनते रहिए FM 101।
0: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अल्शफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।
3: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन कौंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
1: सुनते रहिए FM 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: आपने FM 101 ट्यून किया।
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ़ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बे फॉर्म, शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म चीन के 4 रोजा दौरे के पहले मरहले में हांगजू रवाना हो गए हैं। खजाने के वज़ीर मुमलिकत ने साजगार कारोबारी माहौल पैदा करने के लिए हुकूमत के पुख्ता आज़म का इआदा किया है। अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने कहा है कि इसने यूक्रेन के तनाज़े के पुरअमन हल के लिए हमेशा मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत की है। पंजाब हुकूमत ने सूबे में जानवरों की बाकियात को ममनुआ मकामात पर ठिकाने लगाने पर लोगों की हौसला शिकनी के लिए आगाही मुहिम शुरू की है। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने 4 रोजा दौरे चीन के पहले मरहले में हांगजू रवाना हो गए हैं। हांगजू में वज़ीर आज़म यी जियांग सूबे के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे। वो एक बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे जिसका मकसद CPEC के दूसरे मरहले के तहत पाकिस्तान और चीन की कंपनियों के दरमियान तआवुन को फरोग देना है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

मेरा ठीक एक बजे तक. आई होप कि आप लोग इस साथ को एंजॉय करेंगे. गर्मी बहुत ज्यादा है बाहर, सो ख्याल रखिएगा. घर से बाहर निकलते वक्त पानी की बोतल जरूर साथ रखा करें. इसके अलावा अम्ब्रेला भी साथ रख सकते हैं. इसके अलावा सन ग्लासेस का इस्तेमाल जरूर करें. साथ में सन ब्लॉक, एक कोई प्यारा सा अच्छा सा सन ब्लॉक जो है ना वो इस्तेमाल करें. और अब तो इतनी किस्म के सन ब्लॉक आ चुके हैं कि समझ नहीं आती कि कौन सा वाला जो है ना. हर कोई अपनी अपनी रिकमेंडेशन दे रहा होता है और जब हम इस्तेमाल करते हैं ना तो बाद में अफसोस होता है यार पैसे जाया हो गए. इसलिए कहते हैं कि पहले कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले जो है ना वो थोड़ा सा उसके रिव्यूज जरूर ले लिया करें और उसके बारे में जो है ना थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें ताकि जो है आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली जो है ना वो चीज़ खरीद सकें. और बेहतर बेहतर ये होता है कि किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट पे जाएं और उनसे अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली जो है ना वो कोई अच्छा सा सन ब्लॉक जो है वो रिकमेंड करवा लें अपने लिए, वो अच्छा हो जाएगा. एनीवेज जी, इस शो में हम करते हैं ढेर सारी बातें, ढेर सारी गपशप करेंगे और लेडीज लाउंज है तो इसमें खास तौर पे जी खवातीन, वो मेरी माएं बहनें, मेरी कलीग, उन तमाम लोगों के लिए खास कर जो है ना हम ये सीट रखते हैं, हम ये शो रखते हैं जिसमें हम ढेर सारी बातें करते हैं, दिल की बातें करते हैं, वो बातें करते हैं जो हम नॉर्मल रूटीन में करते हुए हिचकिचाते हैं या यूं कह लें कि नॉर्मली जो है ना उनको इग्नोर कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया जाता है या फिर उनको जरूरी नहीं समझा जाता. वो तमाम बातें हम यहाँ पे करते हैं. कुछ मस्ती होती है, कुछ मौज होती है, कुछ मेला होता है, कुछ म्यूजिक होता है, कुछ आप लोग होते हैं, कुछ मैं होती हूँ, कुछ आपकी कॉल और फेसबुक के कमेंट्स होते हैं. ये सारा कुछ हम करते हैं इस दो घंटे के शो में. मेरा साथ दीजिएगा इस प्रोग्राम में. और साथ देने के लिए क्या करना है, साथ देने के लिए ये करना है आपने, एक तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं. एसएमएस करने के लिए आपने जाना है अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे, वहां जाकर आप लिखेंगे 101. जी हाँ बिल्कुल, 101 लिखेंगे स्पेस साथ एक पर. इसके अलावा फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज, उस पेज पर जाकर आप हमारी पोस्ट पर करेंगे कमेंट और प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे. लाइव कॉल्स अभी नहीं लूंगी ना, मैं ऑफर कॉल्स लेती हूँ. लाइव कॉल्स हम लेंगे 12 बजे के बाद और मैं कोशिश करूंगी कि जो लोग मुझसे शिकायत करते हैं ना कि मैं ज्यादा कॉल्स नहीं लेती हूँ, उनकी आज शिकायत दूर की जाए. ठीक है, सो बी रेडी फॉर दैट. साथ मुझे कहते हैं निमरा अरुण, ड्राइव करें तो आपको कहेंगे ड्राइव रियली वेरी केयरफुली बिकॉज आप और आपकी जान उन तमाम लोगों के लिए जिनसे आप प्यार करते हैं और उन तमाम लोगों के लिए जो आपसे प्यार करते हैं बहुत प्यारी है, बहुत कीमती है. इस स्पीड पर आपने गाड़ी नहीं चलानी जिस स्पीड पर मैं बोल रही हूँ. ठीक हो गया, स्टिक अराउंड टू एफएम.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं।
2: हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती।

किस प्रोग्राम में जिसको हम कहते हैं लेडीज लाउंज, एवरी सैटरडे मेरा और आपका साथ होता है। कभी कभी बीच में हम डंडी मार जाते हैं, जैसे कि लास्ट वीक में जो है ना, वो मैंने थोड़ी सी डंडी मार ली थी, कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से जो है ना मैंने सोचा कि नहीं, मुझे घर को टाइम देना चाहिए और कुछ गेस्ट आने थे, कुछ रेस्ट करना था, सब कुछ मिला जुला था। एनीवेज जी, आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट्स जो है ना वो थोड़ी देर तक शामिल करेंगे। अभी जनाब मुझे ये बताइए कि क्या हो रहा है, आज के क्या प्लान्स हैं, सैटरडे है और यकीनन आप लोगों का भी आज बहुत सारे लोग जो कि आज जिनकी छुट्टी है वो जा रहे होंगे मंडी शंडी जाके जो है ना वो कुर्बानी का जानवर उनका प्लान होगा खरीदने का, या फिर जस्ट विजिट करके आने का, कोई कीमतें शीमतें देख कर आने का कि भाई क्या रेट चल रहा है और किस तरह से रेट चल रहा है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। बहुत सारे घरों में जो है वो कुर्बानी का जानवर ले लिया गया है और इसी तरह रौनक जो है ना माशाल्लाह हमारे मोहल्ले में भी लगी हुई है। हमारे घर में जो है ना वो एक आधे दिन पहले ही आता है क्योंकि हमारे घर में संभालने का बड़ा इशू बनता है, तो इस वजह से जो है ना हम फिर रिकमेंड यही करते हैं कि अच्छा जी एक आधे दिन पहले जो है ना वो लेकर आएं। बच्चे बड़ा एक्साइटेड होते हैं, बच्चों को होता है यार, हर दफा बच्चों की ना शिकायत यही होती है कि नहीं जी हमारे घर तो एंड टाइम पर आता है। हालांकि इंजॉय कर रहे होते हैं, बाहर निकल रहे होते हैं नेबर्स में, साथ वालों के घर, माशाल्लाह बहुत रौनक होती है हमारी गली में। और बच्चे जो है ना वो कह लेंगे लगता यही है कि हमारे घर में है क्योंकि वो इतने फैले हुए होते हैं कि वो हमारे गेट के आगे भी होते हैं, सारा गंद हर चीज जो है ना वो हमारे घर के आगे गेट के आगे होती है। और मेरा ख्याल है कि एक दफा पहले भी मैंने ये बात शेयर की थी कि जब आप कुर्बानी का जानवर लेते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, देखें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है, लेकिन उसके साथ साथ ना थोड़े से हकूकुल आबाद का भी ख्याल रखना चाहिए, अपने नेबर्स का ख्याल रखा करें। मैंने एक दफ़ा पहले भी ना ये चीज़ शेयर की थी कि जो हमारे नेबर्स हैं ना वो थोड़ा सा ये काम करते होते हैं कि वो अपने गेट के आगे, अपनी दहलीज के आगे सारी सफाई करके ना सारा गन जो है वो हमारे गेट के आगे रख देते होते थे, तो मैं मतलब बड़ा मुझे इरिटेशन होती थी। इसी तरह एक दफ़ा मैं शो करके घर गई हूँ ना, ईद की बात है, ईद आने वाली थी, एक दो दिन पहले की बात, तो मैं जब घर गई हूँ रिक्शे से उतरी हूँ ना तो साथ में मेरे हाथ में पानी की बॉटल थी, तो वो मेरी पानी की बॉटल जो है ना वो एन उस गंद में गिर गई क्योंकि वो बिल्कुल बिल्कुल हमारे डोर के आगे था। मुझे बड़ा गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, मुझे गुस्सा इस बात का आया कि यार हम कुर्बानी कर रहे हैं, हम अल्लाह के नाम पर कुर्बानी कर रहे हैं, हमें उसकी रूह का, उसका जो मकसद है उसका ही नहीं पता, तो ऐसी कुर्बानी का क्या फ़ायदा होगा। तो एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ें हैं, जो एथिक्स हैं, आपने पूरी अपना अपनी दहलीज साफ कर ली, अपना सहन साफ कर लिया और वो सारा गंद निकाल के आपने किसी और के गेट पे डाल दिया, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। और मैंने, आप बिलीव करेंगे, डंडे के ज़ोर पे जो है ना वो गंद साफ करवाया था, मैंने कहा नहीं ये आप लोग ही साफ़ करेंगे, आपके घर में 10-10 मुलाजिम हैं और वो सारा ये गंद इकट्ठा करके हमारे गेट के आगे डाल देते हैं, इस तरह से डालते हैं कि हमें प्रॉब्लम हो। आपको पता है अल्लाह ताला जो है ना, मैंने हमेशा यही बात सुनी है कि अल्लाह चाहे तो अपने हकूक माफ़ कर सकता है, लेकिन जो हकूकुल आबाद है ना उनकी बड़ी सख्ती है। हम दूसरों को तंग करेंगे, हम अपने नेबर्स को तंग करेंगे, हम नेबर्स का हक अदा नहीं करेंगे, उनके लिए परेशानी का बाइस बनेंगे, तो यकीनन वो फिर जो है ना अच्छा नहीं होगा। तो हमें अपने जो है ना एक्टिविटीज़ पर ज़रूर नज़र रखने की ज़रूरत है, हम क्या कर रहे हैं, हमारी किसी अमल से जो है वो कोई दूसरा बंदा तंग तो नहीं हो रहा, हमें ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। अल्लाह ताला तौफीक दे रहा है ना तो उसका साथ साथ जो है हमें बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। कल भी इसी तरह हुआ था वैसे, लेकिन वो खैर फिर मैंने मैनेज कर लिया था, बट बुरा लग रहा होता है। बट उनको भी अब मेरा अंदाज़ा हो गया है कि यार ये बंदी जो है ना कुछ भी हो जाए, चाहे अपना मोहल्ला हो चाहे कहीं रोड पे हो, मेरे बच्चे कहते होते हैं मम्मा गुंडागर्दी करके आ रही हैं। अच्छा लगता है कभी कभी क्योंकि बच्चे फिर ट्रस्ट करते हैं, बच्चे कहते हैं नहीं यार हमारे ऊपर कोई मुश्किल आएगी ना हमारी माँ हमारे आगे खड़ी होगी, तो बड़ा अच्छा लगता है, फख्र महसूस होता है कि बच्चों का आपके ऊपर इतना ट्रस्ट है, और होना भी चाहिए है, सबसे पहले माँ बाप पर ही अपने बच्चों का ट्रस्ट होना चाहिए, बाहर वाले बाद में आते हैं। लिटरली मेरा बेटा जो है ना वो यही लफ्ज़ यूज़ कर रहा था, और जायज़ बात के लिए, देखें बच्चों को भी ये पता होना चाहिए कि अपनी जायज़ बात के लिए जो है ना वो खामोश नहीं बैठना, ना किसी का हक मारना है और ना किसी को मारने देना है, जो आपका राइट

है सिर्फ हकूक पे नहीं नजर रखनी, अपने फराइज पूरे कर रहे हैं आप, अपनी साइड से अपनी हर चीज पूरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई दूसरा बंदा आपके लिए गलत कर रहा है ना, तो उसके आगे जरूर एक दफा खड़े होना चाहिए ताकि अगले बंदे को पता लगे हम किसी से कम नहीं। एनीवेज जी, क्या तैयारियां हैं जी आज की? नाश्ता कर लिया आप लोगों ने? गर्मी में ना नाश्ते की भी समझ नहीं आती है। दो दिन हो गए हैं मेरा लस्सी पीने को, बहुत दिल कर रहा है, बहुत ज्यादा दिल कर रहा है, लेकिन होता ये है कि एक तो रात में जो है ना मैं दही वगैरह मंगवाना भूल जाती हूँ, और सुबह सुबह जब मेरे मियाँ साहब वापस आते हैं ना तो मैं उनसे कहना भूल जाती हूँ कि यार दही लेकर आना। और जब ये लेट जाते हैं, सो जाते हैं, चूंकि इनकी नाइट शिफ्ट होती है ना, तो उसके बाद फिर ये होता है कि उठना आराम से 12-1 बजे के करीब होता है, तो फिर मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करती कि मैं इनसे कहूँ कि स्पेशल जाके मेरे लिए दही लेकर आए। और डेली मैं यही सोच रही हूँ, मतलब परसों भी मेरा दिल कर रहा था, मेरा यही प्लान था कि अच्छा जी मैं लेट नाइट इनको मैसेज कर दूंगी कि सुबह जब आप वापस आ रहे होंगे ना तो मेरे लिए आपने दही लेकर आना है, लेकिन एज यूजुअल मैं भूल गई दही मंगवाना। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने ड्यूटी पे जाना था तो उसके बाद मतलब मुझे बड़ी शदीद तलब थी कि यार ये क्या हो गया, मैं भूल क्यों गई और कैसे भूल गई। और आज भी यही हुआ, आज भी रात को मैंने यही सोचा कि अच्छा मैं ना सुबह मैसेज कर दूंगी इनको कि आते आते ना दही पकड़ते आना, क्योंकि दही फ्रेश होना फिर ही मजा आता है, और बाजार वाली लस्सी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लस्सी सिर्फ अपने हाथ ही पीती हूँ, लस्सी और चाय ये मेरे अपने हाथ की होनी चाहिए, होनी भी दो ग्लास चाहिए बस, बहुत खास लस्सी होती है वो। एनीवेज जी, ट्राई करते हैं घर जाते हुए जो है ना पूरी कुछ सामान शमान लेकर जाए और जाके लस्सी बनाए, मीठी और नमकीन मिक्स, कम मीठा कम नमकीन, बस दरमियानी सी। हम नाश्ते की बात कर रहे थे, नाश्ते की ना समझ नहीं आती गर्मियों में, अंडा खाने को दिल नहीं कर रहा होता, कोई हैवी नाश्ता करने को दिल नहीं कर रहा होता, फिर बंदा कहता है अच्छा जी चाय रस खा के गुजारा कर लो, लेकिन वो भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि नाश्ता प्रॉपर होना चाहिए। इस टाइम पे दिल नहीं कर रहा होता, बट थोड़ी देर के बाद जाके जो है ना वो कह लें कि आप कोई 1-1.5 बजे के करीब जाके भूख लगना शुरू हो जाती है। जनाब क्या प्लान्स हैं आप लोगों के नाश्ते के? और जो मैंने गाना प्ले किया है ना मेरा, मुझे लग रहा है कि इसको मुझे ना बाद में प्ले करना चाहिए, ठीक है अभी जो मैंने इसको चेंज कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ये चलिए इसी को चलते रहने देते हैं। राहत फतेह अली खान है जी, सिमी के साथ एक जर्मन सिंगर है, बड़ा अच्छा लगा मुझे इनका ये ट्रैक, कुछ समझ आई कुछ नहीं भी समझ आई क्योंकि मिक्स है। इंजॉय कीजिएगा इसको, इसके बाद वापस आती हूँ और आप लोगों के कमेंट्स की जाने बढ़ेंगे इंस्टाग्राम।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: Alright, welcome back. Once again, आपको खुश आमदीद कहते हैं, मुझे कहते हैं निमरा अरूज। सर जनाब, हम कुछ बच्चों के हवाले से बात कर रहे थे और बच्चों की जो है ना वो समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है। बच्चे एक्साइटेड भी हैं, लेकिन साथ साथ जो है ना जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा जो है ना वो अपसेट भी हो रहे हैं कि जी क्या करना चाहिए है, ये छुट्टियां कैसे गुजरेंगी, बोर हो जाएंगे। अभी तो बच्चे जो है ना वो जानवरों के साथ मसरूफ हैं, उनको पता है कि जी ईद आने वाली है, थोड़े से दिन रह गए हैं, बकरों के साथ इंजॉय करना है, सारा सारा दिन घर से बाहर गुजार लेंगे, उनकी खिदमत करने में टाइम गुजार लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? पढ़ाई तो होगी होगी, लेकिन ऑब्वियसली सारा सारा दिन तो नहीं ना पढ़ा जा सकता, उनका आउटिंग भी चाहिए है। और उस आउटिंग के बाद बच्चों में माशाल्लाह इतनी एनर्जी होती है कि उस आउटिंग के बाद भी वो थकते नहीं है, उसके बाद भी उनको कोई ना कोई चीज चाहिए होती है। अब सवाल ये है कि जी बच्चों को किस तरह से मसरूफ किया जाए, बच्चों को किस तरह से उनकी समर वेकेशंस जो है ना वो इंजॉय करवाई जाए। जाहिर सी बात है, देखें हर चीज जो है ना टाइम मांगती है, पैसा चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें हैं, और हर बंदा ये चीज अफोर्ड भी नहीं करता, हर एक के पास टाइम भी नहीं होता, हर एक के पास ढेरों पैसा भी नहीं होता। तो उसमें कोई दरमियानी रास्ता निकालना जो है ना बहुत जरूरी होता है। और बच्चों को सबसे पहले जो है ना वो मेरा ख्याल है कि एक तो उनका हम अपनी जो उनकी स्टडीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, साथ में जो है उनकी आउटिंग बहुत जरूरी है, साथ में फिजिकल एक्टिविटी उनको जरूर दें, कोई ऐसी चीज उनको जरूर दें। बहुत सारे स्कूल्स जो है ना वो समर कैंप्स लगा लेंगे, और बहुत सारे प्राइवेट जगह पे भी जो है वो समर कैंप्स चल रहे होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे इदारे हैं जो बच्चों को समर कैंप्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, या छोटे छोटे कोई इस तरह के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या कोई इस तरह की एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि बच्चों के लिए यूजफुल हैं, बच्चों के लिए उसका बहुत फायदा है, और बच्चे मसरूफ के मसरूफ और स्किल के स्किल उनको मिलेगी। तो अपने बच्चों को जो है ना पहले इंटरेस्ट उनका जरूर देखें कि किस चीज में उनका इंटरेस्ट ज्यादा है। पेंटिंग अच्छी लगती है, निटिंग अच्छी लगती है, लड़कों की बात करूं तो वो क्रिकेट उनको पसंद है, बैडमिंटन पसंद है, फुटबॉल पसंद है, जो भी इस तरह की है। और हर स्कूल में जो है ना कोई एक्टिविटी चल भी रही होती है, हमारे इर्द-गिर्द बहुत सारे ऐसे इदारे मौजूद हैं जहाँ पर हम अपने बच्चों को एडमिट करवा के कुछ देर के लिए कोई टाइम पीरियड उनका इस तरह से जरूर रखें जहाँ पे जाके वो कोई स्किल सीख सके, जहाँ पे जाके वो कोई फिजिकल एक्टिविटी में मसरूफ हो सके। स्विमिंग जो है वो आजकल बच्चों को बकायदा तौर पे सिखाई जा रही है, मार्शल आर्ट सिखाया जा रहा है, मतलब इतनी सारी चीजें आ गई हैं जो हमारे बचपन में नहीं थी, और बच्चों को हमसे ज्यादा नॉलेज है उन चीजों का। और उसके बाद बच्चे मांगते हैं जी कोई सैर व तफरी होनी चाहिए, कहीं बाहर जाना है, कहीं सैर के लिए जाना है, नॉर्दर्न एरियाज जाना है। ये प्रश्न भी है, ये सारी बच्चों की जो डिमांड्स है ना वो कभी भी कह लें कि 100% फुलफिल नहीं होती है, और अगर आप कर भी देना तो कोई ना कोई शिकवा रह जाता होता है। अच्छा, मुझे जो याद पड़ता है ना, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो और तरह के होते थे, हम बच्चे भी और तरह के होते थे, हमें पेरेंट्स की आंख का इशारा ही काफी होता था। और हमारे बचपन में जब छुट्टियां होती थी ना तो हमारे लिए नानी का घर ही जो था ना वो सारी एक्साइटमेंट था, सारी तफरी था, मामू के घर जाना है, यही हमारे लिए जो है ना एक्साइटमेंट होती थी। और सबसे बड़कर जिन जिन लोगों के ननियाल ददियाल जो है वो आउट ऑफ सिटी रहते हैं, उनके लिए मेरा ख्याल है एक और बहुत बड़ी एक चीज़ हो जाती थी। जैसे कि मैं, हम लोग जो हैं वो जाते होते थे वहाँ के रावलपिंडी, पेशावर, इन जगहों पे नौशेरा जाते थे, मेरा सारा ननियाल वहाँ पे है, तो हम वहाँ से होकर आते थे। और पूरे 3 मंथ्स तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एटलीस्ट हम 2 महीने जो है ना वो सैर करके आते होते थे। और हमारे लिए अपने रिलेटिव्स के घर ही जाना, जिनमें नानी, मामू और खाला, इनके घरों में, क्योंकि हम रहते तो ज्वाइंट थे, ताया के साथ रह रहे थे, और मतलब उनके क्योंकि वो आउट ऑफ सिटी नहीं थे, इसलिए वो वहाँ पे डेली की एक रूटीन थी हमारी। बट जब छुट्टियाँ होती थी ना 3 महीने की, तो बड़ा शौक होता था कि ट्रेन की छिक छिक में जो है ना हमने जाना है। वो एक्साइटमेंट नहीं भूलती कि नानों के घर जा रहे हैं जी, मामू के घर जा रहे हैं, मामू के घर जाके ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और उस टाइम पे वाकेंट एरिया जो था ना वो बहुत डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट था, बहुत पुरसकून था, बहुत खामोशी वाला एरिया था। रात 8 बजे ही वहाँ पे जो है ना वो, शाम 8 बजे ही जो है ना वहाँ पे रात हो जाती होती थी। अब तो वहाँ पे भी जाओ तो काफी रश हो गया है, काफी ज्यादा जो है ना है, काफी ज्यादा रेस्टोरेंट बन गए हुए हैं, जबकि हमारे टाइम पे जो है ना वो इक्का दुक्का दुकानें होती थी। और मतलब अभी भी मुझे याद है, एक जो है ना वो कोने पे पप्पू की दुकान होती होती थी, मतलब वो जो अंकल थे ना उनको पप्पू बोलते होते थे। तो बड़े मजे से हम जाके, अभी भी अगर कभी हम जाते ना तो हम हंस के बोलते हैं वो पप्पू अंकल है अभी मतलब उनको याद करते हैं। यही चीजें होती है, एक कोन वाला होता था जिसके पास हमने जो है ना वो शाम के खाने के बाद मामू के साथ जो है ना वो वॉक करते हुए जाना होता था, और जाके कोन चून खा के बड़ा एंजॉय करके जो है ना अपनी तरफ से वापस आ जाते थे। एक वहां पे बेकरी होती थी जहां से ये केक शेक वगैरह मिल जाते होते थे, मतलब हमारे पास लाहौर में तो बड़ी सारी ऑप्शन है ना, तो वहां पे बड़े कम होते थे। और वो ही हमारे लिए एक्साइटमेंट थी, वो ही हमारे लिए इंजॉयमेंट थी, हम उसमें बड़ा राजी थे, बड़ा खुश थे। जबकि आजकल के बच्चे जो है ना वो इस चीज को बॉदर ही नहीं करते, उनके लिए एक्साइटमेंट, उनके लिए एंजॉयमेंट का जो मतलब है ना वो कुछ और है। वो नानी मामू के घर वैसे तो जाना पसंद करते हैं, लेकिन फिर यही कहते हैं जब छुट्टी होती है, आप कहती हैं ना अम्मी के घर चलते हैं, अम्मी के घर चलते हैं। मुझे लिटरली ये सुनने को मिलता है, हालांकि अभी मेरा आना जाना बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, हार्डली गए भी हैं तो 2 घंटे के लिए गए और फिर वापस आ गए। मेरी अपनी कुछ मसरूफियात इस तरह की हैं कि मैं रह नहीं सकती वहां पे। कहने का मकसद ये है कि हम इंतजार करते थे, हमें वेट होता था हमारी छुट्टियां होंगी, हमारे होमवर्क खत्म होंगे, होमवर्क खत्म नहीं भी होते थे ना तो हम साथ लेकर जाते थे, और वहां जाके जो है ना सारे काम शाम जो है वहीं पे करते थे, स्टडी वहीं पर करते होते थे। और मुझे याद है जो मेरे मामू है ना वो डंडे के जोर पर जो है ना हम बच्चों को पढ़ाते होते थे, मतलब टाइम उनका फिक्स होता था कि अच्छा जी इस टाइम पे जो है ना आपने बैठना है पढ़ाई के लिए। वो अलग बात है कि हम बीच में से डंडी करा जाते होते थे, आंख बजा के इधर उधर हो जाते होते थे, और आम पार्टी होती थी, वाह जी वाह, मैंगो पार्टी जो है ना वो बड़े मजे की होती होती थी, वो अभी तक नहीं भूलती है। मतलब हमारा इस तरह का बचपन था कि हम फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में या अपने लोगों में बैठ के खुश हो जाते थे। जबकि अब के बच्चों का ये होता है कि नहीं जी, हमें जो है ना वो एक्साइटमेंट कुछ और चाहिए है, हमें तो नॉर्दर्न एरियाज जाना है, हमने कहीं इस तरह की जगहों पर जाना है जहाँ पे हम आउटिंग कर सकें। और अगर पार्क जाना है ना तो उनकी डिमांड ये होती है, हमें उस पार्क जाना है जहाँ पे झूले लगे हुए हों, झूले लेंगे तो ही एंजॉयमेंट नहीं है। बहरहाल जी, हर दौर के बच्चे फर्क हैं, हर दौर में जो है ना वो आप कह लें कि मयार, डिमांड, हर चीज फर्क हो जाती है। तो अब के बच्चों का भी जो है वो इस तरह का है मसले मसाइल, जो हम कोशिश तो करते हैं कि समझा सकें। ये आवाज क्यों नहीं आ रही? आई डोंट नो, आ रही है, आ रही है, आ रही है। ऑलराइट जी, असरार का ट्रैक है जी, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, एंजॉय कीजिएगा इसको। इसके बाद वापस आती हूँ, स्टिक अराउंड एफएम 101।

0: था। मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
4: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: I have my faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her, true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I,
6: and I on you. 101.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म चीन के 4 रोज़ा दौरे के पहले मरहले में हांगजू रवाना हो गए हैं। खजाने के वज़ीर मुमलिकत ने साजगार कारोबारी माहौल पैदा करने के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़्म का इआदा किया है। अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने कहा है कि इसने यूक्रेन की तनाज़े के पुरअमन हल के लिए हमेशा मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत की है।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: I have my faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her, true. I have a faith in my mom, who can never do me no wrong. I have a faith in my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I
5: own you. 101.

0: Get what you want. Get only the best music.
1: It is time for the music.
0: Continuous music.
2: Only on FM 101.
3: Step into the world of women and talk about everything that matters to you, from fashion to feelings and everything in between. Welcome to Ladies Lounge with your favorite RJ, Nimra Aruj.
4: All right, welcome back once again. आपको खुशामदीद कहते हैं. मेरा और आपका साथ रहेगा 1 बजे तक. और मैंने कहा था कि 12 से लेकर 1 बजे तक जो है ना, मैं आप लोगों की लूंगी लाइव कॉल्स. और लाइव कॉलिंग सेशन में जी ईद के हवाले से हम बात करेंगे. क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? कोई खास ऐसी बात जो आपको मजेदार भी हो, सुनने वाले इंजॉय करें और आप भी खुद इंजॉय करते हो, वो चीज आपने मुझे जरूर बतानी है, हमारे सुनने वालों के साथ शेयर करना है. और लाइव कॉलिंग सेशन के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है जी 04211100104211100101. ये है हमारा टेलीफोन नंबर. इसके अलावा जी फेसबुक पर जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, उनके कमेंट्स जो है ना, मैं शामिल करती चलती हूँ. बिनते सबीक हैं जी. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ. और तारीफ के लिए बहुत शुक्रिया. अल्लाह ब्लेस यू. आमीन सुम आमीन. थैंक यू जी. जजाकल्ला. चाय का कप की कॉफी का कप भेजा है आपने. चाय है तो माजरत है, कॉफी है तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ. ठीक हो गया. जूबिया शफीक है जी. एनर्जेटिक शो लिसनिंग. थैंक यू सो मच जूबिया. जूबिया को सोच के ना, मतलब जूबिया का नाम मेरे जहन में आया, मेरे सामने आया, तो मुझे एक बात जहन में आ गई कि मैंने आज ना टेलर से कपड़े लेने जाने हैं, लेकिन मैंने सिलाई उतनी नहीं देनी है. समझ तो आप गई होंगी ना. कितने मजे की बात होती है ना कि हम बड़े शौक से जो है ना वो कुछ सूट लेते हैं. बड़ा हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे, हमने देखा है कहीं भी, कहीं से भी हमें डिजाइन बहुत अच्छा लगा है और हम कहते हैं नहीं यार मैंने इसी तरह का सूट बनवाना है. और हम जाके जो है ना उस सूट को लेकर भी आते हैं, उसके साथ सारे लवाजमात भी पूरे करते हैं. और जब हम टेलर पे जाते हैं ना, वो हमें पता लगता है कि उस सूट की कीमत से ज्यादा तो टेलर की सिलाई है. ओए होए होए होए. मेरा ख्याल है कि सारे अरमानों पर पानी भी फिरता होगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन में गया होता है कि उस टाइम जो है ना वो ना इनकार कर सकता है ना इजहार कर सकता है. फिर बंदा कहता है यार इज्जत इसी में है कि खामोशी से चुप करके सिलवाओ और अपनी अम्मा को पता ना लगने दो, नहीं तो अम्मा ने मारने हैं डंडे. क्यों जी जूबिया, सही कह रही हूँ ना? ये तो भाभी मुझे बताएंगी. थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया. और मैं आपका इंतजार करूंगी, ठीक है ना? कहां इंतजार कर रही हूं मैं आपका. गजनफर खान बराफी जी. वालेकुम अस्सलाम जी. आई नो खुशामदीद ऑल पाकिस्तान रेडियो लिस्नर क्लब. अल्लाह इतनी मुश्किल उर्दू लिखी हुई आपने. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गजनफर खान आपका. फखरुल हसन है जी. अस्सलाम वालेकुम विद बेस्ट विशेस. थैंक यू सो मच जी. वालेकुम अस्सलाम. हाफिज उमर है जी फ्रॉम जंग. माशाल्लाह आप ही जी, आपकी आवाज एंड अंदाज बहुत प्यारा है, बिल्कुल आपकी तरह. अच्छा जी, थैंक यू सो मच. और दोस्त भी सुन रहे हैं, काशिफ बिलाल रज़ाक नवीद नदीम और अजमल. आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. एक ट्रैक ऑन एयर करेंगे और इसके बाद जो है ना आप लोगों की कॉल्स के जाने पड़ेंगे. 04211100101 हमारा टेलीफोन नंबर है. कोशिश कीजिएगा कॉल करें, छोटी बात करें लेकिन प्यारी बात करें, अच्छी बात करें, वो बात करें जिससे सुनने वालों को मजा आए, सुनने वालों के फेस पे जो है ना वो स्माइल आ जाए और और अगर आपके पास कोई ऐसी बात नहीं है तो फिर दूसरों को मौका दीजिएगा. ठीक हो गया. अभी हम कौन सा ट्रैक ऑन एयर करें, ये वाला ट्रैक ऑन एयर करते हैं. और

बहुत ट्रेंडिंग सॉन्ग है। पहले मुझे भी नहीं पता था, ये शुरू के लिरिक्स जब मैंने सुने थे ना तब मुझे इतना मजा नहीं आया था, बट जहां पे पार्ट आते ना फीमेल सिंगर का, जोहा वसीम की आवाज का और उनके लिरिक्स का, तब मजा आ जाता है। फिर मुझे समझ आई कि अच्छा ये तो वो वाला ट्रैक है जो मैंने सुना था और मैंने जो है ना वो पहले ही स्किप कर दिया था। कहीं यार सॉन्ग अच्छा है, मजेदार है, इंजॉय कीजिएगा इसको। 042-111-000-101 ये हमारा टेलीफोन नंबर है, इस नंबर को आप लोग डायल कर सकते हैं और हमारा साथ दे सकते हैं। स्टिक अराउंड टू FM 101।

0: tourner tes bêtes. ऑलराइट जी, वेलकम बैक। पहले जो मैंने गाना प्ले किया था ना, वो पता नहीं क्यों गलत प्ले हो गया था, और असल में मैं ये वाला गाना प्ले करना चाह रही थी। एनीवेज जी, मेरा ख्याल है कि 04221100101 पर चेक कर लेते हैं कि पहले कॉलर कौन है और क्या कहना चाह रहे हैं। लेट्स सी हु इज़ विद अस। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: करना
0: ये है हमारे रेगुलर कॉलर। जी वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी। फरी, कैसी हैं आप?
2: आप ठीक है? मैं कब से हेलो हेलो कर रही हूँ।
0: आपकी आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही।
2: मंडी चली गई, मैं हेलो हेलो कर रही हूँ।
0: मैं जिंदगी में कभी मंडी नहीं गई, आपको पता है।
2: वो मखसूस आते हैं लेके आते हैं एंड टाइम पे, वो आजी साहब ही एंड टाइम पे लेके आते हैं। बकरे के बारे में पूछ रहे थे ना,
0: मैंने
2: एक दफा बकरा लिया ना, तो हम तो एक रंग का बकरा जिबा करते हैं। इतने का बकरा उतने तो सारी पैसे ले लेता, तो हम
0: जबरदस्त।
2: वो ना जिबा किया ना, तो एक बच्चा था उसको मैंने कहा आप टांगे पकड़ो, मैं आगे वाली पकड़ ली। हाजी साहब ने छुरी फेरी ना, तो बकरा उठ के ना बाहर गली में भाग गया। छुरी गिरी हुई के साथ ना वो खून सैल सैल उसका ना बाहर निकल रहा है, तो दौड़ लगा के ना बाहर चला गया। तो हमने पकड़ना, पकड़ने के बगैर ही खुद ही फिर अंदर आके ना खुद ही लेट गया।
0: ओहो,
2: तो फिर हाजी साहब ने नाड़ के ऊपर जो छुरी फेरी ना, तो वो छिपा हो गया ना। तो वो वाक्य जो है ना हमें नहीं भूलता। तो इतना प्यारा हो ना, किसी ने घर का पाला हुआ था और डबर रोटी खाता था, पट्ठे नहीं खाता था,
0: नहीं
2: खाता था डबर रोटी केला। थोड़ी देर में के लिए ना वैसे जैसा हमने खुद ही माला
0: हुआ। वाह वाह जी वाह।
2: ये जो है ना, ये वाचा नहीं भूलता।
0: वेरी गुड जी। चलें जी फरी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, वाक्या मुझे यहाँ तक तो बड़ा अच्छा लगा कि आप पार्टिसिपेट करती हैं और अपने हस्बैंड के साथ जो है वो मिलकर काम कर रही हैं। लेकिन थोड़ा सा ना मुझे यहाँ पे, मैं ज़रूर ये चीज़ कहना चाहूँगी कि कुर्बानी के जानवरों के साथ ना प्लीज़ एक्सपेरिमेंट्स मत करें। बहुत सेंसिटिव इशूज़ हैं ये, और जो आपकी छुरियाँ जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से उनकी धार तेज़ करवा लें ताकि जानवर को तकलीफ़ ना हो। और अगर आपको नहीं इस चीज़ की नो हाउ है कुर्बानी किस तरह करनी है, कुर्बानी सॉरी छुरी किस तरह फेरनी है, तो प्लीज़ ख़ुद से आप तजर्बे मत करें। और देखें, जान है, तकलीफ़ तो होगी ना, तो प्लीज़ इस तरह के काम नहीं होने चाहिए जिससे जानवर को तकलीफ़ हो। बेजुबान जानवर है
1: सच्ची, तो
0: और बस यही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। लेट्स सी नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है और कहाँ से? आपकी आवाज बड़ी स्लो आ रही है, दूर से आ रही है।
3: हमना फ्रॉम जर्मनी।
0: हमना जर्मनी से बात कर रही है?
3: नहीं, वैसे हम पाकिस्तान अब आए हुए हैं ना, ईद है तो इसी वजह से। शुक्र है मेरी कॉल पिक कर लिया आपने।
0: वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है और कहाँ से? आपकी आवाज बड़ी स्लो आ रही है, दूर से आ रही है।
3: हमना फ्रॉम जर्मनी।
0: हमना जर्मनी से बात कर रही है?

0: भाई से सुनती हूँ ना, तो ईद है तो हम छुट्टियाँ आए हुए हैं पाकिस्तान ना,
1: ओके
0: बाहर ही रहते हैं तो मैं बाहर सुनती हूँ रेडियो.
1: वेरी गुड.
0: ये ना पहला प्रोग्राम था मुस्तफा भाई का, जब मेरी पहली कॉल लगी थी. एक साल से मैं रेडियो सुन रही हूँ, तो पहली कॉल मुस्तफा भाई के प्रोग्राम में लगी थी. ये चौथी मतलब प्रोग्राम है जिसमें मेरी लग रही है कॉल.
1: सही. तो हम ना, आप मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं कि कुर्बानी पे जो है वो आप हर साल कुर्बानी यहीं करती हैं कि बाहर करती हैं?
0: जी क्या कह रही है?
1: मैंने कहा आप कुर्बानी की ईद पे यहाँ होती है या बाहर होती है?
0: हम यहाँ पे होते हैं, मतलब कोई भी इवेंट हो हम या पाकिस्तान.
1: वेरी गुड, वेरी गुड.
0: वहाँ पे मजा नहीं आता.
1: हाँ, यही पूछना चाह रही थी मैं, यही पूछना चाह रही थी.
0: मैं अपने पापा को कहती हूँ, पापा जाना है पाकिस्तान.
1: वेरी नाइस.
0: वहाँ पड़ा होता है तू मेरे मगर पीछे पड़ जाती है.
1: हम ना, आपकी एक्साइटमेंट मुझे पता लग रही है. चले, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. और अगर कोई बात शेयर करना चाहती हैं तो यू आर मोर देन वेलकम.
0: मुझे याद पड़ता है लास्ट मंथ में हम आए यहाँ पे ना, कुर्बानी ली हमने. तो मुझे आप जैसे बात करी थी, मैं भी बहुत डरती हूँ. मैं जीन माने जब कुर्बानी हो रही होती है ना, मैं 18 दिन रूम में लॉक कर लेती हूँ, अंदर बैठी रहती हूँ. हमारे घर में खाना बन जाता है, खाया जाता है, फिर शाम 5-6 बजे मैं बाहर निकलती हूँ रेडियो के बाहर से खाना खा के आती हूँ. कुर्बानी के मेरे पापा कहते हैं आजकल के बच्चों को क्या खाते हैं. मुझे ना बैल में ना, हम बाहर गए पापा मतलब हाथ लगवाते हैं ना जब वो कुर्बानी करते हैं, तो ना मेरे पापा ने मुझे कहा बाहर आओ बेटा हाथ लगाओ. मैं तो इवन गई कांपती कांपती, वो बैल मेरे पेट में टांग मार दी.
1: ओहो,
0: मुझे इतना पेन हुआ. वो कुर्बानी भी छोड़ गया ना, मेरी पड़ गई.
1: चले, हम ना ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है? आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा.
0: आज तक मुझे वो बात भी भूलती हुई कहती हूँ, अब मैं कभी नहीं हाथ लगाती, मैं अंदर भाग जाती हूँ.
1: बी केयरफुल.
0: आपकी आवाज बहुत प्यारी है.
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू. आप बहुत अच्छी हैं, ठीक है?
0: अब मैं नेक्स्ट टाइम जरूर कॉल करूँ.
1: जरूर जरूर जरूर
0: कॉल करती रहूँगी.
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़.
0: नेक्स्ट ट्रैक डेडिकेट
1: जरूर जरूर जरूर. ठीक हो गया. थैंक यू जी. अल्लाह हाफिज़.

0: अंग्रेजी ये तो थी, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और एक्साइटेड होना भी चाहिए है जी। पाकिस्तान में ईद का मज़ा तो जाहिर सी बात है अपनों के साथ ही है, और बाहर जो है ना वाकई जो हमारे भी रिलेटिव रहते हैं ना उनसे जब पूछो ना तो फिर वो कहते हैं जी क्योंकि वहाँ पे स्लॉटर हाउस बने होते हैं, उन्होंने वहाँ पे जाके कुर्बानियाँ अपनी अपनी दे देनी होती हैं, जो घरों में रौनक लगती है वो वाला सीन नहीं होता वहाँ पे, जस्ट आपकी दावत आपकी पार्टी का अहतमाम होता है, बट वो बाद में ऑब्वियसली आपके घर में तो नहीं कुर्बानी हो रही ना, आप स्लॉटर हाउस में अपना दे रहे हैं और उसके बाद जो है वो कुर्बानी होनी होती है। तो बहरहाल जो यहाँ की रौनकें हैं वो यहाँ की ही रौनकें हैं, सबसे बढ़कर अपनों का साथ होता है, अपनों का प्यार होता है, और यहाँ पे जो है ना वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी अवाम को जो है ना वो इकट्ठा होने का मौका चाहिए होता है, कोई त्यौहार हो कोई इवेंट हो हम लोग सब एक हो जाते हैं और यही सबसे बड़ी बात है। हमना थैंक यू सो मच जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और क्या करें नेक्स्ट कॉल ले ले नहीं बल्कि मेरा ख्याल है कि मुझे प्ले करना है कमर्शियल ब्रेक, तो मैं चलती हूँ कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और कमर्शियल ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ना फिर लेंगे आप लोगों की कॉल्स, ठीक है। स्टिक अराउंड एफएम 101, मुझे कहते हैं निमरा अरूज, 04221100101 हमारा टेलीफोन नंबर है, इस नंबर को आप लोग डायल कर सकते हैं।
1: सुनते रहिए एफएम 101.
2: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
3: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
2: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
4: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
5: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: सुनते रहिए FM 101 101।

0: हाय जी, वेलकम बैक। 12 बज के हो चुके हैं 36 मिनट। टाइम जो है ना वो शॉर्ट रह चुका है और गाना जो है ना वो थोड़ा सा स्लो है, लेकिन अच्छा है। मेरा टेम्पो जो है ना वो स्लो हो जाता है जब मैं स्लो गाना प्ले करती हूँ। एनीवेज जी, चेक कर लेते हैं कि कॉलर कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है और कहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। नाम बताइएगा प्लीज।
1: मुझे बड़े प्यार से कहते हैं साजदा जी।
0: साजदा जी, साजदा कैसी हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसी
0: हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। और मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगी?
1: हाँ जी, मैं टॉपिक के बारे में कहना चाहूंगी।
0: जी,
1: जो यानी कि हर ईद पे ना जब मुझे एक याद आती, जब मेरे पापा जिंदा थे ना, बकरा रहे थे, तो हमारे पास ना वो पूरा एक महीना रहा था, तो उसे एक यानी क्या हमने ना बकरे से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था। तो जब वो जिबा करने के लिए लेके गए ना, मैं भी रोने लगी, तो वो मेन वो भी रो रहा था, तो वो भी नहीं जा रहा था बकरा, मैं भी नहीं छोड़ रही थी। तो जब कुर्बानी कर ली, फिर मैंने उसका गोश्त भी नहीं खाया, मैं रोती थी। मैंने कहा आपने कुछ, तो मुझे ना इतना पता था यानी कि बकरे की कुर्बानी करते हैं ये वो, तो मैं अपने पापा को कहा दूसरा ले आते, मेरा क्यों बकरा लिया
0: आपने? ये बचपन की बात है आपकी?
1: हाँ जी, मैं बहुत रोई थी, मेरा बकरा आपने जिबा क्यों की है, इतना प्यार हो गया था। हाँ। और मैं भागती थी, मैं सब भागता था, बैठती थी, यानी हर तरह की ना वो बेजा ना जैसे जुबान समझता था, इतना प्यार हो गया था बहुत ज्यादा।
0: बिल्कुल जी, देखे तो प्यार
1: वाकई नहीं बोलता।
0: बिल्कुल, आप प्यार से किसी को रखते हैं ना, तो वो आपका आदि भी हो जाता है, उसको भी आपसे मोहब्बत हो जाती है। तो फिर जाहिर सी बात है, ये बकरे मुझे लगता है सबसे ज्यादा मासूम होते हैं, ठीक है, तो वो उनसियत हो जाती है।
1: वो तो है भी, इतना प्यारा था, यानी उसकी हरकतें बहुत अच्छी थी। तो हमने बाहर भी जाना पार्क में, तो उसने खेलना में जैसे वो बच्चा पकड़ता है, तो वो मेरे पीछे भागता था, मुझे पकड़ना या मेरे पकड़ना, वो भी
0: खेलते थे। वाजी वाह,
1: ज्यादा प्यारा हो गया था ना, तो मुझे ये आज तक बकरा नहीं भूलता।
0: बकरा नहीं भूलता। चलें जी, बहुत अच्छा लगा साजदा आपसे बात करके। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगी?
1: बहुत अच्छा लगा।
0: थैंक यू।
1: सलाम दे दूं?
0: जल्दी से दे दें।
1: हाँ जी, रिमशा को, रुजीना आरजे जो है उनको मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, और रिमशा को, कमलनाथ को, अनिला जी को, चीकू को, और सबको मैं सलाम अलैकुम कहूंगी।
0: वालेकुम अस्सलाम। चलें, थैंक यू सो मच।
1: उस्मान मोगल को भी सलाम करना चाहूंगी, और आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं, अपना ख्याल रखिएगा।
0: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और जी, ये तो थी साजदा हमारे साथ, और बकरे से प्यार की बात हो रही है जी। और वाकई जो बच्चे बड़ा एक्साइटेड होते हैं, बच्चे बड़े प्यार से रखते हैं जानवरों को, उनका ख्याल रख रहे होते हैं, उनको पानी पिलाना, हाय मम्मा उनके ऊपर धूप आ रही है, उसके लिए कोई अरेंजमेंट कर दें, ये कर दें, वो कर दें, और फिर जो है ना, फिर जब कुर्बानी का टाइम आता है ना, तो वाकई फिर बच्चे जो है ना बड़ा शोर डालते हैं। मेरे बच्चे भी बड़ा शोर डालते हैं, रो पड़ते हैं, हिचकियों से रो रहे होते हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया। हालांकि बार बार समझाया जाता है कि बेटा ये तो आए ही इसी मकसद से हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने तौफीक दी है हमें कि हम कुर्बानी में हिस्सा ले सकें। खैर, बच्चों का अपना दिल है, अपना एक वो है उनका, तो मासूम है बच्चे, ऑब्वियसली वो उस चीज़ को नहीं उतना समझ सकते, उन्हें पता सब कुछ होता है, लेकिन तकलीफ होती है, और ये नेचुरल सी बात है। खैर जनाब, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको अब चेंज कर दूं, क्योंकि मैं खुद डाउन हो गई हूँ, मैं सो ना जाऊं यहाँ पे बैठ के। यस, अब जो है ना इतने स्लो के बाद जो है ना ये एक चमकीला भड़कता और ये क्या है, ये है जनाब रिमिक्स वर्जन अबरारुल हक के सॉन्ग का।

आई होप कि आपको मजा आएगा ये सुन के. और जिन जिन लोगों की एनर्जी मेरी तरह डाउन हो गई थी ना, वो वापस अपने एक

0: अच्छा, इसको साथ साथ जो है ना अपने बैकग्राउंड में रखते हैं, साथ साथ आप लोगों की कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: कैसी हैं मिशाल?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: क्या हो रहा है आज के दिन?
1: आज के दिन बस थोड़ा सा बिजी रहा, बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह अब तो फारिग थी और आपका शो सुन रही हूँ।
0: Very good.
1: उसके साथ साथ फिर भी कुछ ना कुछ चल ही रहा है।
0: हाँ, और वो चलता रहता है, आपको पता
1: है। रेडियो की सबसे मजे की बात ही होती है कि आप
0: एग्जैक्टली
1: कुछ करते रहते हैं।
0: मैं तो जिस टाइम मैं रेडियो नहीं भी सुन रही होती ना, मैंने यूट्यूब पे कुछ लगाया होता है, मैं तब भी अपने काम कर रही होती, चाहे वो ड्रामा चल रहा हो। और बच्चे कहते हैं मम्मा ड्रामा तो इतनी दूर रखा हुआ है आपने और आप काम उधर कर। मैं बेटा कान में तो वो उनको हमारे लिए बहुत जरूरी है, जबकि उनको असल नहीं पता कि हमें ये चीजें जरूरी नहीं है, हमें किसी का साथ उस टाइम पे जो है ना, हाँ, काम के लिए जो है ना एक्टिव रहता है बंदा उस टाइम पे।
1: सही है, आपको ऐसा फील ही नहीं होता कि काम,
0: हाँ,
1: जल्दी जल्दी सारा काम
0: फटाफट हो जाता है
1: और अगर खामोशी से लगे हो तो बस दिल का।
0: लेकिन देखने वालों को ना नजर पता क्या आता है, ये देखो हर वक्त मोबाइल पे लगी होती है, सिर्फ ये नजर आता है। फिर मैं, मुझे गुस्सा आता है, फिर उसके बाद मैं अपना हिसाब बराबर कर लेती होती हूँ।
1: ये नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है, पठान हूँ आखिर, ऑब्वियसली पठान अपना हिसाब बराबर कर लेते होते हैं।
1: गायब रही आप और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू।
0: मैं गायब लास्ट वीक हुई थी, उसके पिछले हफ्ते तो मैं आई थी वैसे।
1: हाँ जी बिल्कुल आई थी, लेकिन जो बीच में से जो आप गायब हो,
0: आज भी मैं शॉर्ट होना चाह रही थी लेकिन ना शॉर्ट हो नहीं सकती थी।
1: सही है।
0: और विशाल मुझे ये बताएं, कुर्बानी ले ली आपने, क्या आपकी लाइफ का कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी चीज जो आप नहीं भूलती?
1: अच्छा मैं, पता मुझे जब छोटी थी बड़ी अजीब बात है, पता नहीं बाकी लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, उन्होंने गले जो हार से नहीं पहनाए होते थे फुल वो
0: जेवरात
1: और इस तरह। अच्छा मुझे होता था कब कुर्बानी होगी और कब ये उतार देंगे, जबकि उसका करना कुछ भी नहीं होता था, तोड़ फोड़ के शायद फेंक ही देना था। होता था ये इनके उतरे इसकी ना जो जितने बीच होंगे ना इनकी दोबारा अपनी कुछ बुला लूं, कभी इसका कुछ बनाया नहीं था। बस पता नहीं वो अभी भी मैं सोचती हूँ तो मैं, मुझे समझ नहीं आता कि वो मैं ऐसा क्यों करती थी। तो लेकिन बाकी सारा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो होता था कि अभी, बल्कि अभी आप जैसे कह रही थी कि बच्चे रो रहे थे, तो अभी हमारे घर में भी यही हो रहा था कि बहुत सारे मेरे नेफ्यू जो है वो लाड़ रहे कि जी क्यों पहले दिन क्यों कुर्बानी कर दी, हम सेकंड थर्ड डे नहीं,
0: थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लेंगे।
1: ऐसे ही है, तो उनको उनके बाबा और सब इनको समझा रहे थे कि नहीं बेटा अच्छा नहीं है कि फर्स्ट डे हम फारिग हो जाएं और उसके बाद हमें कुछ करना ना पड़े। तो लेकिन बच्चों को था कि नहीं फर्स्ट डे नहीं करनी, सेकंड थर्ड डे करो। तो ये शायद हम लोग भी ऐसे तब कहते होंगे, लेकिन अब कुछ ज्यादा मुझे लगता है बच्चे कह रहे होते हैं।
0: हाँ, अब हर दौर में यही होता है वैसे,
1: हर दौर में
0: यही होता है। हाँ, हम बड़े हो जाते हैं, हमें लगता है कि अच्छा ये काम तो हमने किए ही नहीं थे।
1: जब बिल्कुल पता, अभी हम जब डांट रहे थे कह रहे थे तो बच्चे ये कह रहे थे अच्छा आपने भी क्या हुआ है, लेकिन आप मानेंगे नहीं क्या ऐसा कुछ किया था। अल्लाह
0: अकबर। ऐसे ही है, मैं साथ से पानी पी रही थी, आपकी आवाज सुन रही थी।
1: जी आप बिल्कुल पानी पी।
0: मैं चले विशाल, थैंक यू सो मच, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा।
1: थैंक यू। तो मैं नहीं होंगी लेकिन मैं इंशाल्लाह ईद के बाद,
0: ईद पे आप क्यों नहीं होंगी, खैरियत?
1: मैं जरा वापस अपने पिंड जा रही
0: हूँ। ओह पिंड कहाँ पे आपका?
1: लंदन।
0: अच्छा पिंड है।
1: इस दफा ईद वहाँ होगी लेकिन मैं आप सबको बहुत मिस कर रही
0: हूँ। थैंक यू सो मच जी, खैर से जाएं आप, खैर से वापस आएं।
1: और आपको पता है वहाँ पे तो कुर्बानी का इस तरह का,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वहाँ तो बस बन बना के घर में आते हैं और बस।
0: यही मैं बात अभी कर रही थी।
1: तो वो बस ये होता है बड़ी बहुत अच्छे बाद में ईद वहाँ कर रही हूँ और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मुझे जो यहाँ की ईद का मजा होता है। तो बस
0: लेकिन पाकिस्तान है जी, लौर लौर है,
1: लौर लौर
0: है। चले मिशाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। और जी तो थी मिशाल हमारे साथ और सोने पिंड चली है। अच्छा अब बच्चों को जो है ना वो मंडी जाने का भी बड़ा शौक है। मेरा बेटा तो बहुत पीछे लगा होता है, मैं मंडी जाऊंगा, और मंडी ज्यादातर जो है ना वो अपने मामुओं के साथ होता है, और लास्ट टाइम या उससे पहले जो है ना वो गया था और काफी दूर तक गया था मामू के साथ अपने, और दो दिन, वैसे वो मेरे बगैर नहीं रहता, रात नहीं रहता था, दिन स्पेंड कर लेता था अगर अम्मी के घर जाना पड़े तो, रात में जो है ना उसे मैं ही चाहिए होती थी। तो अब माशाल्लाह थोड़ा बड़ा भी हो गया है तो वो जो है ना वो दो दिन फिर अम्मी के घर रह कर आया था कि अच्छा जी मैंने जो है ना वो कुर्बानी का जानवर जो है ना उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अपने घर में जो है वो एक आधे दिन पहले आता है, और आता भी बकरा है और वहाँ वेड़ा आता है, तो ऑब्वियसली फिर बच्चों की जरा एक्साइटमेंट डिफरेंट होती है। बकरे का उनको ये शौक होता है कि जी बकरा हाथ में पकड़ के आप इधर उधर ले जा सकते हैं, और बड़े जानवर का ये उनको खौफ होता है कि भाई हम इनको नहीं लेके जा सकते, ये टुड मार दें, लात मार दें, कोई इस तरह का काम कर दें तो वो महंगा पड़ सकता है। और बच्चों को वैसे ही जो है ना वो, और ये अच्छी चीज़ भी है, ठीक है, अच्छी चीज़ भी है, बहुत सारे घरों में ये चीज़ नहीं की जाती है, बच्चों को मंडी लेकर नहीं जाया जाता है। मैं ये नहीं कहती कि जरूर लेकर जाएं, क्योंकि रश होता है बहुत ज्यादा, मिसप्लेस होने का खतरा है, लेकिन थोड़ा सा जब बच्चा समझदार हो जाए ना तो उसको साथ जरूर लेकर जाएं, उनका उनकी टेक केयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एटलीस्ट बच्चों में ये चीज ट्रांसफर करें। जैसे मैं बड़े फख्र से कहती होती हूँ कि जब हम छोटे छोटे थे ना तो मेरे अब्बा का इंतजार किया जाता था, हम चूंकि ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो हमारे पापा का वेट होता था कि जी ऑफिस से आएंगे और फिर पापा साथ जाएंगे जाके कुर्बानी लेकर आएंगे, और ज्वाइंट फैमिली में माशाल्लाह आया कि बच्चे वो सारे इकट्ठे होके फिर मेरे अपने भाई सब पापा के साथ जाते थे, लेकिन बड़ा चूंकि तायबू नहीं जाते होते थे, पापा जाते होते थे, तो वो एज ए बड़ा उनको साथ लेकर जाते थे कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए, जो भी भाव उताव करना होता है, जो भी चीजें देखनी होती हैं, उसके बाद जो है वो जानवर घर आता था, और तब मेरा ख्याल है मंडी भी जो है ना वो वॉकिंग डिस्टेंस पे होती थी तो इसलिए इतना इशू भी नहीं होता था। बट एक टाइम के बाद जैसे आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चे आपके बड़े हो रहे होते हैं तो अपनी कोई ना कोई स्किल जो है वो पेरेंट्स बच्चों में ट्रांसफर करते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज है। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई इतने समझदार हैं, इतने बड़े हैं कि वो खुद जाके जो है ना वो जानवर लेकर आते हैं और पापा अब घर में होते हैं, तो ये चीज ऐसी है कि ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होनी ही होनी है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो ट्रांसफर नहीं करते, उनको फील ये होता है कि यार ये हमारी बादशाहत है और ये बादशाहत हमसे छीन ली जाएगी, चाहे वो प्रॉपर्टी के मामला हो, चाहे वो इस तरह की कोई चीज हो। और प्रॉपर्टी के मामला में बहुत सारे लोगों को मैंने ये चीज देखी है कि वो अपनी चीज ट्रांसफर करने में अपने बच्चों में हिचके जाते भी हैं। ओके, मैं समझती हूँ आजकल जो दौर जा रहा है बच्चे पेरेंट्स का उस तरह से ख्याल नहीं रखते हैं, लेकिन देखें बात फिर वही है कि ये सब तो होना ही होना है, तो बेहतर होता है कि बंदा अच्छे तरीके से जो है ना ये चीजें ट्रांसफर कर दे ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि ये चीज बहुत बड़ी आजमाइश है, दौलत जो है ना वो बहुत बड़ी आजमाइश है, तो बेहतर होता है कि बंदा अच्छे तरीके से जो है ना वो ट्रांसफर कर दे अपने बच्चों में और अपने हाथों से कर दे। बाकी कोई भी ये चीज़ें जो है ना वो अपने साथ लेकर नहीं जाता। हमारे बड़े जो हैं जो बना के गए ऑब्वियसली वो अब हमारे काम आ रहा है, हम जब चले जाएंगे तो हमारे बच्चों के काम आएगा, तो बेहतर यही होता है कि अच्छे तरीके से बच्चों में ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि लड़ाई झगड़े ना हो। और इसमें जो है वो ये अमल भी आता है कि जब आपने कुर्बानी का जानवर लेने जाना है तो कुर्बानी का जानवर किस तरह से ख़रीदना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है, कौन कौन सी बातें हैं जिनको मद्देनज़र रखना है, भावताओं किस तरह से करना है, ये बच्चों को आना चाहिए। वो मम्मी डैडी टाइप बना देंगे ना बच्चों को, फिर उनके लिए जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, फिर उनको वो नीला पीला पिंक कलर फलाना कलर की चीजें चाहिए होंगी जो कि मिलेंगी नहीं फिर। एनीवेज जी, और अभी क्या करें, अभी कॉल ले लेते हैं। कॉल ले लेते हैं, चेक करते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
0: सलाम। कौन बात कर रहा है और कहां से?
2: ये आवाज बकर से आपको सुनाई देती
0: है। ओके अहसन खान। अच्छा मुझे डाउट हुआ था, लेकिन वो आवाज इतनी धीमी थी ना कि मुझे लगा कि नहीं मेरा डाउट अगर मैं मुंह से बोल दूंगी कि गलत ना हो जाए।
2: हाँ, कभी कभी आवाज इंसान की बदलती
0: बदल जाती है। और अहसन भाई आप ठीक है? सेहत तबीयत ठीक है आपकी?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक।
0: और कोई किस्सा कोई बात ऐसी जो आपको आज तक ना भूलती हो?
2: बस हर कुर्बानी जो होती है ना उसके ऊपर कुछ ना कुछ नया ही होता है।
0: ओके।
2: तो हर तरह की कुर्बानी याद रहती है, क्योंकि हम गांव में रहते हैं तो गांव में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। जब रिश्तेदार वगैरह आते हैं ना तो वो कुछ ना कुछ यादें छोड़ ही जाते हैं, تو اگر میں ایک دو بتاؤں تو وہ کوئی یعنی کہ میں مناسب نہیں سمجھوں گا کہ فلاں عید جو تھی ہماری وہ بہت زیادہ اس طرح کوئی فنی ہو گئی تھی یا بہت زیادہ. تو میں کہتا ہوں ہر عید جو ہے پہلی عید سے زیادہ مزیدار
0: ہوتی ہے,
2: کیونکہ وقت بدل رہا ہے. پہلے دور ہوا کرتا تھا کہ ہم اتنے رشتے داروں کے پاس نہیں جا سکتے تھے, سواری کا مسئلہ تھا. اب اتنی ٹیکنالوجی اور فاسٹ دور آ گیا ہے کہ ہم ہر رشتے دار کی طرف بھی پہنچ جاتے ہیں, وہ بھی ہماری طرف آ جاتے ہیں. تو ایک ہلا گلا اور بہت زیادہ میں تو کہتا ہوں بہت مزہ آتا ہے عیدوں کے اوپر خاص طور پر. اور پھر گوشت اور جانور جو ہیں یہ تو عید کا ایک دوسرا پارٹ ہے کہ سمجھ لو کہ یہ بھی جب ہوتے ہیں تو مزہ بہت زیادہ آتا ہے.
0: بالکل بالکل.
2: جب میں خصوصاً جب میں کہتا ہوں کہ گوشت بندہ پہلے بھی کھاتا رہتا ہے, یہ نہیں ہے کہ صرف عید کے اوپر ہی کھاتے ہیں کھانے وغیرہ, لیکن جو رشتے دار وغیرہ آتے ہیں دوست وغیرہ آتے ہیں تو وہ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہر سے ہمارے دوست آتے ہیں کہ دفعہ عید ہم آپ کے پاس آئیں گے ایک دو ایک دن گزاریں گے, تو وہ پھر اور زیادہ
0: مزیدار ہو جاتا ہے کہ
2: چلو کھانے وغیرہ بھی بناتا ہے ان کا ساتھ, گپ شپ بھی ہوتی ہے. اور گاؤں میں تو ماحول ہی الگ ہوتا ہے. پہلے ہم لاہور میں ہوتے تھے تو ادھر اسپیشل عید منانے آتے تھے, ادھر گا رہے ہیں تو ادھر اور زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کہ چلو پہلے سے ہی تیاری کر رکھے. میرے بچے جو ہے نا وہ کوئی اتنی کپڑے وغیرہ کی ضد نہیں کرتے نہ ہی, اور ہم خود کوئی بقرہ عید کے اوپر کپڑے وغیرہ نہیں خریدتے, کوئی شاپنگ وغیرہ نہیں کرتے. ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے سارے پیسے وغیرہ اکٹھے کر کے اپنی قربانی کرنی.
0: واہ جی واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست, بہت اچھی سوچ ہے.
2: بالکل نا, ہماری یعنی کہ یہ بڑی عید جو ہوتی ہے نا اس کے اوپر زیرو شاپنگ ہوتی ہے, کوئی شاپنگ نہیں کرنی. اگر شاپنگ کرنی ہے تو بس بکرا کی شاپنگ کرنی.
0: واہ جی واہ, زبردست. چلیں احسن بھائی,
2: قربانی بھی آج کل آپ بتائے کہ کافی زیادہ
0: ایکسپینسو ہو گیا. بالکل,
2: تو اس کے لیے ہم
0: باقاعدہ
2: ادا ہو جاتی ہے. لوگ کافی زیادہ یعنی کہ شاپنگ وغیرہ پہ خرچہ کر لیتے ہیں, پھر وہ قربانی کے لیے نا مسئلے مسائل بن جاتے ہیں.
0: چلیں احسن بھائی, تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو جی, اللہ حافظ.

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
4: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: सुनते रहिए FM 101.1।
6: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

नहीं जी, मैं चाह नहीं रही थी कि मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करूं, लेकिन टाइम जो है ना वो शॉर्ट है और मुझे लेनी है आप लोगों से इजाजत. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, आप लोगों के साथ शो करके. ढेर सारी गप्पे लगाई आज मैंने, और बहुत दिनों के बाद जो है ना वो मेरा ख्याल है कि मैं उसी एनर्जी में शो कर रही थी आज, क्योंकि आज मैंने बहुत रेस्ट किया हुआ था. मैं ठीक टाइम से सोई थी और टाइम से उठी थी. जब आपकी नींद पूरी हुई हो ना तो फिर आपको मजा भी आता है. एनीवे जी, इंशाल्लाह ईद पर मेरी मुलाकात होगी आप लोगों से. किस दिन टाइम पर मुझे नहीं मालूम, बट आप लोग रहिएगा 101 के साथ. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कुर्बानी जरूर कीजिएगा, और बहुत सारी चीजों की होती है अगर देखा जाए जो हमारी अपने अंदर एहसास पैदा करने की कोशिश कीजिए. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद.

0: एक बात बताऊं, मुझे भी FM 101 बहुत पसंद है और मैं बहुत सुनती हूँ। आप भी सुनते रहें FM 101।
1: Tune in to One Above FM 101।
2: To FM 101, a bale bale o shawa shawa.
3: This is FM 101.
4: FM 101, naal naal sade te naal naal tuade. क्यों जी, ये कोई शक है क्या?
3: This is FM 101.

0: खान, मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
4: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: सजड़ो ते बेलियो, मैं जे अली जफर, तुसी सुन दे पे जे गजदा बजदा रेडियो चैनल FM 101। मेरा मतलब है FM 101।

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
4: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: सजड़ो तो बेलियो, मैं जली जफर, तुसी सुनदे पे जे गजदा बजदा रेडियो चैनल एफएम 101। मेरा मतलब है एफएम 101।
0: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: आपा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
4: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत
6: पंजाब।
7: जी जनाब, जी आई नू कहने वेलकम तक खुश आमदी देसी बीट अपनी मेजबान जैनब अरशद नाल। तुसी सुन दे इस प्रोग्राम नू हर हफ्ते एक तो तीन। तुसी सानू कॉल्स राही ज्वाइन कर सकते हो 0402 दे इजाफी कोड नाल 111-000-101-111-0101 एफएम 101 लाहौर दे पेज ते। थोड़े ढेर सारे कमेंट्स मैनू नज़र आ रहे ने, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम च काफ़ी सारिया गलां बातें जिहड़ियां ने होण जा रहियां ने, कुछ असीं गलबात करांगे प्री ईद प्रैपरेशनस दे हवाले नाल। हुणी वी गल हो रही सी ते बिल्कुल निमरा साहब प्रोग्राम करके गई हां, तुसीं क्या हाल है? मैं अपना फ्रीजर जिहड़ा उसनूं साफ नहीं कीता, मैं क्या मैं ते कर लिया, लशका लिया जनाब। अच्छा, प्री ईद प्रैपरेशनस या ईद तो पहले दियां तैयारियां दी गल करिए, ते कुछ मसाला जात जिहड़े ने तुसीं बना के घर च रख सकते हो, कुछ चटनियां जिहड़ियां ने उहनां नूं बना के रख सकते हो, कुछ ड्रिंक्स जिहड़े ने जनाब तुसीं उहनां नूं बना के फ्रीज कर सकते हो, क्यों जे जिस वेले ईद दा दिहाड़ हुंदा है गोश्त एकदम खाण नूं जी नहीं करदा, फिर असीं समझदे हाँ कि कुछ अच्छे वाले ड्रिंक्स भी नाल नाल पी लईए, ताकि जनाब हाजमा जिहड़ा बेहतर रहे, तबीयत जिहड़ी आ बेहतर रहे। नाले जिद्दां दा मौसम है, जिस तरह की गर्मी है, अपना ध्यान ख्याल रखना बड़ा ही जरूरी है, एहतियात जिहड़ी है बड़ी जरूरी है। नहीं तो ईद के दौरान कुछ ऐसी खबरें जिहड़ियां ने वो गर्दिश कर दियां ने कि बहुत सारे लोग जिहड़े ने वो डॉक्टर्स कोल गए ने, उन्होंने हस्पतालां दा रुख किया है तबीयत की खराबी की वजह तो। सो मौसम के हिसाब नाल अपनी तबीयत के मुताबिक जनाब अपनी डाइट नूं रखो। इसी तरह ही गलबात रहे ईद तो पहले की तैयारी, मसाला जात, चटनियाँ या फिर कुछ ड्रिंक्स जिहड़े ने तुसी बना के फ्रीज कर सकते हो। लसन अदरक का पेस्ट जिहड़ा उसनू बना के रख सकते हो। कुछ सब्जियां जिहड़ियां ने इस तरह दियां तुसी सोचते हो कि हाँ भी करेले कीमा बनावांगे, तो ईद के दिनों च तो टाइम नहीं मिलना, पालक बनावांगे, यह करांगे, वह करांगे। सो तुसी बहुत सारिया सब्जियां जिहड़ियां ने उन्हां दी कटिंग करके रख सकते हो। घर की गल करिए तो सफाई सुथराई तुसी कर सकते हो, जिदा कि वीकेंड है, कल का दिहाड़ भी थोड़े कोल होएगा। बहुत मसरूफ दिन हुंदा है, खास तौर पर वड्डी ईद का। सो वड्डी ईद हुंदी है, वड्डियां खुशियां हुंदियां ने। नाल कोशिश करो जनाब कि जिहड़ा मैसेज इस ईद ते इस ईद का मकसद हुंदा है, जिहड़ा मैसेज हुंदा है, उसनूं असीं जरूर समझण की कोशिश करिए कि जनाब क्या की गया है। सिर्फ जानवरों को कुरबान ना करो, अपनी नां नूं भी कुरबान करो। बहुत सारिया चीज़ा जिहड़ियां बड़ियां जरूरी हुंदियां ने। अमारा बेग, थैंक यू सो वेरी मच, थोड़ी मुहब्बत चाहत जिहड़ी आ मिल गई है, मौजूदगी का एहसास जिहड़ा मिल गया, बहुत शुक्रिया। जिंदे वसदे रहो, आबाद रहो, सलामत रहो, तो खुश वसो। ਹਮਾਰਾ ਬੇਗ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਫਲਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚਾਹਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਦੀ, ਬਰਾਹ ਰਾਸ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਫ ਐਮ 101 ਲਾਹੌਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜ਼ੈਨਬ ਅਰਸ਼ਦ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ 3 ਵਜੇ ਤਾਈਂ, ਕਾਲਸ ਰਾਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਫ ਐਮ 101 ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ।

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: दिस इज FM 101.1।

0: दौर बहुत बदल गया है। पहले लोग ऑटोग्राफ मंगते सन, हूँ फोटोग्राफ मंगते ने, यानी सैल्फी मंगते ने। सोशल मीडिया के आने तो बाद काफ़ी सारिया चीज़ा जड़ियाँ ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए ने। खैर गलबात का सिलसिला जोड़ा थोड़े सब नाल रहेगा जारी हो सारी 3 बजे ताई। लाइव कॉल्स में लैना शुरू करते हैं, दी वेखते हैं सब तो पहला कौन मौजूद ने साढ़े नाल अज के प्रोग्राम से। पहली कॉल से 042 के इजाफी कोड नाल 111-000-101 तुसी इस फोन नंबर नू जरूर मिलाओ, बल्कि मुसलसल मिला रहे हो जी, थोड़ी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी आया नू।
1: जी वालेकुम सलाम। वाह मौला तेरे काम चंगे, वक्त पै गया उम्र न्याणी नू, कई नहांदे विच तलाबां दे कई तरसदे ने गुट पानी नू। रब सच्ची दा नां लै के छोटिया दा वड्डा ते वड्डिया दा छोटा, भैणा दा भरा ते मावां दा पुत्र। शाहदपुर स्टाफ मुल्तान रोड लाहौर तो एक बार फिर आ गया उस्ताद जीरा अपने विचार सांझे करन लिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब जी।
0: वालेकुम अस्सलाम उस्ताद जीरा, सब दा वीरा ठीक ठाक हो
1: जी? अल्लाह दा करम है, बिल्कुल ठीक ठाक है जी।
0: चलो रब तला करम रखे, फजल रखे। उस्ताद जीरा अज तीन चीजा ने, जे दो दा इंतखाब करना पए ते केड़िया दो होणगियां?
1: मैं इंतखाब करांगा जी इज्जत ते शोहरत दी।
0: वेरी गुड।
1: इज्जत ते शोहरत बंदे दी वकार नू, बंदे दी शख्सियत नू बहुत ही समझो कि उतली सतह तक लैके जांदी
0: है, बुलंद करदियां ने। ठीक हो गया,
1: बुलंद करदियां ने। और बंदे दी इज्जत शोहरत बरकरार है ते फिर बंदे को दौलत भी आ जांदी है। नेक नीति दे नाल कारोबार करदा रहे ते लोग ओदे तो मुतासर होंदे ने।
0: वेरी गुड जी, जबरदस्त जबरदस्त जी। चलो जी सोहनी गल है, दो चीजां दा तुसी इंतखाब कीता, होर कुछ कहना चाहोगे?
1: होर गल जानो बाजी है, जुबैर बशीर साहब तुहाडे कोल आए सन
0: जी जी,
1: माशाला मेरे भी कन्ना में अज उन्हां दी आवाज पहुंची है। तो 2007 दी गल तकरीबन होएगी।
0: अच्छा,
1: मैनू इन्हां नाल मिलन दा इत्तफाक होया गौरी साहब, अल्लाह ताला गरीके रहमत करे,
0: आमीन।
1: ते कालरां दे विचों मैं वैद शख्सां के जिन्हें उत्थे जाके FM 101 ते इंटरव्यू दिता सी, रूबी इम्तियाज शो कर रही थी।
0: अच्छा, वेरी गुड जी, जबरदस्त।
1: आरजे रूबी इम्तियाज, मैं कालरां दे विचों पहला वैद शख्स सी कि जिन्हें उत्थे इंटरव्यू जाके दिता सी।
0: चलो जी, बड़ी जबरदस्त गल है जी। जुबैर साहब नाल बिल्कुल जिस वेले असीं पहले दिन इत्थे आए सी ते इन्हां नाल टाकरा होया, मुलाकात हुई, ते अलहम्दुलिल्लाह हुण तिकर इन्हां कोलों सीख रहे हां सी।
1: बहुत पुरानियां यादा शेयर हो गई ते अपना तारक भाई कुवैत आले ते अपने जेड़े थे पाकिस्तान च रहंदे ने उन्हां नूं ते अपना इमरान शाह नूं अज मेरा खुसूसी सलाम है।
0: ओके जी, वालेकुम अस्सलाम।
1: शहजाद ते नीफ ड्राइवर ते अख्तर राजपूत ते उस्मान मुगल ते बाकी तुहाडे लई बहुत सारियां दुआवां, रब राखा ते अल्लाह बेली जी।
0: अल्लाह बेली ते रब राखा, बड़ी मेहरबानी। उस्ताद जीरा साढ़े नाल मौजूद रहे, एक पुरानी याद जिहड़ी तुसीं शेयर कीती है, नाल रूबी इम्तियाज साहिबा दा भी तुसीं जिक्र कीता है। मेरा पहला प्रोग्राम, पहला शो जिहड़ा रेडियो दा उन्हां नाल होया सी, बहुत मेरे काबिल एहतराम ने, बहुत मेरे दिल दे नेड़े ने। इस तरह ही जनाब असातज़ा दी गल करिए ते जिन्हां कोलों मैं बिल्कुल अर्ली डेज च या कह लो कि ट्रेनिंग जिहड़ी है लई है, उन्हां च शमसुल हक, उन्हां दा भी नाम जिहड़ा सर फहरिस्त शामिल है, शम्स भाई नाल ते रूबी आपी नाल, दोवां नाल मैं पहला अपना कह लो कि रेडियो प्रोग्राम किया है, तो ट्रेनिंग जी है भी दोनों कोलों लई है। खैर हुण तिकर असीं सीख रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि थानू सब नूं जनाब इंटरटेन करिए, तो जो कुछ साढ़े सुनने वाले सुनना चाहते हैं उस म्यार दे प्रोग्राम करिए जी। अस्सलाम वालेकुम राणा साकिब साढ़े नाल मौजूद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नैना आ गई है प्रोग्राम च। अस्सलाम वालेकुम जैनब जी, आया नूं सानू कह रहे हो नाल प्रोग्राम दे हवाले नाल पसंदीदगी दे इजहार दा बहुत शुक्रिया। पिंड का नाम वाकई नहीं दसिया, यू आर डूइंग सो वैल, नईम बलोच सानू कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम नू पसंद कीता है जी। अस्सलाम वालेकुम जी आया नू।
2: वालेकुम अस्सलाम जनाब, आपकी क्या हाल है?
0: मैं ठीक ठाक, अपना नाम दसिया जे
2: जी। मैं लाहौर तो रिमशा।
0: रिमशा रिमशा, बहुत दिनों तो बाद गल हो रही है
2: जी। बिल्कुल, क्योंकि आपके शो में कॉल मिलती है कोई नहीं, और वो ये भी होता है ना बीच में आपकी ब्रेक भी बहुत लंबी आती है।
0: हाँ बस देख लो फिर इंजी है कुछ, ऐसी कॉल्स पिछले प्रोग्राम चीज तकरीबन साड़ी वापसी हुई है समझो, लेकिन कॉल्स जेड़ियां मैं कोशिश कीती है कि हुन आज दे प्रोग्राम च ज्यादा तो ज्यादा लवांगी।
2: अच्छा,
0: 2 घंटे कल ही?
2: ਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਾਂ ਕਾਲਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ
0: ਨੇ ਤੇ ਰਿਮਸ਼ਾ ਐ ਨਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚਲਾ ਜਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
2: ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
0: ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਰਿਮਸ਼ਾ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰੋਗੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੌਲਤ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ
2: ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਸ਼ੋਹਰਤ
0: ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ
2: ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੈਸੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਵੋ ਹਾਥ ਕੀ ਮਹਿਲ ਹੋਤੀ ਹੈ
0: ਅੱਛਾ
2: ਕਬ ਆਜ ਕਿਸੀ ਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਕਲ ਕਿਸੀ ਕੇ ਪਾਸ ਹੈ
0: ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ
2: ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਪਾਸ ਵੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੀ
0: ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਮਸ਼ਾ ਚਲੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਿਮਸ਼ਾ
2: ਔਰ ਆਪੀ ਆ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲਗਾਤੇ ਹੈ
0: ਅੱਛਾ ਜੀ
2: ਆਪਕੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਕਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਤਾ ਹੈ
0: ਚਲੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਢੂੰਡ
2: ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਤੀ ਹੈ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗਾਣੇ
0: ਬਸ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰੀਸਰਚ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ

0: पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
4: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: दिस इज FM 101। This is

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
4: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: जी जनाब, जी आइनू कहने हैं वेलकम ते खुश आमदीद रेडियो पाकिस्तान 101 FM दे लाहौर स्टूडियोस तों देसी बीट्स प्रोग्राम लैके थोड़े सब नाल मुखातिब ते मौजूद है ज़ैनब अरशद। लाइव कॉल ते गलबात जारी है, बराह रास थोड़े सब दी पार्टिसिपेशन 1110000101 ते। जी अस्सलाम वालेकुम जी आयानू।
6: वालेकुम सलाम, आप जी जनाब की हाल है? ठीक हो?
5: मैं ठीक ठाक वीरे, अपना नाम दसिया जे।
6: बोधी जट गल कर रहे हैं, आप ही रावी तो।
5: जी बोधी जट जी आयानू कहने हैं प्रोग्राम च, सब खैर खैरियत है?
6: हाँ जी शुक्र अल्लाह दा, आप जी तुहाडा शो सुन रहे हैं बोर्ड दे छावे बैठ के।
5: अच्छा वेरी गुड जी, ओए मैं कह रही हूं गर्मी बड़ी है।
6: हाँ जी हाँ जी, नहीं जी टूल क्यों ना आके हैं आप जी।
5: अच्छा जी चलो ठीक है, ते बकरा शकरा ले लिया या पिंडो ही मंगाना?
6: छतरा रखा।
5: अच्छा डेरे ते पा लिया, ते ये ते बहुत ही वीरे सवाब दी गल है, पहले पाले है उन्हों। हाँ जी, फिर उस तो बाद उन्हों कुर्बान करना अल्लाह दी राह ते। चलो जी ये बड़ी चंगी गल है, ते की कहोगे प्रोग्राम आज दा सुने? हाँ
6: जी सुने आप
5: जी।
6: आप जी
5: हाँ जी जी हेलो जी जी, थोड़ी आवाज जड़ी काट रही है
6: तो?
5: जी जी हूँ आ रही
6: है जी, अब
5: बिल्कुल आ रही है। की कहना चाहोगे?
6: मैं कह रहा आप जी इज्जत और शोहरत ही चाहिए, तो पैसा तो इंसान दी हाथ दी महल है, तो कब्र दा अज़ाब ही बनाना है।
5: ठीक हो गया जी, चलो तुहाडी गल जिहड़ी है मैं नोट कर ली।
6: साहब जी दा साहब री कह दे सना कि मैं कानर पहला जिहड़े वन वन ते ना इंटरव्यू दित्ता है। ते माशाल्लाह जी उहनां वास्ते असीं फुल्लां दा हार परोने आ, ते साडी असीं इहनां दी पार्टी करनी है सुमान मुगल दी ते शहजाद दी।
5: चलो
6: जी रहा जी,
5: ठीक है कंडे ते। चलो जी ठीक है बोधी जड़, बहुत शुक्रिया ठीक है, थैंक यू जी।

0: Get ready for non-stop hits and back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: था। मैंने सुना है खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मंसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मंसूबा बंदी को आम करो।
4: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: मैंने सुना है खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मंसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मंसूबा बंदी को आम करो।
4: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

Big radio, big style. Please, FM 101.

0: Big radio, big style.
1: Please, friend.
0: FM 101.
2: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
3: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
2: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
4: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
5: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
4: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
6: मतवासन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: Big radio, big style.
1: Please,
0: FM 101.

0: Big radio, big style. Please press FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: Big radio, big style. Please press FM 101.

0: Big radio, big style. Please, please. FM 101.
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मंसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मंसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मंसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मंसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मंसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: बिग रेडियो, बिग स्टाइल, FM 101।
6: खवातीन और हजरात, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कलाकार किसी को खो के लिखते हैं, और जो गा नहीं सकते तो आप सबकी खराब तवज्जो।

0: रास्तों में कहीं तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, यह है कमाल मेरा।
1: Big Radio, Big Style. Please play FM 101.
2: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
3: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
2: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
4: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
5: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाए।
4: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
6: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
1: Big Radio, Big Style. FM 101.

0: This is FM 101.
1: Appa, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: Big radio, big style. Music. Please, FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101।
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून, अल्शफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: 13 जून, पीसी होटल लाहौर आइए और दें अल्शफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
0: सुनते रहिए FM 101।
3: Alright, yes, assalamu alaikum Pakistan, and assalamu alaikum to all the Lahorians, to all the Punjabians, to all the Pakistanis, and of course to all the sweetheart listeners of FM 101. This is RJ Mahvish Zedi, aur bahut sare log sunkar jo hai na wo thoda sa surprise ho gaye hain ki suddenly RJ Mahvish Zedi ki awaaz kahan se aa rahi hai evening drive time mein. Alright जी, आप हैं बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट और मेरे साथ हैं मौजूद, और मुझे कहा गया कि जी आपने स्टार्ट करना है शो का, इसके बाद मुस्तफ़ा हमें करेंगे ज्वाइन। सो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हमेशा से एक बहुत ही खूबसूरत बात के साथ, और मेरे पास है कुछ इस तरह से। दुनिया में अगर कामयाबी चाहते हैं तो माँ बाप की खिदमत करें और कोशिश करें लोगों के काम आए और पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहने से जो एनर्जी आपके अंदर होती है वो आपको मज़ीद आपको कामयाबी के नज़दीक ले जाने में जो है ना वो हेल्पफुल होती है, मददगार होती है बहुत। तो माँ बाप एक ऐसी हस्ती हैं, एक ऐसी अल्लाह ताला का एक ऐसा तोहफ़ा है बच्चे के लिए कि जिनका निमुल बदल कोई नहीं है। हर रिश्ते का कोई ना कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है, कोई ना कोई, जैसे कोई चचा है, कोई मामू है, कोई ताया है, ताई हैं, आंटी हैं, खाला हैं, व्हाटएवर रिलेशनशिप का रिप्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन एक माँ और एक बाप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिनका आप नेमुल बदल ना तो कभी देखेंगे, ना कभी देखा है, ना कभी होगा, राइट? और राइट, इसी के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ कर चुके हैं और बहुत सारे लिसनर्स जो हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फेसबुक में मैंने भी वैसे कोई अपडेट नहीं किया है, लेकिन मुस्तफ़ा आकर इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे तो फिर ऑब्वियसली ये उत्कर्ष हो है, लेकिन खैर है, ताखीर और जो जल्दी होती है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह की वजह से होती है। तो इसी के साथ चलेंगे ट्रैक के जाने, उसके बाद वापस आएंगे और उसके बाद आपसे करेंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें शाम के हवाले से। आज है जी 23 मई 2026 और है हफ्ते का दिन। हफ्ता होता है हमेशा से आधा छुट्टी मनाने का दिन और आधा काम करने का दिन। इस हवाले से भी करेंगे बाद, आप सुने इस खूबसूरत से ट्रैक को, इसके उस पर आकर खिड़की से करेंगे हेलो टू द रिमेनिंग लिसनर्स। सो कीप लिसनिंग FM 101, दिस इज RJ Mahvish Zedi।

Alright listeners, welcome back right after a very beautiful track और आप सुन रहे थे तेरी खोज में मैं खो गया और बहुत सारे listeners जो है इसके participate कर रहे हैं 111-111 is the landline number you people have to dial and 4471 is the SMS number so you may join www.facebook.com/FM101Lahore page. इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज में बात की कि माँ बाप की खिदमत करने से कामयाबी जो है वो एक कहते हैं ना कि स्टैंप के साथ मिलती है कि कामयाबी आपकी है. वैसे एक मुझे बड़ी अच्छी बात याद है, किसी बुजुर्ग से पूछा गया कि आप कोई नसीहत करें मुझे, तो उन्होंने उन बुजुर्ग ने कहा था कि बस ये ध्यान रखना कि कोई अल्लाह से तुम्हारी शिकायत ना कर दे, बस ये ध्यान रखना. तो इसका मतलब ये है कि आप सबके साथ ऐसे चलें, ऐसे बिहेव करें कि कोई आपकी वजह से नुकसान में ना आ जाए, किसी का कोई मसला ना हो जाए, किसी को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़ जाए आपकी वजह से, कोई इतना ज़्यादा आपसे स्ट्रेस में ना आ जाए कि वो अल्लाह के सामने बैठ कर आपकी शिकायत कर दे. तो बस ये पॉइंट नहीं आना चाहिए आपकी लाइफ में, बाकी सब खैर है. राइट और राइट जी, इसी के साथ हम जो है नेक्स्ट ट्रैक की जानब बढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारे जो लिसनर्स हैं वो पार्टिसिपेट करें. अभी एक ऑफ एयर कॉल पे मेरे साथ बात हो रही थी, खातून थी, मैंने नाम पूछा, उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन वो कहीं थी शायद खतीजा जी बात कर रही हैं. लेकिन जी वो कहती हैं आपकी आवाज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा आपका वोकल जो है वो उनसे जो मैच करता है. वेल आपने कहा है तो ऑब्वियसली आपने उनको सुना होगा और आप मुझे भी सुन रही हैं, तो आपको लगता है कि शायद हमारी वॉइस जो है वो मैच करता है, तो इट्स ओके, थैंक यू सो वेरी मच. वो भी एफ एम 101 की फैमिली का एक हिस्सा है और मैं भी, तो जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ करने का और पसंद करने का. इसी के साथ चलेंगे जी नेक्स्ट ट्रैक की जानिब, उसके बाद वापस पलटेंगे और आप हमारे साथ हैं और बहुत सारे लिसनर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इसके साथ साथ मुझे दिल चाह रहा है कुछ इस तरह से प्लान करने का. दैट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक एंड पर्सनली आई लाइक इट टू. इट्स एन ऑसम अजहर ट्रैक, सैया, ब्यूटीफुल मेलोडियस ट्रैक यू कैन से. एंजॉय दिस, आई विल बी राइट बैक.

Alrighty, welcome back right after a very, very beautiful track, and I personally like this track so much. Asim Azram, the vocals and the singer is the track official video, and बहुत सारे listeners भी इस track को पसंद करते हैं, और मैंने उनकी requested track जो है वो पहले ही on air कर दिया, right? ताकि बहुत सारे जो request आनी है इस track से related Asim Azram का जी please play कीजिएगा, तो मैंने कर दिया. अभी हमारे साथ offer line पे 111-111 पे मौजूद है अब्दुल हमीद साहब, और वो कह रहे थे कि ऐसे लग रहा है जैसे खतीजा मुराद बोल रही है. And I like it too, यार भाई ज़रूर, क्यों नहीं. वो भी माशाल्लाह FM 101 फैमिली की बहुत इंपॉर्टेंट एक मेंबर हैं, और हमारे सीनियर्स में आती हैं, और मैं भी जैसे एक मेंबर हूँ FM 101 की पूरी फैमिली में, तो पूरी फैमिली का ही एक जो है ना बहुत ज़बरदस्त एक इम्पैक्ट है, और सारे तकरीबन जितने भी लिसनर्स हैं वो इसको पसंद करते हैं, और खदीजा मुराद भी एक बहुत खूबसूरत नाम है इनमें. और राइट, जैसे कि साथ साथ बात हो रही है माँ बाप के खिदमत से रिलेटेड, के अब बड़ों की खिदमत जो है ना वो करनी चाहिए, और ऐसा पॉइंट कोई लाइफ में नहीं आना चाहिए. किसी से पूछा गया था ना, जबकि आप कोई एक नसीहत करें तो उन बुजुर्ग ने कहा था कि तो अपनी लाइफ में कभी कोई ऐसा पॉइंट ना लेकर आना जिसमें कि आपकी शिकायत कोई अल्लाह से कर दे मुसल्ले पर बैठ के, आपकी वजह से किसी का कोई नुकसान हो जाए, बस ये स्टेज ना आपकी ज़िंदगी में, बाकी तो सब खैर होती है. आजकल वैसे एक अजीब सा मैंने देखा है, एक फैशन चला हुआ है, या एक कह लें कि क्या है, कोई ऐसी बात है हमारी सोसाइटीज़ में ज़्यादातर, कि लोग हमेशा आपसे ये पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, आपकी जॉब क्या है. अक्सर ये देखा गया है, सुनने में भी और देखने में भी यही चीज़ आती है, कि बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि आप क्या काम करते हैं. बेशक उनका वास्ता नहीं है हमारे साथ डायरेक्टली, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो ये चीज़ जानने में, शायद वो हमारे कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, आपके पास कितने घर हैं, कोई इस तरह की बात जो है ना वो आजकल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, सुनी जा रही है. या ये कह ले उर्दू में, अगर मैं इस चीज़ को आसान या स्लीज करूँ, तो ये देखा देखी का जो एक दौर है ना वो शुरू हो गया भैया, ये काफ़ी देर से शुरू है, अब शायद इसने थोड़ी सी हाइट पकड़ लिया या क्या है. तो ये एक चीज़ हम थोड़ी बहुत आपसे डिस्कस करेंगे इस वक्त, और इसके साथ साथ चलेंगे नेक्स्ट ट्रैक की जानिब, और उसके बाद हम आएंगे वापस. तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं क्या प्ले करूँ, क्या प्ले करूँ, मेरा दिल चाह रहा है मैं कुछ इस तरह से प्ले करूँ, आई होप आपको अच्छा लगेगा. So here we go for listen this track. www.facebook.com/fm101lahore page हाजिर खिदमत है, और एंजॉय करें हसन एंड रोशन को.

ऑलराइट सुनते रहिए एफएम 101 और बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं. 4-4-7-1 पे भी बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो झिलमिला रहे हैं स्क्रीन के ऊपर और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं. उनके मैसेजेस को भी शामिल करते हैं. जेब है हमारे साथ, कितनी अस्सलाम वालेकुम आपी, ये कहाँ से आज आज चांद कहाँ से निकला या सूरज कहाँ से निकला, क्या कहना चाहती हैं जेब? थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टेक्स्ट ऑन 4471. इसके साथ साथ जी आप पार्टिसिपेट करें 111-111 पे और 4-4-7-1 पे आपके मैसेजेस भी जो हैं वो ऑन एयर मैं शामिल कर रही हूँ साथ साथ. इसके साथ साथ हमारे साथ और कौन हैं? कामिल हैं. कामिल कहते हैं आप ही अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम कहते हैं. आपकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगा जैसे फिर से ज़िंदगी आ गई. ओ माय गॉड, इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो वेरी मच कामिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और आप बहुत अच्छा मैसेज करती हैं और अच्छा लगता है हमेशा मुझे आपसे बात करके. इसके साथ साथ ये बात हो रही है कि इंसान पेरेंट्स की खिदमत करे तो क्या नहीं मिलता, सब मिल सकता है. वैसे कहते हैं कम खाने में सेहत होती है, कम बोलने में समझदारी होती है और कम सोना जो है वो इबादत है. जबकि बहुत सारी देखें आजकल जैसा कि समर सीज़न भी है तो समर सीज़न में कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा मुर्गन ग़िज़ाएँ ना खाएँ, बहुत ज़्यादा जो ऑयली ग़िज़ाएँ होती हैं वो उनसे थोड़ा परहेज़ करें और कोशिश करें दोपहर के टाइम अगर आप सलाद खा लें, फूड ऐसा कोई लाइट सा फूड खा लें. आजकल तरबूज जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है, उसका इस्तेमाल कर लें. खरबूजा खा लें, उसमें तकरीबन 90% पानी होता है. आप ऐसी चीज़ों के रिप्लेसमेंट के साथ जो है ना दोपहर का गुजारा कर लें और सुबह जो नाश्ता है वो ज़रा अच्छा सा करें लेकिन विदाउट ऑयल. जैसे बॉयल एग खा लिया आपने, जैसे ओट्स खा लिया आपने, जैसे ड्राई नट्स के साथ आप दूध का इस्तेमाल कर लें, कुछ इस तरह से करके खा लें. बहुत ज़्यादा ऑयली फ्राइड चीज़ों से ज़रा परहेज़ कर लें. आजकल चूँकि समर सीज़न भी है, लाइट वेयरिंग करें, यानी कि लाइट वेयरिंग से बुरा लाइट कलर की जो वेयरिंग है वो आप करें, हल्के रंग पहने और डार्कर कलर्स से अवॉइड करें. कोशिश करें कि मेकअप बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, स्पेशली फॉर लेडीज़. और अगर जब दोपहर के वक्त बाहर निकलें तो थोड़े से प्रिकॉशंस जो है वो अपना लें, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है. इसी के साथ चलेंगे जी. मैंने एक और ट्रैक लाइनअप किया है आपके लिए और किस आवाज़ में है, कुछ खुद ही सुन के पूछ लें तो क्या ख्याल है. Sabina Farooq and Sahir Ali Bagan, the vocals right now, and the track is Manjogi.

ऑलराइट लिसनर्स, और आप सुन रहे हैं बड़ा ही खूबसूरत सा, बड़ा ही प्यारा सा ट्रैक मन जोगी होया रे, साहिर अली बग्गा एंड सबीना फारूक की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आप एंजॉय कर रहे थे हमारे साथ। और इसके साथ साथ बहुत सारे लिसनर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी पार्टिसिपेशन को भी ऐड करते चलेंगे हम साथ साथ। 4471 पे मैसेजेस आ रहे हैं आपके, और इसके साथ साथ ऑफ एयर कॉल्स भी जो है वो मैं ले रही हूँ। रमशा हमारे साथ थी और रमशा कहती हैं कि आप जो हैं, वैसे तो उन्होंने पहले मुझे बहुत ज़्यादा ग्रीटिंग्स के साथ वेलकम किया, तो रमशा मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज़ सुनकर। और इसके साथ साथ कहती हैं कि जैसे ईद जो है वो भी करीब करीब है, तो मैं एडवांस में आपको ईद मुबारक कहती हूँ। जी मैं भी रिमशा आपको ईद मुबारक कहती हूँ। फिर एक इन्होंने सवाल किया, वो सर मेरी हंसी बंद नहीं हुई क्योंकि जवाब में मैंने हाँ कहा था उन्होंने मुझसे पूछा आप ही क्या मैंने ज़्यादातर ये सुना है कि आदमी जो है या मेंस जो हैं वो बकरे का या कुर्बानी का गोश्त शौक से खाते हैं, ठीक है, ख़वातीन नहीं खाते या फीमेल्स शौक से नहीं खाती, क्या आप भी ऐसे करते? मैंने कहा हाँ। तो वो बहुत ज़्यादा हंसी और मैं भी हंसी क्योंकि बात प्रूव हो गई थी। वाकई में कुर्बानी का गोश्त है वो बहुत ज़्यादा इनटेक नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है। एक तो वैसे समर सीज़न है, दूसरा जो एनिमल्स होते हैं उनकी अपनी एक हीट होती है। तो थोड़ी सी प्रिकॉशंस ये कहूँगी आपसे अपनाने के लिए कि जब बहुत ज़्यादा हीट हो तो आप कोशिश करें कि आप बच्चे क्योंकि बच्चों का शौक़ होता है, उन्होंने जानवरों के पास जाना ही जाना है, उनसे मोहब्बत का इजहार करना ही करना है, उनसे लगाव का इजहार करना ही करना है, तो उनके हमेशा हाइजीन का ख्याल रखें। जैसे ही वो घर में वापस आएँ आप उनके हाथ अच्छी तरह जाके तो सोप से धुलवाएँ, मुँह उनका वॉश करवाएं, कपड़े उनके चेंज करवाएं। लेकिन यह है कि हर बार तो कपड़े चेंज नहीं हो सकते, लेकिन हाथ तो धुल सकते हैं ना। आप हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखें, उसके बाद उन्हें खाना खाने या जो भी वो खाते हैं उनको खाना खाने के लिए दें। लेकिन ये बात प्रूव है कि फीमेल्स जो मैंने देखी हैं ज़्यादातर वो काम ज़्यादा करती हैं, वो किचन में वर्किंग ज़्यादा करती हैं, वो कुर्बानी के गोश्त के डिफरेंट जो डिशेज़ होती हैं वो बना देती हैं, लेकिन वो इनटेक मैंने नहीं देखा कि कोई खातून बहुत ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त खा सके। जो मेल्स होते हैं वो ज़्यादा इन्जॉय करते हैं इस चीज़ को। जन्नत है हमारे साथ, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैंने पहली दफ़ा किसी भी प्रोग्राम में कॉल किया और रैंडम मैं आपको सुन रही थी और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि इतनी ज़्यादा लाइवली वॉइस जो है वो मैं सुन रही हूँ और ये FM 101 से आ रही है। ओके जी जन्नत, आपका नाम कितना खूबसूरत है जन्नत, और मुझे वाकई बहुत प्यारा लगा आप का बात करना। जन्नत बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 4471 पे मुझे मैसेज किया और इसके साथ साथ आपने पूछा है कि मैं कब का प्रोग्राम करती हूँ। वेल जी, मैं वैसे संडे का प्रोग्राम करती हूँ 5 to 7 संडे स्पेशल शो, और आज जो है वो एक रैंडम ही प्रोग्राम मुझे दे दिया तो मेरी कोशिश है कि मैं उसको अच्छे तरीके से निभा सकूं। तो मैनेजमेंट जो जैसे जैसे डिसाइड करती है हमें वैसे वैसे मूव करना पड़ता है। हमारे प्रोड्यूसर साहब जैसे जैसे हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं और जो हमारे सीनियर जो हैं वो हमें जिस तरह से बोलते हैं हमें उस तरह से ही प्रोग्रामिंग जो है वो करनी पड़ती है। तो इस वजह से आई होप कि आपको पसंद आएगा। बट एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैक में, और नेक्स्ट ट्रैक के बाद मिलते हैं, ठीक है ना। और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं क्या प्ले करूँ आपके लिए मैं कुछ इस तरह से प्ले ना कर दूँ। और जी इसके बाद आकर मिलते हैं आपसे इस ट्रैक के उस पार्ट, और आप डायल कर रहे हैं 1111 इज़ द लैंडलाइन नंबर। इसके अलावा 4471 पे आप मैसेज करें। मैसेज करने का तरीका बहुत आसान है, अपने मोबाइल फ़ोन उठाइए, क्रिएट मैसेज ऑप्शन में या राइट मैसेज ऑप्शन में जाके 101 कैपिटल एल लिखिए, स्पेस दीजिए, नाम लिखिए, स्पेस दीजिए, पैगाम लिखिए और भेज दें 4471 पर। हियर वी गो टुवर्ड्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक, कीप लिसनिंग FM 101।

0: Big radio, big style.
1: Please, friend.
0: FM 101.
2: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
3: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
2: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
4: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
5: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
4: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
6: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
7: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
8: सुनते रहिए FM 101।
9: ऑल राइट जी, सुनते रहिए FM 101 और बहुत सारे लिसनर्स हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद और बात हो रही है जी। हम वैसे तो जनरल बात करें लेकिन बात अदब और इखलाकियात के हवाले से ज़्यादातर है कि पेरेंट्स की खिदमत एक लाजवाल ऐसी आपकी अच्छाई है जिसको कोई जवाल नहीं है, जिसमें आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा कहते हैं अच्छे लफ्ज़ों को हमेशा तख्लीक करना चाहिए, बोलना चाहिए, अच्छे लफ्ज़ कोशिश करनी चाहिए कि आप अच्छी बात करें, अच्छे लफ्ज़ को अदा करें अपने मुँह से, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो आपका करेक्टर बनेगा। जब आपकी करेक्टर बिल्डिंग होगी तो जाहरी बात है जब आप दिलों किताबों में, फिर आप किताबें लिखेंगे, राइट करेंगे, तो जब आप लिखेंगे तो फिर आप दिलों में भी ज़िंदा रहेंगे, जब आप बोलेंगे तो आप लोगों के दिलों में भी ज़िंदा रहेंगे। तो कहते हैं ना, इंसान जो है वो दुनिया से चला जाता होता है लेकिन जो आपके रवैये, जो आपके बिहेव, जो आपके किरदार होते हैं, जो शख्सियत होती है, कहते हैं ना शख्स मर जाता है, शख्सियत जो होता है ना वो कभी नहीं मरती, शख्सियत हमेशा ज़िंदा रहती है। मेमरी इज़ नेवर डाई, कभी भी नहीं मरती आपकी यादें जो होती हैं वो हमेशा, कोई 8 से 100 साल पहले भी जब कोई अच्छी बात हुई होगी ना तो वो आज भी देखें लोग अपनी हिस्ट्री के तौर पर उसमें ऐड करें और कोशिश करें। मैं हमेशा बात कहती हूँ कि आप अच्छी डाइट लें, आप एक बैलेंस डाइट खाएं, आप अपना वर्क जो है जॉब बैलेंस करके चलें, इसके साथ साथ एक्सरसाइज को ज़रूर अपनाएं, कोशिश करें मतलब अपना स्क्रीन टाइम जो है, यानी जो आप मोबाइल रात को काफ़ी देर तक अगर यूज़ करते हैं वो ना करें। ये जनरल फिज़िकल हेल्थ जो है ना टिप्स हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ आज के ज़माने में, आज की टू डू लिस्ट में ऐड करती हूँ कि आप रीडिंग करें रात, कोई भी अच्छी किताब जो आपको अच्छी लगती है, जैसे कोई शायरी की किताब है, जैसे हिस्ट्री की किताब है, जैसे लिटरेचर है, कुछ भी जैसे जनरल नॉलेज है, जैसे कोई स्टोरी बुक्स हैं, यानी कि कोई जो आपको इस्लामिकली जो रिलेटेड है या नॉन इस्लामिक, इंग्लिश है, कोई भी बुक है, लिटरेचर किसी भी किस्म का है जो आपको पसंद है, जो आपको समझ, जो आप समझते हैं कि यार ये मुझे ना पढ़ना अच्छा लगता है, उसके साथ रिश्ता ज़रूर रखें। किताब के साथ रिश्ता बहुत अहम है, बहुत है आपके, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग में, आपकी सोच को मुस्बत रखने में। कोशिश करें ऐसा लिटरेचर पढ़ें जिसमें आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग हो, जिसमें आप कुछ सीखें। किताब आपको वहाँ पे भी ले जाती है जहाँ आप कभी नहीं गए होते, जहाँ आपने कभी सोचा नहीं होता, जिस स्टेज के ऊपर जाकर कभी आप कभी आपकी सोच गई ही नहीं होती कि अच्छा यार ये काम ऐसे भी हो सकता है, ये बात ऐसे भी हो सकती है। तो कोशिश करें कि आप किताब के साथ अपना रिश्ता बना कर रखें, जहाँ पे इतनी सारी आपने अपनी लाइफ में असूल बनाए हुए ना कि मैंने ये करना है, मैंने ऐसे करना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, वहाँ पे किताब के साथ रिश्ता ज़रूर बनाए। यकीन करें आपकी करेक्टर बिल्डिंग, आपको बोलने का तरीका आ जाएगा, आपको उठने बैठने का तरीका आ जाएगा। सिर्फ तालीम नहीं होती कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा लिख लिया, आप यूनिवर्सिटी चले गए, आप वहाँ से आगे कहीं और हाई जो है ना हायर एजुकेशन के लिए बाहर चले गए, उसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप अपने अंदर को नहीं खोजेंगे, अपने अंदर को नहीं झांक के देखेंगे, अपने अंदर से नहीं ढूंढेंगे। आपको दूर जाकर भी अपना आप खो देंगे, आप घुमा देंगे अपने आप को, हुजूम में गायब हो जाएंगे आप। इसलिए कोशिश करें कि अपने अंदर को सबसे पहले ढूंढ लें। वो आप इस तरह ही ढूंढ सकते हैं कि आप, क्योंकि देखिए ना, वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कायनात पे एक लहजे का गौर जो है ना, वो आपकी हज़ारों सालों की इबादत से बेहतर है। तो वो कैसे बेहतर है आपकी हज़ारों सालों की इबादत से? क्योंकि आप उसके ऊपर एक लम्हा अपना स्पेंड कर रहे हैं, एक लम्हा अपना उसकी प्राइस पे कर रहे हैं कि आपने गौर किया, फ़िक्र किया। और हर जगह पर ये हमें सुनने को, हमारी जो इस्लामिक बुक्स हैं उसमें भी हमें सुनने को मिलता है कि आप गौर करें, आप फिक्र करें, आप समझें, आप तदब्बुर करें। लेकिन फिर इंसान जो है वो जल्दी में होता है, इसीलिए वो खसारे में भी रहता है। ऑलराइट जी, इसी के साथ जो है मैसेजेस की जानिब भी बढ़ेंगे और आपकी ऑफ़र कॉल्स की जानिब भी। सलीम टेलर हमारे साथ थे और बहुत खुश थे और वो बता रहे थे ऑफ़र कॉल में कि उन्होंने एक बकरा लिया है और एक गाय ली है। तो जी, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे और बहुत ज़्यादा इसका सवाब पहुँचे। और बिल्कुल जी, आपने भी जो तमाम और लिसनर्स भी सुन रहे हैं, मैं यही चाहूँगी कि वो भी मुझे बताएँ कि उन्होंने कुर्बानी के लिए जो है वो कौन सा जानवर ख़रीदा है। आपने ऊँट लिए है, बकरे लिए हैं, गाय लिए हैं, भेड़े लिए हैं, वट एवर, बैल लिया है या क्या लिया है, तो ये आप मुझे बताएंगे इस कॉल के बाद। और मैं एक खूबसूरत सा ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ। सो लिसन दिस ब्यूटीफुल ट्रैक, आई विल बी राइट बैक। कीप लिसनिंग एफएम 101।

ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक। और आप सुन रहे थे सानू जानो माया तेरी ठगियां ने मारे, और बहुत सारे लिसनर्स जो है वो हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, उनकी पार्टिसिपेशन को ऐड करेंगे। लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन एक न्यूज़ मैं आपको बताती चलती हूँ कि स्टूडियोज़ में हमारे पास मुस्तफ़ा जो है वो अवेलेबल हैं, और मुस्तफ़ा जो है मेरे बाद आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। मेरा और आपका साथ था बस इतना ही, और उसके बाद जो है ना मुस्तफ़ा वो आपको जो है वो शो को प्रोलॉन्ग करेंगे और आपको शो को प्रोसीड करेंगे। और इसके साथ साथ जी लिसनर्स, जैसा कि मैंने आपसे अब इजाज़त चाहनी है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे बाद मुस्तफ़ा आपका दिल बहलाएंगे और आपसे बातें करेंगे, आपसे अच्छी अच्छी गुफ्तगू करेंगे, ईद के हवाले से करेंगे बातें जैसे कि मैंने की थी। और आप ज़रूर बताइएगा मुस्तफ़ा को भी कि आपने कौन सा जानवर ले लिया। सो थैंक यू सो वेरी मच अभी तक के लिए जितने भी लिसनर्स ने मेरा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को। संडे को मेरा शो होता है 5 to 7 संडे स्पेशल में, तो स्पेशल शो में स्पेशल लिसनर्स के साथ स्पेशल आरजे भी बिल्कुल जी मैं आपके साथ होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: के
1: जनाब, हेलो अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सामीन, क्या हाल चाल हैं जनाब? ठीक ठाक खुशबाश, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत ही मज़े में होंगे, बखैर वाफियत होंगे और बिल्कुल हमारे साथ साथ होंगे। वेल जनाब, हमें कहते हैं FM 101 चैनल वीडियो पाकिस्तान लाहौर और मुझे मुस्तफ़ा कहते हैं। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को, तमाम चाहने, तमाम सराहने वालों को इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, ड्राइव टाइम में खुश आमदीद कहते हैं। वेल जनाब, आज 6:54 5:54 हुए चाहते हैं, मेरा आपके साथ ये जो साथ है इसका आगाज़ हुआ चाहता है और अचानक आगाज़ हुआ है। वो कहती है ना कि अचानक कुछ चीज़ें होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। और यस जनाब, तारीख की बात कर लें तो जनाब आज तारीख हो चली है 23 मई और 2026 21वीं सदी का 26वां साल जो है वो है अपने इख्तिताम की जानिब रवाना। तो जनाब बिल्कुल बातें करेंगे और आज के हवाले से कुछ मौजूदात हैं, कुछ डिस्कशंस हैं, तो हमने सोचा क्यों ना शाम की इस पहर में भी आपका साथ देने के लिए, आपका साथ निभाने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, आपकी बातें करने के लिए क्यों ना हम आज आपको ज्वाइन करते हैं। तो अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ भी सुनना चाहते हैं या सुनाना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। तरीका इंतहा आसान, यू कैन रीच मी अपॉन FM 101 लाहौर का जो फेसबुक फैन पेज है, यहाँ पे पोस्ट, चलिए मैं लगा लेता हूँ, मैं पोस्ट अपडेट कर देता हूँ। सो पहले आइए, पहले पाइए की बुनियाद पर आप मुझ तक अपनी रसाई को यकीनी बना सकते हैं और कह सकते हैं जो भी आप कहना चाहते हैं, सुन सकते हैं जो भी आप सुनना चाहते हैं। जनाब अगर बात कर ली जाए पूरे पाकिस्तान में, खसूसन बिलखसूस लाहौर और उसके मज़ाफात के अलावा पूरी दुनिया में, आप हमें जहाँ कहीं से भी समात फरमा रहे हैं, हंसते हुए, गाते हुए, मुस्कुराते हुए, चहचहाते हुए, लहलहाते हुए, गाड़ी चलाते, खाना बनाते, खाते या खिलाते हुए, और साथ साथ आप हमें सुन रहे हैं। तो जनाब आपकी समातों का, आपके ट्यून इन करने का, आपके लॉग इन करने का बेहद बेहद शुक्रिया। हम जनाब आपको मोटिवेट करेंगे, आपसे बात करेंगे और आपका साथ देंगे। वीकेंड है और वीकेंड का तकरीबन जो है रात से बकायदा आगाज हो चुका था। कुछ मेरे जैसे गरीब लोग होते हैं जिनको एक ही छुट्टी होती है, तो उनका जो है वीकेंड आज जो है उसका आगाज़ होगा। तो जनाब बताएं आपके क्या प्लान्स हैं, क्या मामलात हैं, और इस गर्मी की शिद्दत में कहीं जाने का अगर आपका प्लान है तो कहाँ जाना आपको मकसूद है, कहीं नहाने जा रहे हैं? यू नो कि आजकल के जो अय्याम होते हैं इनमें वाटर पार्क्स का जो है वो रुख किया जाता है, कुछ ऐसे प्लान्स किए जाते हैं, कुछ इस तरह की जो पिकनिक्स हैं वो अरेंज की जाती हैं कि जिनमें कुछ नेचर के साथ या कुछ इस तरह के इलाके होते हैं जैसे सियाती मकामात होते हैं, यू नो के जो अगर नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ चले जाते हैं कुछ लोग, लेकिन दो दिन में कहाँ पे जाया जाता है, कहाँ से वापस फिर आया जाता है? तो आप अपने गिरदोनवा में मुकामी जो तफरीही मकामात हैं वहाँ पर आप जाने का अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप हमें बताइएगा, तो हो सकता है कि हमारा भी जहन बन जाए और आपसे वहाँ पर मुलाकात हो जाए। वेल जनाब बातें करेंगे और दिस इज़ माय जॉब एंड दिस इज़ व्हाट आई डू। अभी 5:57 हुए चाहते हैं और कुछ ही देर के बाद जो है एक न्यूज़ब्रेक का वक्फा हम शामिल करेंगे, देन उसके बाद आपसे बातें की जाएंगी और आपके जो फरमाइशी गीत हैं, फरमाइशी गाने हैं, इनको भी अगर आपने अच्छे वाले बताए ना तो वो ज़रूर चलाए जाएंगे। गले को पता नहीं क्या हो गया और वो मैं शायद होता है ऐसा कि सुबह के टाइम करने वाले जो शोज़ करने वाले आर्टिस्ट होते हैं शाम को आते हैं ना तो थोड़ा सा वो अजीब अजीब लगता है, दुनिया बदली बदली लगती है। तो हो सकता है कि इस टाइम सुनने वाले आप तमाम सामीन को भी ऐसा लग रहा होगा कौन है, कितों आ गया है। तो जनाब बिल्कुल हम आते रहते हैं, कहने का मकसद ये है कि मेरी आपके साथ मुलाकात जो है वो सुबह रहती है, हर बुध को सुबह 9 से 11 सिटी वाइब्स में। और मुझे याद पड़ता है कि एक वक्त वो भी था, अच्छे वक्त थे जब हम ड्राइव टाइम किया करते थे और शाम के इस पहर में आपके साथ गप और शप लगाया

well, जनाब मैं मुसलसल देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो टेलीफोन की लाइन है, जो लाइट है, वो ब्लिंक कर रही है. इट मीन्स कि आप तमाम सुनने वाले मौजूद हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं, दिलाना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, अपनी बात को आगे पहुंचाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपकी लाइव कॉल्स को भी इंटरटेन किया जाएगा, लेकिन 6 बजे के बाद. ठीक है, अभी आपने क्या करना है, इंतज़ार करना है, सब्र करना है, और अपनी अपनी जो क्या कहते हैं सीट बेल्ट्स को जो है वो आपने बांधे रखना है. और वो कहते हैं ना कि तेज़ी सभी को भाती है मगर इसी में जान जाती है. अभी एक न्यूज़ पे का वक्फा जो है वो शामिल करेंगे, देन उसके बाद आपको ज्वाइन करते हैं. सो स्टे ट्यून्ड, स्टिक अराउंड, एंड यस, डोंट गो एनीवेयर. क्या था वैसे

0: आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की ज़िंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मज़ीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विज़िट करें www.alshifaeye.org।
1: ख़ानदान में किसी फ़र्द की वफ़ात बिलाशुबा एक सानिया है, लेकिन मरहूम का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराना बहरहाल ज़रूरी है ताकि उसके गलत इस्तेमाल की रोकथाम हो और विरासत की तकसीम में कोई परेशानी ना हो। याद रखें, नादरा यूनियन काउंसिल में इंदराज की बुनियाद पर मतवफ़ी का शनाख्ती कार्ड मंसूख करता है और आपको उन तमाम मराहिल की तकमील में हर मुमकिन मावनत फराहम करता है। नादरा ने यूनियन काउंसिल में वफात का इंदराज आसान बनाने के लिए पाकिस्तान भर के अस्पतालों में जदीद तरीन डेथ नोटिफिकेशन टूल्स फराहम कर दिए हैं। हस्पताल में अपने खानदान के किसी फर्द की वफात पर अपना और मतवफ़ी का शनाख्ती कार्ड लेकर हस्पताल में मौजूद रजिस्ट्रेशन काउंटर पर तशरीफ ले जाएं और वफात का इंदराज करने के बाद रसीद हासिल करें। इसके साथ ही आपको दिए गए नंबर पर नादरा की जानिब से SMS रसीद भी मौसूल हो जाएगी। वफात के 30 दिन के अंदर हस्पताल की रसीद के हमरा अपनी यूनियन काउंसिल में तशरीफ लाएं और वफात का इंदराज कराने के बाद डेथ सर्टिफिकेट हासिल करें। इसके बाद नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं और मतवफ़ी का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराएं। नादरा की पाक ID मोबाइल ऐप के जरिए आप यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट और नादरा से बेफॉर्म घर बैठे भी बनवा सकते हैं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: मैंने सुना है खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
3: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
2: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
4: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
5: खानदानी मंसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
4: सोच को आजाद करो, खानदानी मंसूबा बंदी को आम करो।
6: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 किया। सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून, अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
7: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: जी हाँ जनाब, एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शो लाइव है ड्राइव टाइम और मुझे मुस्तफ़ा कहते हैं। 6:11 पे चाहते हैं। ओके जनाब, सवाल आपसे ये किया गया है, आपने मुझे ये बताना है कि आप अपना वीकेंड कैसे मनाते हैं। छुट्टी का दिन, स्पेशली संडे का या सैटरडे का दिन अगर आपको छुट्टी होती है, सो के गुजारते हैं, कहाँ पे जाते हैं, क्या प्लान्स आपके होते हैं या क्या प्लान्स आप बनाने वाले। तो ये बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों को ना एक वो कहते हैं ना कि सुस्ती का आज़ा होता है, जिनमें मैं खुद भी शामिल हूँ, कि होता कुछ यूँ है कि हमें कुछ छुट्टी का दिन होता है तो हम बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, वो क्या कहते हैं, शेख चिल्ली के जो ख्वाब हैं वो देखते हैं, लेकिन जैसे ही छुट्टी का दिन आता है तो हम सो के गुजार देते हैं और उसके बाद हम पछताते रहते हैं कि ये क्या हो गया तो वो क्या हो गया। वेल, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन हमने उसको अच्छा बनाने के लिए, अच्छा बिताने के लिए जो है ना, वो अपनी हत्तुल वसा जो कोशिश है वो लाजमी करते रहना है। वेल, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, जानते हैं कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अब बोलो भैया। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से?
1: जी आप पहचाने में, कौन बात कर रही हूँ?
0: कौन बात कर रही हैं? आदिल भाई बताएं कौन बात कर रही हैं। रिमशा बात कर रही हैं। रिमशा कैसी हैं आप?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मुस्तफा भाई आप बताएं, आज तो एक तो वैसे पहले आप ही आई थी, वो भी चांद दिखने, और आज भी अब चांद निकल गया।
0: अच्छा, तो पहले क्या निकलता है?
1: अभी तो दिन के टाइम तो सूरज निकलता है, लेकिन चांद आज जल्दी निकल गया।
0: सही सही। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो रिमशा बताएं क्या प्लान्स है आपके वीकेंड्स पे, ईद की तैयारी कर ली है, कुछ जानवर शानवर लेने जाना है?
1: इनके क्या प्लान होते हैं, सारा दिन बेचारियों ने घर में रहना होता है। अगर कहीं भाइयों को कह दे, ये किसी को कह दे हमें लेके जाए, तो कहेंगे कहाँ जाना आप।
0: अच्छा रिमशा, मैं ये नहीं बात मानता कि लड़कियाँ बेचारी होती हैं, बेचारी होने में और बेचारा बनने में फर्क होता है,
1: इतनी नाजुक होती है।
0: अच्छा सही है, सही है, सही है, मान लिया आपने, कह लिया। अच्छा तो क्या मतलब, कुछ ना कुछ तो सोचा होता है ना, घर में कुछ सोचा होता है, कुछ पढ़ने का, कोई बुक पढ़ने का, सफाई करने का, या हाँ हाँ जी जी तो बताएं।
1: अगर मुझे वीकेंड में अगर छुट्टियां वगैरह मिल जाए तो मैं आराम भी करती हूँ और मस्तियाँ करती हूँ, मोबाइल्स वगैरह पे टिकटॉक या गेम्स वगैरह खेलती हूँ।
0: अच्छा,
1: अगर यानी कोई ईद वगैरह का या फंक्शन वगैरह, यानी बकरा ईद पे मैं कहीं भी नहीं जाती, अगर छोटी ईद पे सबसे ज्यादा मजा आता है, सहेलियों की तरफ जाती हूँ, उनसे मिलती हूँ और सही हल्ला गुल्ला करते हैं, छोटी ईद पे मजा आता है मुझे सबसे ज्यादा, बकरा ईद का नहीं ज्यादा मजा आता, सब जगह फिर गोश ही गोश होते हैं और होता क्या है।
0: अच्छा ये जो इस तरह की लोग बातें करते हैं ना, सबसे ज्यादा गोश्त खाते भी वही हैं, ऐसा ही है ना वैसे?
1: नहीं बिल्कुल, मैं गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाती, ना बकरे का, ना भेड़े का, ना ऊंट का।
0: अच्छा फिर ठीक हो गया, ठीक है।
1: मैं शॉपर पकड़ती भी नहीं हूँ भाई, अगर मेरे घर आ भी जाए तो।
0: नहीं नहीं, ले लेना चाहिए, इसमें की कोई मजाक तो नहीं है, लेके किसी को दे देता बंदा, किसी अकदार को दे देता, किसी मोहल्ले में दे देता।
1: हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि मेरे भाई बाबा खाते थे या मामा खाती हैं, मैं बिल्कुल नहीं खाती, मैं भूखा रहना बर्दाश्त कर लूंगी, मैं कौन मिल जाए से बाहर।
0: ठीक है, अच्छा आपने पता क्या करना है, इस बार जो है ना वो दे देना, मुझे दे देना गोश्त, ठीक है?
1: चलें ठीक है,
0: आपको थैंक यू सो मच रिमशा, और कुछ कहना है?
1: और यही कहूंगी आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और प्यारा शो करते रहें।
0: थैंक यू सो मच रिमशा,
1: आप रात के टाइम भी रख लें,
0: रात के टाइम भी, हाँ रखेंगे रखेंगे रखेंगे, ठीक हो गया।
1: दो शो किया करें आपके, देखना कितने ज्यादा कॉलर जमा हो जाएंगे, मैसेजेस करने वाले भी कितने ज्यादा होंगे, सुबह के टाइम फिर है ना आपके आधे कॉलर सोए होते हैं।
0: हाँ ये भी है, बिल्कुल ऐसा ही है,
1: दिन में शुमार मैं भी होती हूँ।
0: हाँ नहीं नहीं, आप तो नहीं सोती, आप काफी डेडिकेटेड कॉलर हो। चलो ठीक है रिमशा, अपना ख्याल रखना।
1: ओके ओके,
0: अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
2: मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ भाई, अस्सलाम वालेकुम, लाहौर पाकिस्तान।
0: वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम,
2: फरुखाबाद,
0: फरुखाबाद, फरुखाबाद, की हाल चाल है? सब ठीक ठाक हो?
2: पिछले टाइम आए सोलह
0: हाँ जी पिछले टाइम आ गए हैं बस की करिए। अच्छा आपकी हाँ जी हाँ जी हाँ जी
2: मैं तो पहले रिमशा के बारे बात करना चाहूंगा।
0: अच्छा की
2: रिमशा कहती मैं खांदी नहीं खांदी है जो पका उदो ही खा ली मुड़ के मामा के सामने मैं नहीं खाना मैं मैंने भुख नहीं है
0: हाँ है तो होंगे इस तरह
2: पकाते पकाते अद्धी साड़ी खा जाती है मुड़ के भुख नहीं।
0: अच्छा सर मैनू दसो कि इतवार कोई छुट्टी वाले दिन कोई प्लान कर दे हो कोई जाना कुछ मंडी शंडी जाना के कोई नहीं
2: नहीं जी मैं मेनू तो 24 घंटे की कोई छुट्टी नहीं होंगी अच्छा। दुकान पे नमाज का टाइम बाद दुकान 24 घंटे सर्विस
0: सही ठीक हो गया बकरा छतरा जरा काम की कर दे हो वैसे तुसी
2: ਠੀਕ ਹੈ।

चलिए जनाब एक और कॉल ले लेते हैं और इसके बाद हम बात कर लेंगे आज के दिन के मौसम के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। ओके वेल मामला कुछ यूँ है कि मैंने आज के अपने शो के हवाले से पोस्ट जो है वो अपलोड नहीं की क्योंकि वक्त कम था और मुकाबला जो है वो सख्त था, टाइम नहीं मिला। अगर मैं पोस्ट लगाने पे टाइम लगा देता तो आपसे बात नहीं कर पाता। तो अगर आप फिर भी बात करना चाहते हैं, कोई वैसी बात करना चाहते हैं, कोई अच्छी वाली बात करना चाहते हैं, या अगर आप ये चाहते हैं कि आप कोई ऐसी बात कहें जिसमें आपका नाम जो है वो सीगा रास में रखा जाए, कुछ और नहीं आपने समझना। आपने ये समझना है कि कुछ ऐसे मसले मसाइल होते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं कि इंसान चाहता है कि वो ना एक क्या कहते हैं कि प्राइवेसी के साथ जो है ना अपना जो मामला है, जो अपना इशू है, जो मसला है, वो बहम जो है वो बोलने वाले तक पहुंचाए। सो वो पहुंचाने के लिए फिर वन लाहौर का जो फेसबुक फ़ैन पेज है, यहाँ का इनबॉक्स का जो ऑप्शन है, मैसेंजर का जो ऑप्शन है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो उनको भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। मैं कुछ ही देर के बाद देखूंगा और अभी एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओके अच्छा, ये भी अच्छी बात है कि कभी कभी कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि कि सोशल मीडिया के हवाले से आजकल बहुत बात की जाती है और प्राइवेसी इश्यूज़ की बात की जाती है और बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनकी वजह से ना हमें लेने के देने पड़ जाते हैं। मैंने मुझे याद पड़ता है कि मैंने एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था जिसमें सोशल मीडिया पर अगर कोई इंसान अपनी पिक्चर अपलोड करता है, उस पिक्चर में ज़रा सी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि जिसको स्कैन किया जा सकता है, जिस तक जो है वो अपनी रसाई मुमकिन बनाई जा सकती है, वो आपके आपका एड्रेस हो सकता है। एक लड़की की मैंने ऐसी स्टोरी पढ़ी थी और बिल्कुल वो फैक्चुअल थी और हकायक पर मुबनी थी कि एक लड़की थी, खातून थी, उसकी डिग्री होती है, डिग्री के बाद वो क्या करती है कि वो उसी डिग्री के साथ ना अपनी पिक्चर लेती है और कॉन्वोकेशन जो होता है उस पिक्चर के साथ वो सोशल मीडिया पे दिखाई देती हैं और उस पिक्चर के ज़रिए से क्या होता है कि उनकी तमाम जो मामलात होते हैं, जो उनका एड्रेस होता है, उनकी फिंगर टिप्स तक का इस्तेमाल करके और बहुत सारे ऐसे अब जो हैं मामलात किए जाते हैं, बहुत उनको नुकसान पहुँचता है उनकी इवन के साथ वो सोशल मीडिया पर दिखाई देती हैं और उस पिक्चर के ज़रिए से क्या होता है कि उनकी तमाम जो मामलात होते हैं, जो उनका एड्रेस होता है, उनकी फिंगर टिप्स तक का इस्तेमाल करके और

0: सामने थी, यानी कि कैमरे के सामने मौजूद थी। तो इस तरह के मामलात होते हैं जिनका हमने ख्याल रखना होता है और अपने प्यारों का भी ख्याल रखना होता है। बच्चों का आजकल बहुत इस्तेहसाल जो है वो किया जा रहा है सोशल मीडिया का मिसयूज़ करके, उनको किस तरह से ग्रूमिंग गैंग के हवाले से कभी हम बात करेंगे कि बच्चों को किस तरह से सोशल मीडिया पर जो है उनकी जहन साजी की जाती है, उनको तैयार किया जाता है अपने मजमू मकासद के लिए। वेल, आज शाम की इस पहर में आपको डराना जो है वो बिल्कुल मकसूद नहीं था, वो कहना ये था कि कभी कभी कुछ काम हम जो है ना वो जान के नहीं भी करते ना, तो उनके ना करने में बेहतरी ही होती है। इसी तरह से हमने आज की अपनी पोस्ट नहीं लगाई है और हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसे सुनने वाले जो कि अपनी रसाई मुझ तक हम तक यकीनी बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जो सोशल मीडिया आईडीज़ हैं वो एक्सपोज ना हो, वो सबके सामने ना आए, तो वो बिल्कुल हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। सवाल आपसे ये पूछा है कि आपने मुझे ये बताना है कि आप अपने वीकेंड्स को कैसे प्लान करते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं, अगर नहीं जाते तो घर में रहते हुए आपके क्या मामलात होते हैं, क्या आपके ऐसे इरादे होते हैं। सो स्पेशली ये जो खातीन सुनने वाली हमारी लिसनर्स हैं इनसे भी मैं पूछूंगा ताकि दूसरी सुनने वाली, जैसे कि अभी रिमशा बात कर रही थी, वो कहीं पर नहीं जाती है। सो ऐसी तमाम सुनने वाली फ़ीमेल, ऐसी तमाम सुनने वाली खातीन जो कि कहीं पर नहीं जाती, घर में रहते हुए वो किस तरह से अपने डे को, अपने छुट्टी वाले दिन को प्रोडक्टिव बना सकती हैं। वेल, कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम।
0: जी सर, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: जी आप फोटो नाम लगाए तो शो करें तो अच्छा लगता है।
0: अरे सर, आपका उसने समात है, क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम बताइएगा, अपना नाम बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसे।
1: माई नेम इज मोहम्मद उस्मान मुगल।
0: अरे उस्मान मुगल आ गए हैं सर, अभी आपसे पिछले दिनों बात हुई है ना, सुबह के टाइम मिस कर दीजा भी थी।
1: साल हुई थी बात।
0: अच्छा अच्छा, पिछले साल हुई थी। सही सही, क्या कहना चाहेंगे आज, क्या कहना चाहेंगे?
1: ये आपका जो एकदम से आना है,
0: हाँ जी,
1: वो बहुत अच्छा लगा।
0: अच्छा।
1: वो सरप्राइज जिसको कहते हैं।
0: अच्छा, यकीन करें मैं सोया हुआ था और अचानक सोया उठा और मुझे लग रहा था कि बोलिया भी नहीं जाना वैसे।
1: नहीं, आप अच्छा बोलते हैं, तो बोलने वाले होते हैं ना वो, नींद जितनी देर तक उनकी पूरी ना हो फिर उनको रिलैक्सेशन नहीं मिलती।
0: बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने भी पढ़ा था कहीं पे इस हवाले से, कभी बात करेंगे।
1: ये आपने पढ़ा हुआ है लेकिन हमने ये खुद ऑब्जर्व करते हैं डेली बेस पे।
0: हाँ, सही सही सही।
1: जो पढ़ने
0: सही
1: वाले होते हैं ना, बोलने वाले होते हैं माइक पे,
0: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ,
1: उनकी नींद शर्त है उनके लिए।
0: जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है।
1: जब नींद नहीं लेंगे तो गला जो है वो हार्ड हो जाएगा, बोलने का दिल नहीं करेगा, आवाजदारी सी होगी
0: जी,
1: तो वो मजा नहीं आएगा।
0: बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, मुझे बताएं कि छुट्टी का दिन आप कैसे गुजारते हैं, कैसे बिताते हैं?
1: जी छुट्टी का दिन एक दो दिन पहले प्लान करते हैं हम।
0: अच्छा ठीक है।
1: कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे जाना है? जैसे सुबह छुट्टी है।
0: अच्छा,
1: सुबह मैंने दो जगहों पे जाना है।
0: अच्छा, कहाँ जाना बता दें अगर।
1: पहले जाना मैंने शरगोर शरीफ।
0: अच्छा ठीक है,
1: ठीक है, वहाँ एक महफिल है।
0: अरे क्या बात है, सही।
1: और उसके बाद जाना है नारिंग।
0: अच्छा,
1: वहाँ भी महफिल है।
0: अच्छा, नारंग मंडी
1: जी।
0: अच्छा ठीक है,
1: ये मेरा कल का प्लान है सुबह का। बाकी जब शाम को आएंगे फिर मंडी का चक्कर लगाना
0: है। अच्छा सही,
1: उधर से बड़ा अच्छा या कट्टा,
0: क्या बात है। अच्छा अच्छा, सही सही सही,
1: तो ये प्लान हमारा। तो
0: चले, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगता है कि कई लोग अपने छुट्टी वाले दिन को ज़ाया नहीं करते हैं, वो अपनी तफरीक के लिए या अपने रोज़मर्रा के मामलात की जो काम होते हैं उनको बेहतर बनाने के हवाले से छुट्टी वाले दिन काम कर लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है।
1: ये तफरीक जो होती है ना, ये माइंड को रिफ्रेश करती है।
0: जी बिल्कुल ऐसे ही है।
1: ये जरूरी नहीं है कि आप घर से में ही रहें, आप घर से थोड़ा सा टाइम निकाल के किसी पार्क में चले जाएं 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए।
0: बिल्कुल ऐसे ही,
1: सारे दिन की और सारे रात की जो थकन है वो क्लियर हो जाएगी।
0: ये बहुत बेहतरीन आपने बात की है और इसमें लाजमी नहीं है छुट्टी वाला दिन हो, सुबह सुबह आप जा सकते हैं। और मुझे याद पड़ता है कि मैं सुबह सुबह ना, हमारे घर के पास शालामार बाग है और मैं वहाँ पे वॉक किया करता था और मतलब सारे, ऐसा लगता है कि आपका माइंड इतना फ्रेश हो गया, जो स्ट्रेस है, जो जहनी दबाव है उसका पता ही नहीं चला कहाँ गया। ऐसा होता है ना, मेरे साथ ऐसा होता है। जी सर, चलें, बहुत शुक्रिया।
1: फील करने वाला भी हो ना,
0: हाँ,
1: तो फिर उसको फील होगा।
0: बिल्कुल ऐसे ही है सर। चलें ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया।
1: हाँ, कॉल लंबी हो गया उसकी।
0: जी जी जी जी, नहीं नहीं आपने बातें काफ़ी मायने खेज की, मैंने कहा चले बात कर लेते हैं आपसे। ठीक है,
1: आपकी भी फील्ड है और मेरी भी फील्ड है ना।
0: हाँ सही सही सही, क्या बात है सर। चलिए सलामत में अपना ख्याल रखिएगा, ठीक।

मुगल जनाब आतिफ असलम की आवाज़ को शामिल करते हैं और कहते हैं बुरा हाल इस ट्रैक के इस बार आपसे मुलाकात होगी. सो स्टे ट्यून्ड, स्टिक अराउंड एंड यस डोंट गो एनीवेयर.

0: Manuel Tiunquía.
1: तेरह जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की ज़िंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मज़ीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विज़िट करें www.alshifaeye.org।
2: ख़ानदान में किसी फर्द की वफ़ात बिलाशुबा एक सानिया है, लेकिन मरहूम का शनाख्ती कार्ड मनसूख कराना बहरहाल ज़रूरी है ताकि उसके गलत इस्तेमाल की रोकथाम हो और विरासत की तकसीम में कोई परेशानी ना हो। याद रखें, नादरा यूनियन काउंसिल में इंदराज की बुनियाद पर मतवफ़ी का शनाख्ती कार्ड मंसूख करता है और आपको उन तमाम मराहिल की तकमील में हर मुमकिन मावनत फराहम करता है। नादरा ने यूनियन काउंसिल में वफात का इंदराज आसान बनाने के लिए पाकिस्तान भर के अस्पतालों में जदीद तरीन डेथ नोटिफिकेशन टूल्स फराहम कर दिए हैं। हस्पताल में अपने खानदान के किसी फर्द की वफात पर अपना और मतवफी का शनाख्ती कार्ड लेकर हस्पताल में मौजूद रजिस्ट्रेशन काउंटर पर तशरीफ ले जाएं और वफात का इंदराज करने के बाद रसीद हासिल करें। इसके साथ ही आपको दिए गए नंबर पर नादरा की जानिब से SMS रसीद भी मौसूल हो जाएगी। वफात के 30 दिन के अंदर हस्पताल की रसीद के हमरा अपनी यूनियन काउंसिल में तशरीफ लाएं और वफात का इंदराज कराने के बाद डेथ सर्टिफिकेट हासिल करें। इसके बाद नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं और मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराएं। नादरा की पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए आप यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट और नादरा से बेफॉर्म घर बैठे भी बनवा सकते हैं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
3: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
4: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
3: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
5: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
6: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
5: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
7: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
4: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
3: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
5: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
6: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
5: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
7: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मज़ीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विज़िट करें www.alshifaeye.org।
0: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।

0: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की ज़िंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मज़ीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विज़िट करें www.alshifaeye.org।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
3: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
2: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
4: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
5: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
4: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
6: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
7: सुनते रहिए FM 101।

0: जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर, कैसे हैं?
0: मैं ठीक, आप बताएं कैसी हैं, अपना नाम बताइएगा।
1: मैं भी ठीक ठाक। आप बताएं मैं कौन हूँ?
0: मैं क्यों बताऊं?
1: नहीं, आज ना आप बताएंगे, आप ना जो सोकर उठता है ना फ्रेश होता है, तो वो बताए थे। आप बताएं कौन हूँ मैं?
0: आप क्या नाम है, रक्षंदा है?
1: नहीं तो।
0: अच्छा, अज़ैबुन्निसा है?
1: बिल्कुल भी नहीं।
0: अच्छा, बिलाल सईद है?
1: क्या क्या नाम ले रहे हैं आप?
0: तो बता देना, मैं तो यही नाम लूंगा।
1: अच्छा, साजिदा जी।
0: साजिदा जी, साजिदा साजिदा जहूर?
1: नहीं नहीं, वो नहीं। अच्छा, मैं वाली साजिदा।
0: अच्छा अच्छा, आप साजिदा परवीन बात कर रही हैं। सही सही, ठीक हो गया, ठीक हो गया। साजिदा क्या कहना चाहेंगी?
1: हाँ जी, मैं कहना चाहूंगी, आप तो सबसे पहले तो आपने सरप्राइज अच्छा दिया, आप तो सुबह अच्छा।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: हाँ जी, अच्छा लगा।
0: अरे हमें भी अच्छा लगा।
1: हाँ जी, और आपने जो टॉपिक रखा है, टॉपिक के बारे में कहूंगी, जो यानी कि हमने सबसे पहले तो उठते हैं इतवार को लेट, उसके बाद फिर लेट उठ कर फिर हम सोचते हैं क्या करना क्या नहीं करना, तो दिल और वैसे भी दोपहर को तो गर्मी होगी, शाम के टाइम में जाऊंगी कजन की तरफ।
0: सही।
1: और फिर बाजार जाऊंगी उसके साथ।
0: सही, ठीक है ठीक है। तो ईद की कर ली है तैयारी की? कोई नहीं अभी।
1: हाँ जी, करनी है, अभी शुरू नहीं की लेकिन करनी है।
0: अच्छा अच्छा, सही सही सही, चलिए ठीक हो गया। और कुछ कहना चाहेंगी?
1: आपको आपको एडवांस में ईद मुबारक।
0: अरे खैर मुबारक, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक।
1: खैर मुबारक। और मैं सलाम कहना चाहूंगी, और एक गाना लगा देंगे आप?
0: हाँ हाँ, मुझे दो बताएं, मैं दोनों नहीं लगाऊंगा।
1: तेरा नाम, तेरा नाम चन सजना, ये लगा देंगे आप?
0: तेरा नाम
1: चन सजना,
0: तेरा नाम चन सजना, चलिए मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है।
1: और मैं सलाम कहता हूँ रिमशा, रिमशा को, कमलनाथ को,
0: टीकू
1: को,
0: ठीक है,
1: शहजाद अली लाडला, एसर खान और शहजाद मुगल,
0: ठीक है,
1: बर्फी वाले भाई को,
0: ओके,
1: और अनिला जी,
0: ठीक हो गया,
1: रिजवाना, ओके,
0: सबको सबको सलाम, सबको सलाम,
1: सबको सलाम मेरे तरफ से, जिया के भाई को भी, और आपकी बहुत ज्यादा दुआएं, आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
0: ओके अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।

0: ओके जनाब, बात कर लेते हैं आज के दिन के मौसम के हवाले से। मौजूदा मौसम की हालत जो है इस पे बात कर लेते हैं। 38 जो है वो अभी लाहौर में रिकॉर्ड किया जा रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर, और मिनिमम जो आज रिकॉर्ड किया जाएगा वो है 28। और सुबह अच्छी बात है, सुबह कनियाँ पड़ी हैं और मैं तो सैर करके आया, सुबह की वॉक करके आया। इतना अच्छा मुझे एहसास हुआ, इतना मज़ा आया ना मुझे बाहर जाके, और बहुत अच्छी बात है। वेल, इसके अलावा अगर बात कर लीजिए, बारिश के इम्कानात आज मौजूद नहीं है। हवा में नमी का तनासुब जो फील वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है वो है 20%, और 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ़्तार से आज शाम के औकात में, यानी कि बिल्कुल अभी से चल रही हैं ये हवाएँ, चल रही हैं। तो रात को मौसम अच्छा हो जाएगा, ठंडा ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो अभी हम एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
1: क्या हाल है मुस्तफा भाई, ठीक है?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना।
1: हम ना काम जल्दी याद है आपको, जब उससे बात नहीं हो रही थी।
0: हाँ, आपका नाम हमना है
1: जी।
0: अच्छा, हमना, ठीक हो गया। हमना क्या कहना चाहेंगी, आज आज हो रही है बात?
1: अरे
0: क्या बात है, क्या बात है। मैंने आपको मोटिवेट किया था ना, मैंने कहा था किया करें, आहिस्ता आहिस्ता बोलना आएगा आपको।
1: मैंने आपने मुझे कहा है ना, तो मैं करती हूँ तो लग जाती है।
0: हाँ, लग जाती है। वो कहती है ना कि जहाँ जहाँ चाह वहाँ रहा, ऐसे ही है ना। चले कोई नहीं, आज आज लग गई है ना। क्या कहना चाहेंगी हमना, हमना क्या करती हैं आप लाइफ में?
1: मैं स्टडी करती हूँ सर।
0: अच्छा, क्या स्टडी करती हैं?
1: जी।
0: अच्छा, चलें, अच्छी बात है।
1: मैं तो आपका प्रोग्राम जिंदगी से सुनती हूँ, हम तो छुट्टी आए हैं पाकिस्तान।
0: अरे क्या बात है, क्या बात है, चलिए अच्छी बात है।
1: तो मुझे, मैंने जर्दा बांटा था सुबह की तरह, इन्होंने घोषणा बजे कहा था, मुझे भी भिजवा।
0: अच्छा अच्छा, चलिए सही हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि छुट्टी का दिन, चलिए आप छुट्टियों पे आई हैं, वैसे अगर कोई आपको फरागत मिलती है, मसरूफ नहीं होती हैं आप, तो क्या आपकी एक्टिविटीज होती हैं? अच्छा, वेली होती हैं, चले सही। और सही सही, चले ठीक हो गया।
1: कुर्बानी के लिए आए हो ना, मुझे मेन मसला ही होता है पाकिस्तान आने का, मेरी दिल्ली पे कॉल लगेगी वहाँ पे जाके।
0: हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चले ठीक हो गया हमना, अच्छा लगा आपसे बात करके। और कुछ कहना है?
1: बस मैंने सलाम कहना है इंशा आपकी और शहजाद भाई को। सलाम
0: जी, वालेकुम सलाम,
1: जरूर कॉल करूंगी आपके प्रोग्राम
0: जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले आपसे बात होगी, ठीक है,
1: याद रखना है मुझे।
0: हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, याद रखेंगे आपका। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये गाना जरा गैस करें कि बचपन की बहुत सारी यादें, वो मुलाकातें, इतना नॉस्टैल्जिक गाना है ये कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं ना छोटा सा हूँ, सोफे पे बैठा हूँ, रिमोट जो है वो मेरे हाथों से, बाजू से बड़ा रिमोट है, मैं पकड़ के इस गाने को सुन रहा हूँ, इसकी वीडियो को एंजॉय कर रहा हूँ। इफ़ यू नो द सॉन्ग देन सिंग अलोंग।

0: ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर सब तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। चंद सजना बाय अली शेर। और अच्छा, आपको बताएं कि मैं बचपन में ना अली शेर और आतिफ असलम को एक ही समझता था। इतनी इनकी शक्लें मिलती हैं, अब पता नहीं अली शेर कहाँ गए हैं, क्या मामलात हैं, क्या करते हैं, लाइफ में कहाँ गुम हो गए हैं। क्या ही बेहतरीन आवाज़ें थी, क्या ही बेहतरीन म्यूज़िक ये बनाते थे। वेल, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं और काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर।
1: जी वालेकुम सलाम, खुशामदीद, वेलकम टू द शो। सर कहते हैं आप?
0: सर मैं बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, आप बताए कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह जी, बंदा नासीर, बंदा खास के अमरजा चौधरी कहते हैं।
0: अरे जनाब क्या बात है, क्या बात है सर, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं?
1: जबरदस्त, क्योंकि आप वो आरजे हैं जिनके शो में रजा चौधरी की आस रहती है, उम्मीद रहती है।
0: अरे क्या बात,
1: आप बोलते हैं इतना है, फुल मौका देते हैं हर बंदे को। तो सबसे पहले हमला ईद की माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगु, हम उनको कहते हैं वेलकम टू द पाकिस्तान।
0: हाँ जी,
1: आप पता चला गया कि वालों वालों को दूसरे मुल्कों से सुना जाता है।
0: चले हम ना आपको देखें, अप्रिशिएट किया जा रहा है हमारे सीनियर को।
1: माशाल्लाह हमारी कोशिश, हमारी ये कोशिश होती है शमशीर साहब वालों की, जो नया जिसमें वालों वालों भी आता है ना, उन्हें अच्छे तरीके से हम वेलकम करते हैं।
0: बिल्कुल सर,
1: हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं वो।
0: बिल्कुल,
1: तो हमला के लिए बहुत सही दुआएं। तो सर मौजू पे चलते हैं, टाइम बहुत शार्ट है।
0: जी जी जी जी जी जी जी।
1: तो देखो संडे जब होता है, अगर मैं इधर लाहौर में हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि वन वन के साथ ही गुजारा जाए, वो मैं गुजारता हूँ।
0: ठीक है।
1: तो अगर मैं गाँव चला जाता हूँ गाड़ा, तो फिर क्योंकि फैमिली को ज्यादा टाइम देता हूँ मैं,
0: दो
1: तो आप तो होती है कॉल के जरिए, लेकिन फैमिली को ज्यादा टाइम देता हूँ। लाहौर में मेरे क्लब वाले हैं, उनको तो मेरा ना दिल में कुछ सौ दफा काल होती है।
0: अच्छा,
1: तो हाल वाला फिर कहते हैं कि खुशी में रहे, खुशी से रह जाए लेकिन गमी में ना रहे। मेरी कोशिश ये होती है कि दुख तकलीफ किसी तरह बनती है, मैं जरूर शामिल होता हूँ, जो मर्जी हो जाए।
0: ठीक है।
1: तो मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को आने वाली जो ईद है, ईद कुर्बान, बहुत बहुत मुबारक। कोशिश करें कुर्बानी के साथ साथ अपने अनाज को भी कुर्बान करें।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, कुर्बानी बहुत ही बेहतरीन पैगाम। चलिए,
1: तो सांस ने वफा की जिंदगी बाकी, तो तब तक के लिए रजा चौधरी को दिया जाए। सी मान लीला, अल्लाह
0: हाफिज, सलामत में अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, ये जो रजा चौधरी ने बात की है ना कि अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ और इस तरह से अपने जो ज़रूरी काम होते हैं, स्पेशली अपने रिश्तेदारों के हवाले से, उनको पहली तरजीह देते हैं, सो ये बहुत अच्छी बात है। मैं इत्तेफाक से ही आज सुबह एक वीडियो देख रहा था, हमारे हमसाया मुल्क के एक बहुत ही मशहूर मारूफ जो हैं वो क्या कहते हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा लेकिन आपको समझ आ जाएगी कि उनको मिस्टर जीनियस कहा जाता है। सो वो अपने एक प्रोग्राम में रो रहे थे, लिटरली उनकी आंखों से आंसू जारी थे और वो सिर्फ ये कह रहे थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी तख्लीकी जो सलाहियतें हैं उनका इस्तेमाल बहुत किया, लेकिन मैंने अपने इमोशंस का, अपनी प्यार मोहब्बत का, अपनी वालिहाना चाहतों का अपने प्यारों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ इजहार कभी नहीं किया। तो मुझे ये लगता है कि शायद हम मर्दों का यही अलमिया है कि हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें अपने दिल में होते हुए भी उनको नहीं कह पाते हैं, उनका इजहार नहीं कर पाते हैं, बस आंखों ही आंखों में या अपने कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं उनके ज़रिए से बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन इमोशन जो होते हैं ना, आपके जो जज्बात होते हैं, आपके जो एहसासात होते हैं, ये अल्फाज के इजहार के मोहताज होते हैं। इस बात का मुझे भी पता है लेकिन कभी कभी हम ये बातें ना भूल जाते हैं। सो चलें, थैंक यू सो मच रजा चौधरी साहब और तमाम कॉलर्स का बहुत शुक्रिया, तमाम समातों का बहुत शुक्रिया। अभी हम एक ट्रैक शामिल कर लेते हैं और मुझे अभी पता चला है कि प्रोग्राम जो है ये एक्सटेंड किया जाएगा 8 बजे तक, जो है वो आपके साथ मेरी मुलाकात, हम इसको थोड़ा सा और तूल देंगे। सही है, अभी एक ट्रैक शामिल करते हैं, सज्जाद अली, क्या कहते हैं इनका नाम क्या है, अली हैदर है सॉरी, और साथ में अली ज़फ़र हैं, इन्होंने गाना एक दोबारा से रीमेक किया है ज़ालिम नज़रों से। स्ट्रेया को मिलकर सुनते हैं, इंजॉय करते हैं और वापस आते हैं। स्ट्रेया के बाद आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ रहिएगा। मैं कहते हैं FM 101 चैनल, रेडियो पाकिस्तान लाहौर, मुझे मुस्तफ़ा कहते हैं, सो स्टे ट्यून्ड, स्टिक अराउंड एंड यस डोंट गो।

ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। 6:57 मिनट हुए चाहते हैं, बिल्कुल अच्छा। मैं आप तमाम सुनने वालों को एक खुशखबरी बता दूं कि मैं 7 बजे जा रहा हूं, आज आपसे इजाज़त लेता हूं, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। और अच्छा लगा आपसे बात करके, अचानक बात करके और कुछ दिल की बातें करके, आपके मामला जान के, आपके बारे में जान के। तो होपफुली इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले हफ्ते कब होगी, बल्कि मैं ईद के, हो सकता है कि गालिबन पहले दिन आपके साथ ईद मनाने के लिए आपका साथ दूंगा। तो सुबह 9 से 11 बजे तक के लिए मेरी आपसे मुलाकात रहेगी। ईद के पहले दिन में हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे और जनाब ईद को हम मजीद अच्छा खुशगवार बनाएंगे। तो कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे जो कि इस तरह के जो खुशी के आयाम होते हैं, ऐसे मोमेंट्स होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं गुमसुम रहते हैं, थोड़ा एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। आई थिंक ये इंट्रोवर्ट्स का मसला होता है। सो हम इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे और हम सब दीवाने मिल बैठेंगे, अच्छा लगेगा। और के जनाब इसी बात के साथ, इसी पैगाम के साथ के तमाम तर आलम इंसानियत का ख्याल रखिएगा बिला तफरीक किसी रंग नस्ल और मजहब के। मुझे दीजिए आज के लिए इजाज़त एंड यस, अल्लाह ने के बानो मेहरबान।

0: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा आपकी।
1: तेरा होटल लाहौर आइए और तेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
2: सुनते रहिए FM 101.1।
3: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
4: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
3: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
5: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
6: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
5: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
7: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
1: सोचिए जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशिफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
2: सुनते रहिए FM 101.1।

0: सुनते रहिए FM 101।
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून, अल्शफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
2: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
3: फिर वही बात, पहले ही 2 बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
2: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
4: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
5: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
6: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
7: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
1: 13 जून, PC होटल लाहौर आइए और दें अल्शफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
2: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
3: फिर वही बात, पहले ही 2 बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
2: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
4: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
5: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
6: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
7: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: सुनते रहिए FM 101 101।

0: इक चार दो छे सिफर अठ। ते साडा ईमेल एड्रेस है suleiman.dawakhana@lhr.gmail.com।
1: सोने भैन भ्राओ, अपनी सेहत का ख्याल रखना, रब तुहानू हमेशा ही सेहतमंद रखे, आमीन। इस दुआ दे नाल ही अपनी भैन साइमा नू इजाजत दियो, अगले प्रोग्राम विच फिर मुलाकात होगी, उस वेले तिकर रब राखा।
2: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई हस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
3: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
4: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
3: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
5: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
6: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
5: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
7: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
2: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही शख्स था जहान में क्या,

0: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई हस्पताल का साथ। किसी की ज़िंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मज़ीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विज़िट करें www.alshifaeye.org।
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।

0: पापा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
4: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: था। मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।

यूं तो उनसे और मिलना होता हमारा, और क्या, और क्या होता क्या हुआ। ये बातें बहुत अच्छी लगी।

मैं समंदर के किनारे पर था और हवा बहुत ठंडी थी। वो हवा थी या मेरी मोहब्बत का कोई गुजरता पहर था जो मुझे नापसंद था। इस बात का जवाब तो मुझे मिला नहीं, क्योंकि कुछ दिनों की ये मुलाकातें बहुत अच्छी लगी। कोई गुजरता पहर था जो मुझे नापसंद था। इस बात का जवाब तो मुझे मिला नहीं, क्योंकि

कुछ दिल में रह गया कि अब दिल की सुनू तो सिर्फ मेरी आवाजें गूंजती हैं। वो जा रही थी और हाले दिल आंखों से बह रहा था। हाले दिल का एक लम्हा मेरी आंखों से होता हुआ मेरे जूते पर जा गिरा। वो जूता आज भी मैं पहनने की हिम्मत नहीं करता। कुछ दिनों की ये मुलाकातें बहुत अच्छी लगी। उससे जो कुछ हो सकी बातें बहुत अच्छी लगी।

0: पापा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज़ पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
4: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: 13 जून PC होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मज़ीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
0: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: आपा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।

0: आपा,
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
0: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।

Ring of

वो इसमें जिंदगी बाजू का इतनी तेज हो जाती है, इतनी तेज हो जाती है कि हमें एहसास नहीं होता कि हम क्या थे और क्या से क्या हो गए देखते देखते। और जो कभी इंसान उन माहौसाल को गिनना शुरू करे, कभी उन दरीचों को खोलना शुरू करे, तो लगता है कि अभी जैसे कल की बात है ये। कभी हम बच्चे थे और जब अपने हाथों में अपने बच्चों को देखते हैं, उन्हें बड़ा होता देखते हैं, तो वक्त याद आता है कि हम भी ऐसे ही थे। या कभी ये भी होता है कि क्या हम भी ऐसे ही थे। और ज़िंदगी सिर्फ आगे आगे और आगे की जानिब चलती है। ज़िंदगी का कोई रिवर्स गियर जो है वो हमें नज़र नहीं आता, और ना ही अपने लिए, ना ही कभी किसी और के लिए हमने ज़िंदगी का रिवर्स गियर लगते देखा है। सो जब ज़िंदगी ने चलना ही आगे है, तो फिर उसके साथ चलने में ही आफियत है। हाँ, लेकिन हम उसके लिए रास्ता क्या चुनते हैं, ये हमें ज़रूर सोचना चाहिए।

Mighty good afternoon, smartest Monday. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, FM 101 and bonjour. आपके दिल पसंद रेडियो स्टेशन FM 101 से आपका अपना मसूद अहमद आपके साथ. वेल जनाब, आज हो गई है मई की 23 तारीख, सन है 2026, वक्त हुआ चाहता है जी 10:11. आज के प्रोग्राम जिसका नाम है शब खेजियां, मेरा आपका साथ रहेगा ठीक और बिल्कुल ठीक बदलती तारीख तक. अगर आप हमारे पास आना चाहें तो आप हमारे पास आ सकते हैं. इस तरह कि आप हमें डायल करेंगे, हमें हमारा यूनिवर्सल एक्सेस नंबर, द नंबर इन माय सेल इज 1711001 7 1, एंड इन योर सेल द नंबर इज 1111011. दिस इज द मैजिकल मिस्ट्रिकल एंड द म्यूजिकल नंबर ऑफ लाहौर, और यू कैन से द ट्रिपल एम नंबर. इसके अलावा जी फेसबुक पर हमारा पेज है FM 101 लाहौर, उस पर भी आप हमारी पोस्ट पर कमेंट करके हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं. और इसके अलावा एक तरीक़ेकार और है, वो तरीक़ेकार ये है कि आपने अपने राइट मैसेज के ऑप्शन में जाना है, वहाँ लिखना है आपने 101, उसके बाद एक खाली जगह देनी है, उसके बाद आपने अपना खूबसूरत सा नाम लिखना है, और उसके बाद आपने एक और खाली जगह देकर अपना खूबसूरत सा पैगाम लिखना है और उसको सेंड कर देना है 4471 पर, और वो मैसेज जो है वो आपका हमारे पास यहाँ पहुँच जाएगा और हम उसे आपके लिए यहाँ से ऑन एयर कर देंगे. इस हवाले से बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स भी मिलती रहती हैं कि आप 4471 के मैसेज जो हैं वो उन्हें जल्दी ऑन एयर नहीं करते. तो भाई जी बस ऐसा होता है कि हम बाज़ुकात कुछ ऐसी बातों में उलझ जाते हैं कि जिसकी वजह से कुछ डिले हो जाता है. तो भूलते हम नहीं हैं आम हालात में, हाँ उसमें डिले ज़रूर हो जाता है, और उसके लिए हम एडवांस जो है वो माजर चाहते हैं कि जी अगर कुछ डिले हो गया हमारी जानिब से तो फिर उसका बुरा जो है वो मत मानिएगा. वेल जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे. जहाँ तक मेरी बात है, अल्लाह ताला का शुक्र है और आप लोगों की दुआएं हैं कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. लास्ट वीक भी आपसे मुलाकात हुई थी, लेकिन लास्ट वीक जो है वो कह लें कि मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं था. ड्राइविंग सीट पे हमारे साथ उजैर शाह थे, और आज ड्राइविंग सीट जो है वो मेरे पास है. तो मैंने कहा कि चलें कभी कभी ट्राई कर लेनी चाहिए खुद भी ड्राइविंग की. ज़्यादा देर इंसान दूसरों की ड्राइविंग पे रहे तो अपनी ड्राइविंग जो है ना वो कुछ थोड़ी सी भूल जाता है. जो अपनी स्किल होती है ना वो अपनी होती है, उसको रिवाइव करते रहना चाहिए, और उसका जो है ना जो तड़का है वो कभी कभी लगाते रहना चाहिए. चाहे वो किसी भी चीज़ की स्किल हो, कोई भी अच्छी बात हो, कोई भी अच्छी बात कहने का तरीका हो, कोई भी अच्छी बात कहने का अंदाज हो, कुछ भी हो, कुछ पकाने का हो, कुछ खाने का हो. तो उसके जो मामला थे वो चलते रहने चाहिए. वेल जी, आज के जो प्रोग्राम की क्यू शीट है ना, मुझे बड़ी पसंद है आज. क्या मैंने अपनी तरफ से कोशिश की ठंडी ठार क्यू शीट बनाऊं कि इतनी गर्मी में भी ना मज़ा आ जाए, गाने सुनने का एटलीस्ट मज़ा आए, प्रोग्राम का आए ना आए.

वेल जी 90s का जो टाइम था ना, क्या कमाल उसमें सॉन्ग्स आए, क्या कमाल उसमें सिंगर्स आए। और यासिर अख्तर ने अगर से बहुत कम गाने गाए हैं, लेकिन कमाल।

ऑन एयर करेंगे। ये तो सारी थी अच्छी अच्छी बातें जो हमने अपने बारे में बताई, लेकिन एक बहुत गलत बात है जो मुझे पता है कि मेरे बारे में है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद किसी हद तक वो बात ठीक भी है, तो इसलिए मैं उस पर कारबंद रहता हूँ और सिर्फ माजरत कर लेता हूँ कि हमारी इस बात का बुरा मत मनाइएगा। वो बात यह है जनाब कि 11 बजे से पहले हम आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल नहीं करते, ना मैं ऑफर कॉल्स लेता हूँ ना मैं ऑनर कॉल्स लेता हूँ। हाँ, सिर्फ ऑफर मैसेजेस आप कर सकते हैं, 4471 के मैसेज आप कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर जो हमारी पोस्ट है उस पर कमेंट करके हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन नो लाइव चीट चैट। ओके वेल जी, इस वक्त हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे ये वाला गाना और एक दफ़ा फिर से आपके साथ होंगे, हमारे साथ रहिएगा। और जनाब वर्ल्ड कप जो है फुटबॉल का, वो कह लें कि बिल्कुल तैयार है और उसकी आमद आमद है, उस हवाले से बहुत सारे ट्रैक्स जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं, लेकिन ये वाला जो गाना है ना, शकीरा। Canada. One,

Yeah. Stick around to 101. I'll be right back.

0: Lolo sila ang dami ng sila ng mga kapatid ko. Ano kung masasabi ko? Ang tulong ni Bat, mela ay dobit siya tumari. Halad di ko pa.
1: Apo, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
0: ये सब गलत फहमियाँ हैं। हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
2: खानदानी मंसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
0: सोच को आजाद करो, खानदानी मंसूबा बंदी को आम करो।
3: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर महकमा सेहत आबादी हुकूमत पंजाब।
0: आपा, मैंने सुना है खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। फिर वही बात, मेरे ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
0: ये सब गलत फहमियाँ हैं। हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
2: खानदानी मंसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
0: सोच को आजाद करो, खानदानी मंसूबा बंदी को आम करो।
3: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर महकमा सेहत आबादी हुकूमत पंजाब।
4: Check this out. 101, the best variety.
5: Continuous hit music. Now.
6: Today's hit music.
5: Q101.

जब 10:00 हो चुके हैं 33 मिनट आज के प्रोग्राम जिसका नाम है शब खेजिया मेरा आपका साथ है बिल्कुल ठीक 12 बजे तक। आपके जना मैसेज जो हैं फेसबुक पर मुझे मौसूल हो रहे हैं उन्हें मैं ऑनर करता चलूँ। किंग फजल खान साहब ने मैसेज किया है वेलकम, नज़ीर सोबत नज़ीर साहब नज़ीर खोसो साहब ने मैसेज किया सोबतपुर बलोचिस्तान से बहुत शुक्रिया। बिनते सादिक ने मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम आरजे मसूद अहमद अल्लाह ब्लेस यू आमीन बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला आपको भी सलामती अता फरमाएँ। और मरीना बिलाल ने हमें मैसेज किया जी कह रही हैं आरजे मसूद वेलकम मरीना फ्रॉम लाहौर बहुत शुक्रिया मरीना आपका प्रोग्राम में मैसेज करने का शामिल होने का। और किंग फजल खान साहब ने मैसेज किया दोबारा कह रहे हैं कि जी फ्रॉम ईगल फ्रेंड्स क्वेटा पाकिस्तान अच्छा जी बहुत शुक्रिया। रियाज भट्टी साहब ने मैसेज किया फ्रॉम शाहदरा लाहौर पीस बी ओके थैंक यू सो वेरी मच। मोहम्मद रजा चौधरी ने मैसेज किया कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर जी वालेकुम अस्सलाम जनाब रजा चौधरी साहब क्या हाल चाल हैं आपके ठीक ठाक हैं इंशाल्लाह आपसे जनाब लाइव सेशन में बात होगी। और किंग फजल साहब ने दोबारा मैसेज किया वो हार्ट साइन बनाया बहुत शुक्रिया। और रजा चौधरी साहब ने बहुत सारे लोगों को मैसेज कहा है शमसी रेडियो लिसनर क्लब लाहौर और शमसी साहब और बहुत सारे नाम हैं जिनमें बहुत सारे पुराने अच्छे नाम भी हैं। अब उसमें जनाब रजा चौधरी साहब ने ख़ुद अपने आप को भी मैसेज कहा है इस्लाम कहा है वालेकुम अस्सलाम। एहसन खान सोहवीर एम एजाज अली फायज़ा नसीर सजाद अली लाडला वारिस गुजर साजिद मुग़ल लतीफ़ मुग़ल सलीम साहब दर्जी इछरे वाले मोहम्मद आरिक को बहुत सलाम और तमाम और न्याज ड्राइवर को अमानत गार्ड को भी जनाब सलाम कहा उन्होंने और अब्दुल हमीद बर्फ़ी वाले को भी साजिदा जी को भी सबको सलाम कहा। वेल जी आपका सलाम तमाम लोगों तक पहुंच गया बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा और जी बहुत सारे आपने हमें फूल बना के भेजे हैं और बहुत शुक्रिया इन फूलों का। और गर्मी में जो है वो वैसे भी बढ़िया अच्छा लगता है कि हमें जो है वो ताज़े ताज़े फूल जो है वो देखने को मिले और उसके साथ साथ उनकी जो ताज़गी है वो अगर साथ साथ मिले तो क्या ही बात हो जाती है जनाब दिल जो है वो बाग बाग हो जाता है। और उसके अलावा जी और हमें बहुत सारे मैसेजेस हैं जो कि फॉरवर्ड मैसेजेस कह लें उन्हें या जो एक टिपिकल स्टाइल के मैसेजेस होते हैं वो मैसेज हैं। मलिक वसीम अमान साहब ने मैसेज किया कह रहे हैं मलिक वसीम अमान मुंडा सियाल कोटी की तरफ से आपको और आपकी टीम को और सब लोगों को सलाम वालेकुम अस्सलाम। रियाज भट्टी साहब ने रमज़ान गुजर को सलाम कहा जी सलाम पहुँच गया। और रजा चौधरी साहब कह रहे हैं जी वाह कमाल शो बहुत शुक्रिया। और इसके साथ जी रियाज भट्टी साहब ने दोबारा मैसेज किया फैंटास्टिक नाइट शो थैंक यू। और जी बहुत सारे नाम रियाज भट्टी साहब ने तो बहुत सारे मैसेज किए हैं वो सभी तो हम ऑन एयर नहीं कर पाएंगे। और जी थैंक यू सो वेरी मच कि आपने इतनी मोहब्बत के साथ हमें मैसेज किए हमारी पोस्ट पर अच्छी बात के साथ भी आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक है जनाब टॉपिक को सीरियस नहीं है टॉपिक को हमने लाइट वे में लेकर चलना है लेकिन टॉपिक ये है कि आपके ख्याल में ज़िंदगी हासिल करने का नाम है या खोने का नाम है। हमारी आज की जो बात है थोड़ी दिल वाली ज़रूर है लेकिन टेंशन वाली नहीं है और ना ही इसके आपने टेंशन लेनी है और ना ही किसी और को टेंशन देनी है सिर्फ लाइट वे में आपने हमारे साथ डिस्कस करना है इस चीज़ पर हम डिस्कशन करेंगे कि ज़िंदगी हासिल करने का नाम है या खोने का नाम है। बस ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे कि हमने क्या हासिल किया क्या खोया थोड़ा थोड़ा जाएंगे लेकिन इतनी गहराई में नहीं जाएंगे कि हम डूब जाएँ कहीं पर। वेल जी प्रोग्राम कुछ प्रोग्राम में शामिल करेंगे सिर्फ ये वाला गाना और उसके बाद एक दफ़ा फिर से आपके साथ होंगे सो स्टे अराउंड 101 आई विल बी राइट बैक। अगर आप इस रोड पर ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली क्योंकि आपकी ज़िंदगी हमारे लिए और वो तमाम लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं उन सब के लिए आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है।

वेजरस वेलकम बैक। अब आइए जनाब 4471 के मैसेजेस की। 4471 पे हमें जनाब दो मैसेज मौसूल हुए हैं अभी तक। एक मैसेज हमें मौसूल हुआ है जनाब, किन की जानिब से जनाब ये मैसेज मौसूल हुआ है, मैंने अभी इनका नाम पढ़ा था और इनका नाम मुझसे मिस हो गया। यस, अब्दुल नूर हाशमी साहब ने हमें रिवाज गार्डन से मैसेज किया, कह रहे हैं मसूद खान आदाब। ओ सर, बस आप मसूद अहमद लिख दिया करें, ये जो खान वाले मामले हैं ना, ये बस हमें चंद लोगों के लिए रख छोड़े हैं बस। ठीक है जी, और बहुत शुक्रिया अब्दुल नूर हाशमी साहब, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। और इसके अलावा जी हमें मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम मसूद, बस ठीक है, मैंने ये पढ़ना ही नहीं है, कैसे हैं आप, वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया। और कह रहे हैं कभी बहुत ही बुरी तरह इंसान का दिल टूटता है और वो कुछ नहीं कह सकता। जोनी फ्रॉम लाहौर। बिल्कुल जनाब, दिल का जो मामला है ना, वो कल भी हमारी एक और कोआरजे हैं, उनके साथ भी ऐसी बस हल्की हल्की बात हुई कुछ थोड़ी सी दिल के मामले से। उन्होंने कहा कि जी दिल के मामलात बड़े अजीब होते हैं, तो मैंने कहा जी दिल के लिए, जहाँ तक बात दिल की आती है ना, तो दिल के लिए सभी के मामलात बहुत अजीब हो जाते हैं, तो बस इसलिए हम ज़्यादा उसको छेड़ते नहीं हैं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा दिल की गहराई में नहीं जाना चाहते। ठीक है जी, बस जी दिल का क्या है जोनी, दिल तो रोज़ टूटता है, दिन में कई बार टूटता है, जुड़ता है, और ये जो सिलसिला ही चलता रहता है। अब इंसान अगर सिर्फ दिल को लेके बैठा रहे तो बस फिर हो गए सारे काम। और उसके अलावा शकील अहमद साहब ने मेरे लाहौर से मैसेज किया, कह रहे हैं डियर आरजे मसूद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं ऑनेस्टली ब्रो क्यू शीट इज़ लवली, थैंक यू सो वेरी मच। और कह रहे हैं आई लव दैट सॉन्ग ऑफ 90s एरा। यस बिजी 90s एरा का एक और सॉन्ग भी मेरे पास अभी क्यू शीट में है, वो भी मैं इंशाल्लाह प्ले करूँगा प्रोग्राम में साथ साथ। और इसके साथ कुछ आप हमारे को ड्राइवर के हवाले से कुछ बात कर रहे हैं कि ओके, अब हमारे को ड्राइवर के हवाले से बात करें। जो को ड्राइवर जी कुछ ऑफ पे हैं, कुछ उन्हें ज़रूरी काम थे सिलसिले, इसलिए वो कुछ छुट्टियों पर हैं, और देखें लेट्स सी कि अब उनकी वापसी कब होती है। और इसके अलावा आपने जनाब कह रहे हैं जी लास्ट वीक सॉन्ग की रिक्वेस्ट की थी, आप ही प्ले कर दें रौनक आशिकी। चलें जनाब, मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ। फिलहाल तो मैंने एक और ट्रैक जो अभी क्यू किया हुआ है, और इसको प्ले करके फिर मैं कोशिश करता हूँ कि आपका जो ट्रैक है उसको मैं ऑन एयर कर दूँ। और टॉपिक के हवाले से बताता चलूँ एक दफ़ा फिर से कि जनाब हमारी आज का जो टॉपिक होगा 11 बजे के बाद डिस्कशन का, वो ये है कि आपका क्या ख्याल है कि ज़िंदगी हासिल करने का नाम है या खोने का नाम है, या फिर क्या है आपके नज़दीक। आप 111111 पर डिस्कस कर सकते हैं, 4471 पर मैसेज करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, फेसबुक पर हमारी पोस्ट है उस पर कमेंट कर सकते हैं कि क्या ज़िंदगी सिर्फ चीज़ें पाने की दौड़ है, या वो चीज़ें जो हम खो देते हैं वही हमें असल में कुछ सिखाती हैं। क्या बात है आपके दिल में, क्या समझते हैं आप इस बारे में, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। प्रोग्राम में इस वक्त हम रखेंगे, सॉरी प्ले करेंगे हम ये वाला गाना, और इसके बाद एक दफ़ा फिर से आपके साथ होंगे। सो स्टे अराउंड 101, मुझे कहते हैं मसूद अहमद। और जनाब ईद की भी आमद आमद है, उस हवाले से भी तैयारियां जो हैं वो घर घर में गली मोहल्लों में चल रही हैं। अगर सब

0: वेलकम वेलकम बैक FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टूडियो से आवाज़ सुन रहे हैं मसूद अहमद की और मैं आपका साथ है जनाब ठीक हो बिल्कुल ठीक 12 बजे तक इन द शो दैट इज़ कॉल्ड शब खेजियाँ और उम्मीद है कि हम शब खेजियों में इस शब में जो है वो खेजियाँ बिखेरने में कामयाब जो है वो हो रहे हैं। जैसे मैं अपने शो के बारे में कहता हूँ कि एक तो आपने हमारे शो की टेंशन नहीं लेनी और दूसरी हमारी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करनी, ठीक है। अगर ये दो काम आप नहीं करेंगे तो यकीन मानें कि शो हम और आप बड़े स्मूथली चलते रहेंगे। वैसे जी बढ़ते हैं प्रोग्राम में वेरी फर्स्ट कॉलर की जानिब और देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है आपके?
0: अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। रिमशा आप बताएं, आप ठीक हैं?
1: बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक।
0: अच्छा अब तो मुझे भी आपसे अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है, पूछना पड़ेगा कि आपके पास क्या फार्मूला है कॉल मिलाने का?
1: मैंने कहा रजा भाई सुन रहे हैं, मैं पहले मैं ही मिला लूं।
0: हाँ तो वो हर दफा कैसे, मतलब तुक्का तो होता है जो कभी कभी लग जाता है, लेकिन जो हर दफा लग जाए वो फिर तुक्का नहीं रहता, कोई ना कोई फार्मूला जरूर होता है उसके पीछे।
1: एक कॉलर आए थे, उन्होंने बोला था मिस मिला पढ़ के ना कॉल मिला तो मिल जाती है, अब मैं मिला पढ़ती हूँ तो मिल जाती है।
0: हाँ लगता है बहुत दिल से बिस्मिल्लाह पढ़ती हैं आप, है ना, कि उसमें सच्ची मुझे बरकत बन जाती है। तो रिमशा क्या कहेंगे प्रोग्राम के हवाले से, टॉपिक के हवाले से?
1: मैं तो ये कहूंगी जिंदगी खोने का नाम ही है।
0: जिंदगी खोने का नाम ही है, ओके।
1: जब इंसान की जिंदगी से कोई चीजें जाती हैं तो ही इंसान सीखता है, वैसे तो नहीं। अगर हर इंसान को चीज हासिल होती रहती है ना, वो नाशुकरा बन जाता है, उसे वो चीज की फिर कदर नहीं रहती, वो फिर सबको छोटा समझता है, कहता है बस मेरे पास सब कुछ है तुम्हारे पास क्या है। जब इंसान की लाइफ से कोई चीज जाती है तो ही उसे पता चलता है कि हाँ कुछ चीज खोने का दर्द क्या होता है और उसकी फीलिंग्स क्या होती है, और अगर हमारे पास ये चीज नहीं होगी तो दूसरों के पास होगी तो उस वक्त रवैया कैसा होगा, उसको फील करने का इंसान को पता चल जाता है और बर्दाश्त करना आ जाता है।
0: अच्छा बिल्कुल आप सही कह रही हैं। दूसरा पॉइंट भी तो है, जब हमने जिंदगी में किसी चीज के लिए बहुत मेहनत की हो, बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत से हासिल किया हो कुछ, तो उसको भी तो कुछ लोग पाने को कहते ना कि बस यही मेरी जिंदगी है।
1: हाँ हाँ, अगर हर चीज कोई चीज भी होती है, कोई इंसान भी होता है जिसको पाने के लिए इंसान तवक्का करता है, कोशिशें करता है,
0: कोई मकसद हो सकता है,
1: और अगर वो ना मिले कोशिश करता है, जब इंसान अगर वो चीज हासिल हो जाती है बात सफल हो कहते हैं कि कदर कम हो जाती है, लेकिन अगर शिद्दत रहे उस चीज के अंदर तो कभी भी शिद्दत कम नहीं होती। आप भी कहते हैं ना कि अगर कोई चीज हासिल हो जाए तो उसमें शिद्दत कम हो जाती है, ऐसा होता है?
0: हाँ बिल्कुल होता है।
1: अगर ऐसा ना हो तो
0: ये मुमकिन नहीं है, बहुत ही रेयर हालात होते हैं कि जिसमें कोई बहुत ही कोई कह लें कि जो कहते हैं ना एक्सेप्शनल केसेस जो होते हैं उसमें ही ऐसा होता है, अदरवाइज़ तो जो ह्यूमनली नेचर है ना एक इंसान की जो फितरत है, जो जिस फितरत पे वो बना है उस फितरत में तो यही है कि जब उसको कोई चीज़ हासिल हो जाती है तो वो फिर थोड़ा सा उसकी जानिब से जो है वो बेफिक्र सा हो जाता है कि अच्छा चलो अब ये तो हासिल हो गया, कुछ इसे आगे की सोचें। अब
1: नहीं ऐसा भी होता है ना बात, अगर वो चीज़ उसे हासिल हो जाए, अगर वो फिर से दूर हो जाए, अगर उसके पास वो दोबारा आए ना फिर वो कदर करना सीख जाता है।
0: फिर बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, और कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी होती हैं ज़िंदगी में रिमशा कि जो जिनको खोने का कोई चांस नहीं होता हमारे पास, वो चली जाए तो फिर वो चली ही जाती है।
1: बिल्कुल, अब मेरी लाइफ में मेरे बाबा गए हैं, मेरी लाइफ में काफी डिफरेंट आए हैं, काफी कुछ चेंज हुआ है मेरे अंदर से, काफी चीजें मुझसे दूर हुई हैं, तो इंसान मुझे पता चल गया ना सबर कैसे करना है। अब मैं दूसरा बकायदा ना जब भी भाई मैं किसी के मतलब पोतकी पर जाती थी ना कि किसी को भी देखती थी, मेरी आंखों में जरा बराबर भी पानी नहीं आता था। जब मेरे बाबा की डेथ हुई अब हर मौके पर हर इवेंट पर मुझे रोना आ जाता है, दिल इतना मतलब वो अब इतना नरम हो चुका है कि यानी इतना हल्का हो गया है कि हर वक्त ही रोना आ जाता है, हर किसी की फोट की बेबी चली जाऊँ तो उसमें ही रोना आ जाता है।
0: यही होता है ना कि हमें जो है वो दूसरे का दर्द का एहसास होना शुरू हो जाता है ना कि जो है ये कितने कर्ब की बात है कि जब हम अपने किसी को खोते हैं और उसके बाद जब हम किसी दूसरे को देखते हैं कि वो भी इस कैफियत में है, तो फिर हमें उसके हाल का अंदाज़ा होता है कि ये जिस कर्ब से मैं गुजरा था तो ये भी इसी से गुजर रहा होगा, तो फिर इसलिए हमारा दिल जो है शायद वो नर्म हो जाता है। और ज़िंदगी जो है वो बाजू का अगर कुछ चीज़ें हमसे लेती भी है ना तो हमें वो वैसा बनाने के लिए लेती है जैसा वो चाहती है कि हम बने।
1: भाई के सीखने का हर इंसान जिंदगी में सीखता है, आगे आगे कुछ चीज़ें उसकी जायज से जाती भी हैं, सीखता रहता है।
0: बिल्कुल ऐसी, और ज़िंदगी बस सीखते रहने का इनाम है, इसके अलावा कोई और ख़ास चीज़ मुझे नहीं लगता इसमें है।
1: जी आप बोलें। अब ये अब इंसान ये तो नहीं कह सकता ना कि जिंदगी हमेशा मेरे पास रहेगी, एक दिन ये जिंदगी भी हमने जाना ही है ना दुनिया से,
0: अमानत है, अमानत है। एनीवेज रिमशा, बिल्कुल ऐसे हमने पहले कहा था कि टेंशन वाला हमने नहीं बनाना है इसको, बिल्कुल भी ठीक है, बिल्कुल लाइट लाइट सा रखना है।
1: बिल्कुल भी नहीं, तो मैं बिल्कुल फनी मूड में हूं। हाँ। और अल्लाह करे मेरे पास रजब है कि काल मिल जाए, उन्होंने कहना मेरी काल ही नहीं मिलती।
0: आमीन आमीन। और हमारा जो उनका जो अलामा है ना, अलामा दूर हो जाए उनका, ठीक है,
1: अलामा दूर हो जाए कि रिमशा की काल मिल जाती है। और सभी सुनने वाली समातों को सलाम। और आप बकरा ले आए हैं?
0: मैं अभी तो नहीं लाया, लेकिन देखें इंशाल्लाह कल या परसों जैसे भी प्रोग्राम बना, तो क्योंकि डिमांड अब बच्चों की बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है।
1: तो और आपने मेरे मेरे कर्जा नहीं दिया, देख लें।
0: बस वो आप हिसाब करती जाएं, वो इंशाल्लाह मैं एक ही
1: दफ़ा वापस नहीं दिए
0: जी।
1: आपने कहा था कि मैं पैसे आपके वापस करूंगा, आपने दिए नहीं।
0: अभी अब लिखती जाए, अभी देखें अगर मैंने पैसे वापस कर दिए तो फिर आप मुझे भूल जाएंगी। मैं आपके पैसे नहीं दूंगा ना, तो आप मुझे याद रखेंगे।
1: अब तो बकरा ईद आ गई है।
0: चले अब जो छोटी ईद आएगी ना, उस पे इंशाल्लाह हिसाब करेंगे, ठीक है।
1: आपने कहना कि अब अगले मान फिर
0: नहीं, वो तो जब आएगी फिर देखेंगे ना।
1: चलिए ठीक है। और
0: आपको बहुत शुक्रिया रिमशा, जीती रहे, खुश रहें, थैंक यू। वेल जी, ये थी हमारे साथ रिमशा और अपनी हमेशा की तरह खूबसूरत सी बात के साथ। और नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है?
2: माँ बात कर रही
0: है। आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है कि मुझे आपका नाम समझ नहीं आया। बिस्मा बात कर रही हैं आप? बिस्मा, आप लाउड स्पीकर ऑन करके बात कर रही हैं क्या?
2: नहीं।
0: तो फिर आपकी आवाज़ इतनी इको क्यों हो रही है, जितनी रिमशा की जिस टाइम क्लियर आ रही थी आपकी आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आ रही।
2: एक मिनट में देखती हूँ
0: जी, देखें जरा वो। अच्छा तो फिर हो सकता है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आवाज़ आपकी गुंज रही हो। आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है?
2: मुझे आपकी ठीक आ रही है।
0: ये अब ठीक हुई है आपकी आवाज़ भी, कुछ कुछ काफ़ी बेहतर हो गई है जी। बिस्मा कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैंने
2: कॉल किया आपके शो पे।
0: अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। वेलकम वेलकम टू माई शो, वेलकम टू
2: एवरीवन। और ये बहुत स्वीट कॉलर है और बहुत अच्छा बोलती है, आवाज़ भी प्यारी है इसकी। तो इसकी बातें मैं सुन रही थी, ये कह रही थी ना कि खोने का नाम है, ये भी ठीक कह रही है, पर मुझे लगता है कि जिंदगी हासिल करने का नाम है। आप अपना बेस्ट करो, कोई भी काम करना है आप अच्छे तरीके से करें, अच्छे मतलब रस्ते पे जाके करें, ठीक है। किसी का हक ना होता है ना, किसी का हक ना रखें, किसी के साथ बुरा ना करें, और आप अच्छा करें अपनी तरफ से, और आप रिलैक्स रहें और इंजॉय करें अपनी जिंदगी को।
0: यानी आप वो कहना चाह रही हैं कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट।
2: हाँ जी, कई लोग किसी को रोंद कर या किसी को कुछ कर या किसी का हक मार कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो इससे अच्छा तो ये है कि आप पीछे ही रह जाओ। और ऐसी कामयाबी भी कोई कामयाबी नहीं होती, इस तरह के लोग कामयाब होकर भी नाकाम ही होते हैं, और कई लोग नाकाम होकर भी ना कामयाब ही होते हैं, उनकी टॉप की लिस्ट पे उनका नाम होता है।
0: क्या बात
2: है कि आप बस जो काम करना है अच्छे तरीके से करें। आपका टॉपिक मैंने सुना और मैंने अपनी एक अदद, मेरी फ्रेंड है सिंध से है, उसको मैंने मैसेज कर दिया फौरन। मैंने कहा तुम मुझे बताओ इस टॉपिक पे तुम क्या बात करोगी, तुम्हारी राय क्या है। तो ने मुझे बताया, उसका नाम दरक्षान है, तो कहती है वो बहुत पॉजिटिव है, मैं फिर भी थोड़ी नेगेटिव हो जाती हूँ।
0: अच्छा।
2: पर वो बहुत पॉजिटिव सोचती है।
0: सही, माशाल्लाह। चलें,
2: आप अच्छा सोचो, अच्छा करो अपनी तरफ से, मेहनत करो और हासिल करो, एंजॉय करो अपने हर पल को, हर मोमेंट को।
0: बिल्कुल, और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया बिस्मा, कि अपनी तरफ से बेस्ट करना चाहिए और उसके बाद जो है वो मामलात को छोड़ देना चाहिए। वैसे तो ज़िंदगी में हम हर वक्त कुछ ना कुछ खो ही रहे होते हैं, जो वक्त गुजर रहा होता है उसमें हम वक्त को खो रहे होते हैं, उसमें हम बाज़ूकात अपने दोस्तों को खो रहे होते हैं, बाज़ूकात हम सादगी को खो रहे होते हैं, और बाज़ूकात खुद पर अपने यकीन को भी खो रहे होते हैं।
2: ये जो मुश्किलात आती है ना हमारी जिंदगी में, ये हमें मजबूत बनाती है।
0: बिल्कुल ऐसे ही,
2: मतलब हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। एक बार हम एक उस चीज से गुजरते हैं, दोबारा के लिए हमें अंदर, हमारे अंदर वो होते हैं ना, जैसे अक्सर कोई बीमारी आती है तो वो हमारे अंदर वो उसके सेल्स उस तरह के हो जाते हैं जो उससे फाइट करते हैं। तो इसी तरह कोई मुश्किल आती है तो हम फिर स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट
0: बिल्कुल, जिंदगी हमें वैसा बनाना चाहती है कि जैसा वो चाहती है कि हम बने, ऐसे ही है। चले
2: हाँ जी, ऐसे ही है।
0: चले बहुत शुक्रिया रिमशा, सॉरी बिस्मा, आपका। क्या आप हमारे साथ प्रोग्राम में? जी जी मैं माजरत कि आपका नाम थोड़ा सा लेट हो गया बिस्मा, और बहुत अच्छा लगा इंशाल्लाह, उम्मीद करेंगे आप नेक्स्ट भी हमारा प्रोग्राम सुनेंगे और प्रोग्राम में शामिल रहेंगे।
2: बिल्कुल ठीक आई है ना
0: जी,
2: जो मैंने बातें की आपको ठीक समझ में आया, आवाज़ ठीक थी मेरी?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन हो गई थी, बस शुरू में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ थी लेकिन बाद में बहुत अच्छी हो गई थी।
2: थैंक यू।
0: ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया बिस्मा, अपना ख्याल रखिएगा, जीती रहें, खुश रहें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वह जी ये थी बिस्मा हमारे साथ अपनी खूबसूरत सी बात के साथ, और कॉल चलें एक कॉल और ले लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रैक जो है वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? अच्छा मैं भी ठीक हूँ, लेकिन आपकी आवाज़ थोड़ी सी ऊँचा बोलें थोड़ा सा।
3: अब आ रही है?
0: हाँ अब ठीक है। कौन बात कर रही हैं आप?
3: हमना फ्रॉम जर्मनी।
0: हमना फ्रॉम
3: जर्मनी?
0: जर्मनी
3: जी जी, मैं पाकिस्तान आया हूँ। आप तो?
0: अच्छा।
3: हेलो मसूद भाई, आवाज आ रही?
0: जी जी बिल्कुल आ रही है, और बस मैं जो है कुछ परेशान हो गया था कि
3: आपकी तरफ से ना बहुत सिचुएशन आ रही है, आवाज आपकी मुझे ठीक नहीं पहुँच रही।
0: ठीक, अच्छा अब ठीक है?
3: अब थोड़ी सी ठीक है, मैंने आपको पहली बार कॉल किया मसूद भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं सुनती हूँ, न्यू कॉलर हूँ अभी तो मैं।
0: वेलकम वेलकम, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुई, और आप तमाम लोगों की वजह से ही हमारा प्रोग्राम जो है वो चलता है और हम चलते हैं। तो प्रोग्राम में टॉपिक के हवाले से क्या कहेंगे आप? हेलो हेलो, नहीं वेल जी, मेरा ख्याल है कि आपकी जो है वो कॉल दोबारा जर्मनी चली गई है, और इस वक्त हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे जी ये वाला गाना, इस ट्रैक की हमसे रिक्वेस्ट की गई थी, और उम्मीद है कि यही वो ट्रैक होगा जो रौनक आशिकी आपने हमसे कहा था। वैसे तो आशिकों की तरफ जो रौनक है वो कम ही देखी गई है, वहाँ पर ज़्यादातर तो उदासियाँ ही देखी जाती हैं। हाँ लेकिन आशिकी की एक अपनी रौनक ज़रूर होती है।

well, this track हमसे request की थी शकील अहमद साहब ने, तो शकील भाई मेरा ख्याल है कि यही वो ट्रैक है जिसकी आपने रिक्वेस्ट की थी, और अब तो आप यकीन कहेंगे कि आपकी क्यू शीट बहुत अच्छी थी आज की।

0: Well, listen, we have the next caller with us. Assalamu alaikum. कॉल ड्रॉप हो गई थी,
1: इतनी मुश्किल लगी थी आगे कॉल.
0: हुए चलें कोई बात नहीं, दोबारा से मिल गई है ना, बड़ी आपकी किस्मत है कि आपकी कॉल मिल गई है दोबारा से. और
1: किस्मत का शुक्र है लग रही है रेडियो पे कॉल.
0: हाँ शुक्र है, शुक्र है. और फिर इतनी दूर से इंसान आए तो फिर कॉल ना लगे तो बड़ा दुख होता है. तो जी तो क्या करती हैं आप कॉल करने के अलावा? क्या स्टडी करती हैं?
1: मैं पढ़ती हूँ क्योंकि मैं बाहर होती हूँ, तो मैं लेवल क्लास में पढ़ती हूँ.
0: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह. तो हमारा प्रोग्राम आप सुन रही थी, प्रोग्राम में टॉपिक के हवाले से क्या कहेंगी आप?
1: मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जिंदगी हासिल करने का नाम है. इंसान जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करता है.
0: अच्छा यही कि जिंदगी आपके नज़दीक खोने का नाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हासिल करने का नाम है कि ज्यादा से ज्यादा हम चीज़ों को हासिल कर लें.
1: ज्यादा से खाने की बात अलग है, हासिल इंसान बहुत कुछ करता है अपनी ना लाइफ.
0: मसलन क्या क्या
1: सीखे? तो मुझे मतलब मैंने तो ये सीखा है कि इंसान अपनी जिंदगी में ना सब्र, मैंने तो ये सीखा है कि हासिल करता है. मैंने तो बहुत ज्यादा सब्र को कहा है कि इंसान सब्र कर लेना तो इंसान को बहुत कुछ हासिल हो जाता है.
0: बिल्कुल सही कहा. अच्छा आपने बताया था आप जर्मनी में रहती हैं, ऐसे ही है?
1: जी जी मैं जर्मनी में रहती हूँ.
0: आपको जर्मन आती है?
1: जी
0: मैंने कहा जर्मन आती है आपको?
1: आती है.
0: आती है. अच्छा जो हमारा जो आज का टॉपिक है इसको अगर आप जर्मन लैंग्वेज में बोलें तो क्या कहेंगी आप?
1: जी
0: हमारा जो आज का टॉपिक है,
1: आपकी आवाज इतनी डिस्टॉर्शन आ रही है.
0: ओहो मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है, पता नहीं क्या होता है, मैं जब भी कोई काम की बात करने लगता हूँ ना डिस्टॉर्शन आ जाती है मेरी आवाज में.
1: मैंने ना आपकी कभी सुबह पहली बार मैंने कॉल की है तो मुझे बहुत, क्योंकि मैं आई नहीं हूँ छुट्टियाँ, ईद है ना तो हम हर इवेंट पे आ जाते हैं पाकिस्तान.
0: अच्छा.
1: तो मैंने ना एक साल से रेडियो वहाँ पे सुनती हूँ, अपनी फ्रेंड हम सब कॉलेज की लड़कियाँ रेडियो सुनती हैं वहाँ पे जर्मनी में. तो मैंने कहा, मैंने उन्हें कहा जब मैं
0: पाकिस्तान
1: तब मैं बताऊंगी. जी
0: मैं तो पढ़ाई के साथ साथ सुनती हूँ, सिर्फ रेडियो सुनती हूँ और पढ़ती नहीं है. फिर
1: पढ़ती बहुत कम हूँ, पेरेंट्स से छुप के रेडियो सुनती हूँ, बहुत डांट पड़ती है.
0: अच्छा जर्मनी में रेडियो सुनने का रिवाज है अभी भी?
1: मैं सुनती हूँ मगर मेरी फ्रेंड भी सुनती है.
0: सही सही, चलें ध्यान से सुना करें और ज्यादा सुनी सुनाई बातों पर भी यकीन नहीं करना चाहिए. ठीक है
1: वो सुनता ही नहीं है, आपको मेरा सलाम कहना, अगर वो सुन रही है तो उनको खुसूसी सलाम है.
0: चले उनको वैसे सलाम है.
1: उन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरह आपने वेलकम किया.
0: अच्छा चले बहुत शुक्रिया. मैं भी
1: तो अमरजा चौधरी भाई को भी मेरा सलाम है.
0: चले
1: तो उन्होंने भी मुझे न्यू कॉलर दी तो उन्होंने मुझे इतना वेलकम किया कि आप न्यू कॉलर आए हैं.
0: बहुत शुक्रिया.
1: अच्छा सा ट्रैक मेरे नाम डेडिकेट.
0: जी नेक्स्ट ट्रैक मैं आपके नाम कर देता हूँ. ठीक है
1: नाम लेके. ठीक है
0: जी. नाम क्या बताया था आपने?
1: हमना.
0: हमना ओके ओके हमना. मैं इंशाल्लाह आपके नाम पे नेक्स्ट ट्रैक कर देता हूँ. ठीक है
1: के नाम आपने कोई ट्रैक करना है जर्मनियों के नाम. ठीक है
0: ठीक है जर्मनियों के नाम कर देंगे. ठीक है जी चले बहुत शुक्रिया. हमना जीती रहें, खुश रहें. थैंक यू.
1: अल्लाह हाफिज़. जरूर आपको कॉल.
0: जी ज़रूर बहुत शुक्रिया. वेल जी हमने बहुत शुक्रिया कि आपने जर्मनी से आके हमें कॉल की. अगर आप वहाँ रहते कॉल कर लेती तो हम आपसे भी कोई जर्मन गाना सुन लेते. बहरहाल अब क्या किया जा सकता है, जब आप दोबारा जाएँ ना वहाँ पे और जब दोबारा छुप के रेडियो सुने तो ज़रूर हमें कॉल कीजिएगा, फिर हम आपसे जर्मन ज़ुबान में वो गाना सुनेंगे. ठीक है. और नेक्स्ट ट्रैक जी हमने आपके लिए और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो कि ईद करने के लिए पाकिस्तान आए हुए हैं या लाहौर आए हुए हैं या अपने घरों में आए हुए हैं, आप चाहे शहर से गांव में गए हैं ईद करने के लिए या आप गांव से शहर में आए हैं ईद करने के लिए, दोनों सूरतों में आप मुल्क से बाहर रहते हैं और पाकिस्तान में आए हैं ईद करने के लिए, तब भी आप सबके लिए जनाब नेक्स्ट ट्रैक होगा. और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉल की जानिब. अस्सलाम वालेकुम. वाह हेलो.
2: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन साहब?
2: जनाब नवाब शाह से हाफिज दुर मोहम्मद खासकली.
0: वाह कैसे हैं आप सर?
2: ठीक ठाक. आप सुनाओ खैरियत से हैं?
0: अल्लाह का शुक्र. जनाब नवाब शाह का मौसम कैसा है?
2: नवाब शाह का मौसम तो माशाल्लाह अभी तो ठंडी हवाएं चल रही है.
0: अच्छा तो नवाब शाह में तो गर्मी नहीं होती बहुत?
2: नहीं हमारा जो सिंध का जो नवाब शाह है ना वो जिले जो है दादू है या जामशोरो है. जामशोरो और नवाब शाह जो ठंडे होते हैं.
0: अच्छा
2: गर्मी तो होती है दिन में होती है लेकिन इतनी गर्मी नहीं है जितनी होनी चाहिए. तकरीबन अभी टेम्परेचर मेरे ख्याल में दिन को 40 के करीब था.
0: अच्छा और इस वक्त कितना होगा?
2: अभी तो मेरे ख्याल में 32 30 32 होगा.
0: ओह गुड. अच्छा यानी कि फिर तो अच्छी हवा लगती है वो मतलब मजा आता है सभा में बैठने का।
2: हाँ बिल्कुल, ठंडी हवा चल रही है, हम पर सोए हुए हैं माशाल्लाह, पसीना वगैरह कुछ भी नहीं है। हम तो रात को 12 बजे के बाद तो हम शॉल डालते ऊपर।
0: अच्छा गुड, ये तो आपने इन्फॉर्मेशन दी हमें। तो प्रोग्राम सुन रहे थे, तुम्हारे टॉपिक के हवाले से क्या कहेंगे आप?
2: मैं आपके टॉपिक के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि आपकी नशरियात मैं सुन रहा हूँ 666 पर, क्योंकि आवाज सही नहीं आ रहा मेरा आपका।
0: अच्छा,
2: वैसे मेरे पास और कुंबल में हूँ ब्लाइंड आंखों से।
0: ओहो ओहो, ओके ओके ओके ओके, ठीक हो गया।
2: तो बस आपका प्रोग्राम सुन रहा था, मेरे पास प्रोग्राम में शामिल हूँ।
0: चले, बहुत शुक्रिया।
2: अनिल आप ही को सलाम, उसको मैंने एक मैसेज दिया था, लेकिन शायद उसको मैसेज मेरा मिला था या नहीं मिला था। अगर जो सुन रही है तो मेरा उनको सलाम, और मेरे SMS पे वो गौर करे, अल्लाह उनको सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे।
0: आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया नवाब मोहम्मद साहब, इंशाल्लाह दोबारा फिर आपसे बात होगी।
2: अल्लाह आपको सलामत रखे।
0: आमीन, आपको भी अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती और सलामती अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। वह जी, इतनी दूर से, इतनी मोहब्बत से, इतनी चाहत से कुछ सुन रहा हो तो यकीन माने कि दिल बहुत बड़ा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम मसूद, ये क्या हो गया आवाज को?
0: क्या हुआ पा?
3: इतनी डिस्टर्ब।
0: हेलो हेलो हमारी आवाज़ को जो भी कुछ कहता है ना, उसको बस कोई ना कोई जिन जो है ना, वो कुछ करने नहीं देता। हेलो, ओहो, एनीवेज़ आई डोंट नो, डिस्टॉर्शन अगर जा रही है हमारी आवाज़ में तो क्यों जा रही है? टेक्निकल टीम अगर सुन रही है हमारी आवाज़ तो बस इस डिस्टॉर्शन को चेक करें जी। अब भी कुछ कहता है ना, उसको बस कोई ना कोई जिन जो है ना, वो कुछ करने नहीं देता। हेलो, ओहो, एनीवेज़ आई डोंट नो, डिस्टॉर्शन अगर जा रही है हमारी आवाज़ में तो क्यों जा रही है? टेक्निकल टीम

हेलो भाई जी, आई थिंक देर इज़ सम सीरियस प्रॉब्लम और जिसकी वजह से कॉल्स जो हैं वो आगे नहीं चल पा रही हैं। एनीवेज आई एम सॉरी फॉर दैट, और मैं अपनी टेक्निकल टीम से ख़ुद भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और आई थिंक कि वो भी प्रोग्राम सुन रहे होते हैं तो वो भी इस चीज़ का नोटिस लेंगे और इसको हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लेट अस चेक जनाब और विल गेट बैक टू यू आफ्टर दिस। वेल जी, ट्रैक हम डेडिकेट करते हैं तमाम ओवरसीज पाकिस्तानीज को हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, स्पेशली से जर्मनी से आए लोगों को। और जर्मनी से आए लोगों के लिए एक टीवी पे प्रोग्राम भी चलता था, बड़ा मशहूर ड्रामा था वो, जानू जर्मन के नाम से। हा हा हा हा, क्या करेक्टर था वो और क्या खूबसूरत तरीके से निभाया था उन्होंने। फिर उसमें जो जर्मनी के मुकाबले होते हैं,

मस्जिद ठंडा ठार ठंडा ठार सा गाना इस गर्मा गर्म मौसम में। अगर आप भी मवेशी मंडी जाने का इस वक्त प्रोग्राम बना रहे हैं तो बेस्ट टाइम है, मौसम भी बेहतर है, हिम्मत कर ही लें। हिम्मत करने वालों की कभी हार

0: वर्ल्ड रेस्टोरेंट बैग, आंखों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम, हर जगह तुम ही तुम। ओरिजिनली ट्रैक गाया था बनी ने और उसके बाद अब ब्यूटीफुल रिमिक्स। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
0: वालेकुम अस्सलाम पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान।
1: अच्छा भाई, क्या हाल है?
0: मेरा हाल तो ठीक है, आप अपना हाल बताएं।
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक।
0: अपना नाम तो बताएं।
1: मैं साजिदा बात कर रही हूँ।
0: साजिदा, क्या हाल है आपके साजिदा? बहुत दिनों के बाद कॉल किया आपने।
1: हाँ जी, बस वैसे।
0: आप भी लगता है हमारी तरह छुट्टियां करने लग गई अब।
1: और आपका शो जबरदस्त है, बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो टॉपिक के हवाले से क्या कहेंगी?
1: हाँ जी, मैं कहूँगी जिंदगी को हासिल करने के लिए, यानी कि हमें कुछ खोना भी पड़ता है, कुछ पाना भी पड़ता है। अगर हम मेहनत करें, अगर हम मेहनत करें तो पाएंगे। अगर हम कुछ खो देते हैं तो शायद उसी में कोई बेहतरी होती है। जो हमें नहीं मिलता ना, उसी में बेहतरी होती है। लेकिन हमें सोच अच्छी रखनी चाहिए या अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें दोबारा दे वो चीज जो हमसे खो गई है।
0: खो गई है, जो चीज कहते हैं ना, ये दुआ मांगनी चाहिए कि जो चीज हमारे हक में बेहतर है, अल्लाह ताला हमें वो अता फरमाए।
1: हाँ जी, बिल्कुल
0: बिल्कुल, तो ऐसी है।
1: हमें यानी कि अल्लाह ताला वो एक उम्मीद रखनी चाहिए, ना उम्मीद होना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद अच्छी है।
1: सफर का फल मीठा होता है।
0: बिल्कुल ऐसी। और आजकल तो बड़ी फिक्र ये भी होती है कि वाईफाई ना जो है ना, वो ना कहीं उसका कनेक्शन ना लॉस्ट हो जाए, ये भी आजकल बड़ी फिक्र होती है लोगों को।
1: हाँ जी बिल्कुल
0: होती है।
1: और मैं सलाम कहना चाहूंगी।
0: वालेकुम सलाम।
1: हमना को सलाम कहना चाहूंगी, रिमशिया को और छोटे तारी को, अनिला जी को, और एक हमारी कॉलर है वो आजकल नहीं आ रही, रुजीना।
0: हाँ रुजीना, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा
1: इसके
0: बोधी जट साहब को कुछ ना कहें, वो भी दुआना तोड़ के लाए हैं, वो भी दुआना खा रहे हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी, वो तो मुझे पता है,
0: देखे केले तरबूज खा रहे
1: हैं। हाँ,
0: दिया बस ऐसे ही है। मैंने उसे कहा था ठंडा करके रखे, मैं इंशाल्लाह फिर आके लूंगा। ठीक है।
1: और मैं ना उस्मान मुगल को भी सलाम कहना चाहूंगी, शहजादे लाडला को, सब सुनने वाले को सलाम कहना चाहूंगी।
0: वालेकुम सलाम।
1: एक अच्छा सॉन्ग लगा देंगे।
0: कौन सा?
1: तेरा नाम
0: नहीं समझ आया, दोबारा से कहें।
1: तेरा नाम चंद्रसजना।
0: अच्छा, तेरा नाम चंद्रसजना। चले मैं कोशिश करता हूँ साजिदा में प्ले कर दूँ। ठीक है,
1: चले आपके लिए बहुत ज्यादा।
0: थैंक यू, आप भी ख्याल
1: रखिए।
0: थैंक यू, जीती रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। वैसे यदि साजिदा हमारे पास और हम बात कर रहे हैं कि आपका क्या ख्याल है कि ज़िंदगी हासिल करने का नाम है या खोने का नाम है, तो जनाब हर चीज़ का खोना जो है वो भी बुरा नहीं होता और हर चीज़ का जो हासिल हो जाना है वो भी अच्छा नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें खो कर सुकून मिलता है। आप यकीन मानें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें खो के भी सुकून मिलता है, जैसे कि आप कह लें कि अना जो है उसे खो के एक बहुत सुकून मिलता है। आपको फजूल लोगों को खो कर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, ओवर थिंकिंग को खो कर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें खोने से सुकून मिलता है। हम बाज़ोकत कुछ लोग कहते हैं भूलने की आदत है, बाज़ोकत ये आदत जो है वो मुझे लगता है कि ये फ़ायदा भी देती है और बाज़ोकत नुकसान भी देती है, कि जो बातें लोग याद रख लेते हैं मेरे बारे में कि या हमारे बारे में कि फ़लाँ ने आपको फ़लाँ वक्त पर ये कहा था, तो मुझे वो बातें अमूमन याद नहीं रहती। और वो मैं बाज़ोकत समझता हूँ कि शायद ये अल्लाह ताला की नेमत है कि मुझे वो बातें याद नहीं रहती। अगर रहती हूँ तो फिर मैं भी हर वक्त सोचता रहूँ, अच्छा फ़लाँ ने ये उस मौके पर ये कहा था, मुझे ये याद है। कुछ कुछ बातें याद रह जाती हैं, मैं ये नहीं कहता कि सब याद नहीं रहती, कुछ कुछ रह जाती हैं और कुछ कुछ नहीं कहती। सॉरी, इसलिए मेरे घर वाले कहते हैं कि जो अपने मतलब की बातें होती हैं वो आपको याद रह जाती हैं और जो किसी और के मतलब की होती हैं वो आपको याद नहीं रहती। और एनीवेज, इस पर बात हम इस ट्रैक के बाद भी करेंगे और इस वक्त ये ट्रैक प्ले करने को मेरा बड़ा दिल कर रहा है, सो एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। एफ एम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टूडियो से आवाज सुन रहे हैं मसूद अहमद की। हाशमी साहब ने बहुत अच्छी बात की, इस ईद पे अपने फ्रीजर ना भरें, उन लोगों के दिल को भरें जिन्हें साल भर गोश्त जो है वो सिर्फ ईद के मौके पे मिलता है, उनके दिल में जगह रखें, उनके अपने फ्रीजरों में। Enjoy this beautiful track. ये हमारा आखिरी शो عید سے پہلے.

0: वेल जी, स्ट्राइक को हम बैकग्राउंड में रखते हैं और नेक्स्ट कॉलर की जाने बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका?
0: अल्लाह का शुक्र, आप बताएं, खैरियत से हैं?
1: अरे मसूद, कहाँ, आवाज़ से नहीं पता चल रहा?
0: आवाज़ से बिल्कुल आपा पता चल गया, पहले आपकी आवाज़ कहाँ गुम हो गई थी?
1: नहीं नहीं, पहले तो डिस्टॉर्शन इतनी थी, आ ही नहीं रही थी आवाज़ आपकी।
0: अच्छा, आप ठीक आ रही है?
1: हाँ, मेरी तो आवाज़, गला इतना ख़राब है, मैं तो सवेरे ही पहचान भी नहीं सकोगे आप।
0: अल्लाह खैर, नहीं आपा, आप जब तक के आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ में तब्दीली ना कर लें तब तक तो पहचानी जाएगी आपकी आवाज़।
1: नहीं मसूर, मैंने कोई तब्दीली नहीं की। अच्छा, क्या वहाँ मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है।
0: अल्लाह ताला आपको सेहत दे आपा। क्या वो ठंडा पानी पी लिया?
1: अरे पानी का, इतनी तो गर्मी है ना, कभी कभार थोड़ा सा ठंडा पी लिया होगा, भुगत रहे आज पंजरा
0: भी। बस यही होता है कि गर्मी से दिल तो उसे बहुत करता है कि ठंडा ठंडा पानी पी लेकिन उसके बाद जो है ना। अच्छा, इसमें आपा एक मैंने बड़ा ये ध्यान, मुझे लगता है इस चीज़ पे मेरे आता है कि जो स्पेशली जो हम बाहर से बर्फ़ मंगवाते हैं ना, उसकी वजह से गला जल्दी ख़राब होता है।
1: आप सही कह रहे हो, पता नहीं किस पानी की कैसी बनी होती है, हम लोग यूज़ करते हैं अपने, लेकिन बाहर ठंडा ठंडा है, इतनी गर्मी है आजकल तो। पता है मेरा एक बात पे आपसे करने को बहुत दिल जा रहा था।
0: जी।
1: मैंने एक पिक्चर देखी, फोटो देखी, किसकी वाला?
0: किसकी, मेरी?
1: आपकी और निम्रा की।
0: अच्छा।
1: ओए, शी इज़ सो प्रीटी, मुझे इतनी खुशी हुई ना, इतनी खुशी मेरा दिल जा रहा
0: था। उसी की तारीफ करी जा रही है आप बस?
1: नहीं नहीं, तो आपको कपल में कह दूँ ना, बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, अब आप प्लेलिस्ट ना उनसे बनवाया करें, वो अपनी जैसी प्यारी सी प्लेलिस्ट बना के
0: अपनी जैसी तो फिर रहने ही दें, फिर मैं खुद ही बना लूंगा।
1: हाय अल्लाह जी,
0: चले। अच्छा, आप टॉपिक के वाले से क्या कहेंगी?
1: मैं तो बस यही कहूँगी, कभी कभी भागे इंसान बड़ा पछताता है और कभी खो के भी पछताता है, लेकिन जिंदगी है, जिंदगी में दोनों चीजें लाजिम व मलजूम है। ना हम कभी जिंदगी भर जीत सकते हैं, पा सकते हैं कोई चीज, और ना कभी जिंदगी भर हार सकते हैं, खो सकते हैं, नहीं, दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ता है, सब्र शुक्र के साथ।
0: बिल्कुल,
1: कभी खो के पछता है तो कभी
0: हासिल करके पछता है।
1: तो ये दोनों चीजें जिंदगी के साथ है और बहुत जरूरी है। हमें कदर जब भी आती है मिलने की या किसी चीज को हासिल करने की, मसूद जब हम कुछ होते हैं ना, कदर आती है।
0: बिल्कुल,
1: नाइन्थ का अगर एग्जाम दिया और खुदा न खास एक दो पेपर रह गए, और फिर जब दोबारा हम दे रहे होते हैं तो फिर बड़ा ख्याल रहता है कि भाई इस दफा भी ऐसा ना हो जाए, तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो जब खोते हैं तो हमें होने का एहसास होता है, और मिलने की खुशी होती है हासिल करने की।
0: बिल्कुल,
1: तो आज मसूद का बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, लेकिन मसूद एक शिकायत है मुझे आपसे।
0: जी जी,
1: आपके सारे सॉन्ग ना निम्रा के साथ बैठ के घर में सुना करें, या जरा लोगों की ज्यादा सुन लिया करें। अगर वो सुन रही तो उनकी।
0: अच्छा, चले,
1: बहुत प्यार,
0: चले, बहुत शुक्रिया, जीते रहे, खुश रहे।
1: मेरी इतनी जल्दी से
0: हाँ जी जी,
1: बताएं
0: खुद ही कह रही थी ना कि बाजू का जिंदगी में हासिल और खोना, जब दोनों साथ से चलते हैं,
1: दोनों ही चलते हैं, और होना भी चाहिए, जरूरी है,
0: बिल्कुल
1: बहुत जरूरी है। आपके लिए खैर, और आपके बच्चों के लिए, और निम्रा के लिए मेरी बहुत दुआएं।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
1: और जिंदगी इसी तरह गुजारते रहे।
0: बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको भी जिंदगी सेहत अता फरमाए। थैंक यू,
1: सबको मेरा बहुत सलाम, एडवांस ईद मुबारक,
0: खैर मुबारक,
1: और जो लोग हज पे गए हैं मसूद, तो यही कहूंगी कि अल्लाह ताला उनकी इबादतें और उनकी दुआएं अल्लाह कबूल फरमाए, उनके घर वालों की भी।
0: आमीन।
1: 5 दिन बड़े अहम दिन आ रहे हैं, हम सबको भी उसका दरअसल करना चाहिए।
0: बेशक बेशक बेशक,
1: जीते रहें, अल्लाह हाफिज़।
0: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। वैसे हमारी प्यारी सी आपा अपनी बहुत सी बहुत खूबसूरत सी बात के साथ के हज के दिन भी हैं, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो अमलियात हैं हज के हवाले से, वो हमें ज़रूर करते रहना चाहिए, और दिल में जो है ना, हमें एटलीस्ट ज़रूर जो तकबीरात हैं उन्हें जब भी मौका मिले हमें उनको ज़रूर दोहरा लेना चाहिए। बहुत अजर है, बहुत सवाब है इस काम का। एनीवेज जी, अब जो वक्त है वो हमें बता रहे हैं कि बस अब जाने का वक्त है, अगरचे पता नहीं लगता जब जाने का वक्त होगा, तो कहते हैं कि पता नहीं चलता जब जाने का वक्त आ जाता है, लेकिन जब तक जो है वो इंसान अपने होशोहवास में होता है और घड़ी की सुइयां उसको ये बता रही होती हैं कि जाने का वक्त है, तब तक शायद वो कैलकुलेट कर सकता है उसको। वेल जी, हमारा ये था आज का प्रोग्राम कि ज़िंदगी क्या सिर्फ हासिल करने का नाम है या खोने का नाम है। तो बहुत सारे लोगों ने जनाब इस हवाले से बात की, और سب نے اچھی اچھی باتیں کی, لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ چیزوں کو کھو دینا ہی زندگی کا نام ہے, زندگی کا حاصل ہے. اور جہاں پہ ہم صرف پانے کی بات کرتے ہیں, اگر پا کے بھی وہ حاصل نہ ہوا, پا کے بھی اگر وہ کھویا ہی کھویا رہا, تو پھر وہ حاصل ہو جانا بھی کسی کام کا نہیں لگتا میرے خیال میں. تو اینی ویز جی, آپ تمام لوگ جنہوں نے پروگرام میں کال کیا اور جنہوں نے نہیں بھی کال کیا, آپ سب کی محبتوں, چاہتوں اور عنایتوں کا بہت شکریہ. جن لوگوں کی کال نہیں لے سکا ان سے صد معذرت کہ میں آپ کی کال نہیں پروگرام میں شامل کر سکا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں موقع ملا تو ضرور کر دوں گا. اور جن لوگوں نے ہمارے ساتھ پروگرام میں شمولیت اختیار کی ہمارے فیس بک میسیجز سے اور 4471 کے میسیجز سے, اور بھی جناب جو کالز میں شامل ہوئے 11 بجے کے بعد, آپ سب کا بہت شکریہ. اگر ان سانسوں نے وفا کی تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے کے روز رات 10 سے 12 میں, یا شاید عید پہ ملاقات ہو جائے. اٹ ول بی اے سرپرائز. اگر تو مجھے آفس سے چھٹی ہوئی عید والے دن تو ہوپ فلی ملاقات ہو جائے گی, اور اگر نہ ہوئی اور پھر اگر ہماری ایڈمنسٹریشن نے اس کی اجازت دی یا نہ دی کہ اینڈ ٹائم پہ میں نے اگر انہیں اپنی اویلیبلٹی دی, تو اس کا میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا. بہرحال ہوپ فار دی بیسٹ, جو آپ کے لیے میرے لیے بہتر ہو اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائے, اور جو ہمارے لیے اچھا نہیں ہے اس کو اس پیارے طریقے سے ہمارے سے دور کر دیں کہ ہمیں اس کا دکھ اور رنج جو ہے وہ کم سے کم محسوس ہو, کیونکہ ہم انسان ہیں نا, چھوٹے دل کے لوگ ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں جلدی. میں تو تیرے آنسوؤں سے بنا ہوں, پروگرام تو میرا یہ تھا ٹریک چلانے کا, لیکن ٹائم جو ہے نہیں ملا. بائے بائے, ٹاٹا, اللہ حافظ, فی امان اللہ, اینڈ ہیسٹا لا ویسٹا.

मोहब्बत अमन है और अमन का इनाम पाकिस्तान। बड़ा जबरदस्त सा ट्रैक है, मिली नगमा हम जी डेडिकेट करते हैं प्यारे वतन पाकिस्तान के नाम और पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस के नाम, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, पिशावर, मुल्तान और पूरा पाकिस्तान। जहां जहां दोस्तों मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप तमाम दोस्तों को कहेंगे जी खुश आमदीद। मुझे कहते हैं गजनफर महमूद कियानी। हफ्ते में तीन दिन दोस्तों आपसे मुलाकात रहती है। इस ट्रांसमिशन को आपके लिए डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस करती हैं मिस सदफरानी। मुझे कहते हैं गजनफर महमूद कियानी। आप इस्लामाबाद स्टूडियो से ये प्रोग्राम सुन रहे थे। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोस्तों आपका और मेरा साथ रहेगा। क्या टॉपिक है आज, आज किस मौजू पे हम बात करेंगे ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और आप जानते हैं कि 12:30 तक हम बहुत आउट क्लास और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का म्यूज़िक आपको सुनवाते हैं। कम तुसी बिल्कुल नहीं करना है। मट्टी मट्टी शाइनिंग फ्रिक्वेंसी होगी जी आपके रेडियो सेट्स की FM 101। इसके अलावा अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है तो आप radio.gov.pk को एक्सेस करने के बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े FM रेडियो नेटवर्क की लाइव ट्रांसमिशन सुन सकते हैं। facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान ही हमारा ऑफिशियल फैन पेज है। उस पर प्रोग्राम के हवाले से पोस्ट मौजूद होगी, आप उस पर कॉमेंट करेंगे, अपना फीडबैक देंगे, अपने राय का इजहार करेंगे। और आज भी हम वेलकम करेंगे अपने नए कॉलर्स को, हमारे पुराने, और पुराना तो नहीं कहना चाहिए, जो रेगुलर लिसनर्स हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपने नए लोगों

और ड्राइव करते हुए दोस्तों अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान से ड्राइविंग कीजिएगा, अपना ख्याल रखें और अपने से मुंसलिक अफराद का आप दोस्तों ने ख्याल रखना है। जी 12:15 हो चुके हैं, आज का टॉपिक आपसे शेयर करते चलें जिस पे आप हमें कमेंट करेंगे, फीडबैक देंगे 4471 पे, और इसके अलावा आपकी लाइव कॉल्स होंगी और फेसबुक पे आपके कमेंट्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अच्छे दोस्त की क्या पहचान होती है दोस्तों? ऑब्वियसली हर किसी की ज़िंदगी में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं जो उनके मुश्किल वक्त में काम आते हैं, जो अच्छे उनको मशवरे देते हैं, जो उनकी अच्छा वक्त बुरा वक्त हर तरह का जो ज़िंदगी के मामलात होते हैं उनमें उनके साथ होते हैं। तो ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी में अगर आप ऑब्वियसली आप सब बहुत ज़्यादा खुश नसीब होंगे। तो आपने मुझे ये बताना है कि अच्छे दोस्त की आपकी नज़र में क्या पहचान होती है, इस पे आज हम गपशप करेंगे। और अगर आप अपना नाम भी बताना चाहें अपने अच्छे दोस्त का तो वो भी हम इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इस पे ये आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगु है जी, अच्छे दोस्त की क्या पहचान है ये आप बताएंगे। आपसे मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ जो हमारे रेगुलर लिसनर हैं आज आपने कम कॉल्स करनी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि नए कॉलर्स को प्रोग्राम में ऐड कर सकें। बड़े सख्त किस्म के ऑर्डर्स आए हैं ऊपर से, आप समझते ही हैं जी, हमारी जो प्रोड्यूसर साहब हैं उनकी जानिब से और इसके अलावा मैडम सदफ जो हेड हैं उनकी जानिब से, कि नए कॉलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा आपने मौका देना है, चाहे वो 4471 पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैसेजेस करेंगे वो हमने प्रोग्राम में शामिल करने हैं। इसके अलावा कॉल्स प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कॉलर से कि आपने नए लोगों को मौका देना है, हम आपकी भी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन वो सेकंड हाफ में कोशिश करेंगे, लेकिन फर्स्ट हाफ में हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा नए कॉलर्स को ऐड कर सकें। आपका मैसेजेस, आपका जो भी फीडबैक होगा वो इंशाल्लाह हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। 12:30 तक ज़बरदस्त सा म्यूज़िक और उसके बाद आपसे होगी ढेर सारी गपशप। ईद की तैयारियां जी ज़ोरों शोर से जारी हैं और ख़वातीन की तैयारियां तो आखिरी दिन तक नहीं ख़त्म होती। वैसे ऐसा क्यों होता है आज तक नहीं समझ आई मुझे, आखिरी दिन भी कभी लैस रह जाएगी, कभी क्या रह जाएगा, कभी क्या रह जाएगा, दुपट्टा पीको तो आखिरी दिन तक नहीं होता। आतिफ असलम की आवाज को प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लौट कर वापस आते हैं, करेंगे ढेर सारी बातें। मुझे कहते हैं गजनफर महमूद कियानी, ताल्लुक मेरा जी जन्नत नजीर से जिसे कहते हैं कश्मीर। हाय हाय छुट्टियां ले ली और अब हम जाएंगे कश्मीर।

ओके जी, वेलकम बैक. दिल की ना सुने जी, आप लोग अपने दिल की सुनते हैं नहीं? आप जानते हैं कुछ दिन पहले हमने प्रोग्राम में टॉपिक भी रखा था इस हवाले से, दिल के हवाले से, कि दिल की सुननी चाहिए, दिमाग की सुननी चाहिए. तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रोग्राम हमारा वो भी रहा था. तो दोस्तों, आज के दिन हम बात कर रहे हैं कि आपने मुझे ये बताना है कि अच्छे दोस्त की पहचान क्या होती है. सबसे पहले आपके कुछ हम 4471 के मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे. फिर उसके बाद दोस्तों आपके जो कमेंट्स होंगे फेसबुक के, और फिर हम लाइव कॉल्स की जानिब जाएंगे. मजीद भी ईद के हवाले से गपशप हम भी करेंगे कि ईद पे क्या सिलसिला चल रहा है जी. मंडी में काफ़ी ज़्यादा जो है वो तेज़ी है, अच्छा खासा महंगा सिलसिला है. अच्छी तरह याद है मुझे जी, जब एक वक्त हुआ करता था कि जब वो लोग तीन लोग, पांच या सात लोग मिल के हिस्सा डाल के जो जानवर खरीदते थे, तो हार्डली 13 से 15 हज़ार में मामला जो है वो हो जाया करते थे. लेकिन अब वही सिलसिला जो है वो जाकर 60-70 हज़ार तक मामला पहुंच चुका है. चूँकि नॉर्मल से नॉर्मल भी जानवर अगर आप बड़ा ख़रीद रहे हैं तो वो 3 लाख से शुरू हो रहा है, जो कि हर किसी की अप्रोच में अब मामला नहीं है. और इसके अलावा छोटे जानवर, उनकी भी अच्छी खासी कीमतें हैं जी. अल्लाह ताला सबको तौफीक दें और सुन्नत इब्राहिमी जो है इसको हम सब लोग जो है वो कर सकें. महंगाई आप जानते हैं कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हुई है. ये रिसेंटली जो पेट्रोल प्राइसेस हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई. कल गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलीफ दिया है, कुछ रुपए जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से सस्ता किया गया पेट्रोल. उससे यकीनी तौर पर वो आप एक किस्म की ईदी समझें जी, हुकूमत की जानिब से. हमारे साथ सबसे पहला मैसेज है जी शायद सालार फ्राम साहिवाल. सर, मेरे मैसेज ये है कि बड़ी ईद है, हम सबको दिल बड़ा करना चाहिए और सब लड़ाई झगड़े ख़त्म कर दें और दिल से माफ़ कर दें या माफ़ी मांग लें. कोई एक अपनी गलती तस्लीम कर लें और सारे मामला ठीक हो जाते हैं. एडवांस में ईद मुबारक भाई दिया आपने. शायद सलार साहब, इतने मीठे मैसेज आपने किए हैं, आप माशाल्लाह बड़े प्यारे दिल के आदमी हैं, लेकिन ये चीज़ें समझ नहीं आती लोगों को, तो कैसे समझाया जाए ये भी आप लाजमी मुझे बताइएगा. नेक्स्ट SMS है हमारे साथ. डॉक्टर अलिशपा मौजूद है रावलपिंडी से. आपने कहा जी अच्छा दोस्त, सबसे पहले तो ये बताएं ना कि अच्छे दोस्त मिलते कहाँ पे. चलो जी, मैं तुम्हें दसना कि तो मिलते हैं. आप ज़रूर जी, ऑब्वियसली अभी तक आपके माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आपने लाइफ गुजारी है, उसमें जितने भी आपके दोस्त गुजरे उसमें कोई तो एक लॉयल दोस्त होगा, तो लाजमी आपने बताना है कि क्या उसकी पहचान है. आकाश अली मासद मौजूद है. दोस्ती में वफा हो और किसी बुरे का साथ ना हो. उमेर वकास, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया. और आकाश, बहुत शुक्रिया आपका. राजा जुल्कनैन क्यानी साहब, वालेकुम सलाम जी, आपके मैसेज मैंने शामिल कर लिया. आसिया मुगल हमारे साथ मौजूद है जी, फ्रॉम मुजफ़राबाद. सलाम अलैकुम क्यानी भाई, वेलकम, कैसे हैं आप? बहुत टाइम बाद आपका प्रोग्राम सुन रहे हो आसिया. बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. मज़ीद भी दोस्तों जो लोग हमें इस वक्त सुन रहे हैं, तो प्लीज़ ये फेसबुक की जो पोस्ट है इसको आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि मौजूद हैं जी. फ्रॉम मुजफ़राबाद, सलाम अलैकुम क्यानी भाई, वेलकम, कैसे हैं आप? बहुत टाइम बाद आपका प्रोग्राम सुन रहे हो आसिया. बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. मज़ीद भी दोस्तों जो लोग हमें इस वक्त सुन रहे हैं, तो प्लीज़ ये फेसबुक की जो पोस्ट है इसको आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर

आप क्या फीडबैक देती हैं? आपने कहा है जी लॉयल एंड नॉट हाइड एनी स्मॉल बिट थिंग, मतलब कोई भी चीज़ आपसे ना छुपाई जाए, आपके साथ लॉयल होना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ समरा मौजूद है। समरा थैंक यू सो मच, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज करती हैं हमेशा, प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक देती हैं। उन्होंने मैसेज किया है कि टॉपिक के हवाले से आपने अभी तक फ़िलहाल कोई फीडबैक नहीं दिया, लेकिन बहरहाल आप सुन रही हैं, टॉपिक के हवाले से लाजमी आपने फीडबैक देना है। ट्रैक जब हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे थे श्रीकानु अग लगी, वो उस ट्रैक पे आपने फीडबैक दिया था, कहते हैं कि आप क्यों लोगों को दोबारा जादू वाली गद्दी में बिठाने पर तुले हैं। अल्लाह लियो केड़े पास डर पे हो।

बहुत शुक्रिया जी आप तमाम दोस्तों का जो जो फीडबैक दे रहे हैं हमें 4471। इसके अलावा facebook.com/FM101channelPakistan और लाइव कॉल्स अभी हमने आपके प्रोग्राम में शामिल नहीं की। ईद के हवाले से भी आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं कि कहाँ तक आपकी तैयारियाँ पहुँची हैं। और हमारे साथ लुबना मौजूद है इस्लामाबाद से। थैंक यू सो मच लुबना आपके मैसेज का। आप कहती हैं कि अच्छे दोस्त कभी भी ना तो आपकी बुराई करते हैं और ना ही वो सुनते हैं। मतलब ये आपने पॉजिटिव चीज़ बताई है कि आपका दोस्त जो है वो ना तो आपकी बुराई करता है ना ही वो आपकी बुराई सुन सकता है। इसके अलावा डॉक्टर किश्वर आरिफ साहब हमारे साथ रावलपिंडी से मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अच्छे दोस्त की पहचान है कि वो आपके अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ होता है और हर हाल में आपकी खुशी चाहता है और आपको जज नहीं करता कभी भी, और आप जो है वो अनकंडीशनल जो है वो आपके साथ देता है और ना ही कुछ मांगता है और ना ही कुछ वापसी का वो तकाजा करता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, बड़ा ज़बरदस्त आपने फीडबैक दिया। इसके अलावा हमारे साथ अरीबा मौजूद है हरिपुर से।

थैंक यू अरिबा, आपने मैसेज किया। आप कहते हैं अच्छे दोस्त की पहचान ये है, ऐसा दोस्त हो जिसके सामने दिखावा ना करना पड़े, दुख को छुपाना ना पड़े, और खोखले कह के ना लगाने पड़े। जी बड़ी ज़बरदस्त, आपने सख्त उर्दू जा के ढूंढिए जी, खोखले कह के ना लगाने पड़े। थैंक यू जी, आपके मैसेज का शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ कौन मौजूद है? समरा ने अभी तक टॉपिक के हवाले से जवाब नहीं दिया। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट ये है कि एक तो टॉपिक से रिलेटेड आपने आंसर ज़रूर करना है, इसके अलावा अगर आप किसी को पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, वो कराची से एक कॉलर आते हैं फजल साहब, वो अपने दोस्तों को पैगाम पहुँचाते हैं, तो हम दो काम भी करते हैं, आपका प्यार मोहब्बत भरा पैगाम पहुँचाएँगे लोगों तक।

12:32 हो चुके हैं दोस्तों। अब से कुछ ही देर बाद आपकी लाइव कॉल्स भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अच्छे दोस्त की पहचान क्या है, इस पे आप हमें अपना फीडबैक दे रहे हैं और आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। दोस्तों ट्रांसमिशन के हवाले से अगर किसी भी किस्म की कंप्लेन है, अगर आप तक ट्रांसमिशन ठीक नहीं पहुँच रही तो आपने मुझे लाजमी बताना ताकि उस हवाले से हम इसको जो है वो बिल्कुल जो है वो ट्रांसमिशन आप तक ठीक ठाक पहुंचा सकें। और इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि आपका नंबर नहीं मिलता, तो अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर से कॉल करते हैं तो प्लीज़ 051 लाजमी ऐड किया करें। मैं हमेशा जो भी नंबर बताता हूँ उसके साथ 051 ऐड करके बताता हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। दो नंबर्स आपके साथ शेयर करता हूँ, एक 051-111-000 और दूसरा जो हमारा नंबर है वो ये है कि 051-920-2540 पर दोस्तों आप लोग हमें कॉल्स करते हैं तो मैं आपकी लाइव कॉल्स जो है वो प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आज आपने नए दोस्तों को मौका देना है। और आप जब मैं इस तरह की बात कर रहा था और फिर आप कहते हैं कि हम नंबर डायल कर रहे थे इस दौरान आपकी बात हम नहीं सुन सके, तो कॉल्स जो हैं वो 12:40 मतलब एक ट्रैक और मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा, उसके बाद जो है हम आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो प्लीज़ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपसे जो रिक्वेस्ट की है कि टॉपिक से रिलेटेड ईद के हवाले से आप बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और जो आप दोस्ती के हवाले से हमने आज आपसे एक चीज़ पूछ रखी है कि अच्छा दोस्त जो है उसकी क्या पहचान होती है, वो आप मुझे बताएंगे। और प्लीज़ जो है वो लोग जो रिक्वेस्ट करते हैं ट्रैक्स के हवाले से, अगर आपका ट्रैक हम शामिल नहीं कर सकते तो प्लीज़ नाराज़ मत हुआ करें, चूँकि मेरे पास बाज़ औक़ात मैंने बहुत दफ़ा आपसे ज़िक्र किया है कि हमारे पास ऑन द स्पॉट जो है वो डेटा मौजूद नहीं होता, तो इस वजह से आप प्लीज़ नाराज़ मत हुआ करें।

थैंक यू सो मच समरा, आपने मैसेज किया जी। आप कहते हैं कि अच्छा दोस्त जो है वो आपकी परछाई होता है और आपका आईना होता है, आपकी खामियों को आप पर आया नहीं करता और आपको खुशामद में उलझाया नहीं करता। मतलब कोई दोस्त ऐसे होते हैं ना, आपको पता है कि अगर आप गलत भी कर रहे हैं तभी वो आपका कहते भी हो जगह तू तो फिट जा रहा है, ठीक कर रहा है, आपकी जो इसलाह है वो बड़ा मुश्किल होता है। इसके साथ साथ आपने कहा और हर कदम में, हर मुश्किल कदम में कदम आपके साथ मिलाता है। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में आपको अपनी ज़ात समझ कर चलता है, जैसे कोई इंसान अपनी ज़ात के वास्ते हर अच्छा फ़ैसला करता है, यूँ वो आपके लिए अच्छी सोच और इंतहाई मुखलस रहता है। दुआ करें मेरे दो आपकी दोस्त जो है उसके लिए। और आपने बताया कि उनको कुछ प्रॉब्लम है, उनकी सेहत ठीक नहीं है जी, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दें, आमीन। ढेर सारी दुआएं जो उनके लिए, जो दोस्त जो हैं सेहत के हवाले से। और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि अल्लाह ताला की लाख करोड़ अरबों नेमतें हमारी ज़िंदगी में, लेकिन सबसे बड़ी नेमत जो है वो अच्छी सेहत है। अल्लाह ताला सबको अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी दे, सब बोलिएगा आमीन। 12:36 हुआ चाहते हैं, एक ट्रैक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, मेरा पसंदीदा ट्रैक है और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये पसंद आएगा। वापस आएंगे, ढेर सारी कॉल शामिल करेंगे, तो फिर रिक्वेस्ट मेरी उत्थे दी उत्थे ही है। अल्लाह लियो किड़े पास तुर पे हो।

0: چلے جی آج کی پہلی کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون موجود ہیں, کہاں سے. 051-111-000-101 السلام علیکم. سر جی ماشاء اللہ صاحب کال اوپر ہاتھ رکھے ہوا سا نا
1: جی, میں نوا نوا ماڑی تھی آرڈر اپرو کری چھوڑیا, ماڑی تھی ہے نا مکیا نے, میں آپ کی بیٹی بھی ہوں آپ کی استانی بھی ہوں, سننے حسن پہ میں نوا آیا استاد جی, جیڑا کاٹا پرانے کٹی سکنے نوا نہیں کاٹ سکنے.
0: نہیں نہیں میں سن اے درخواست کیتی سی کہ کوئی دو چار بندے
1: کا جی ماڑی تھی راڑی جی, ہر ویلا پاشا 24 گھنٹے ریڈیو سننا رہنا بے مار بندہ
0: لاجواب
1: شو زبردست بند کری چھوڑا.
0: گل تو سنو نا, ڈاکٹر کی چیک کرایا نا کونی یا ریڈیو نال گزارا کرنے پیو زیادہ گوشت نہ کھائے اور زیادہ بیمار ہو سو, پہلے ڈاکٹر کی چیک کرائی گنو.
1: سر
0: میں مشورے چھوڑا, میں سب تو پہلے آخنا سا کسی ڈاکٹر کی چیک کراؤ اپنے آپ ہی, ٹھیک ہے
1: جی استاد جی, میں بالکل حکم کی تعمیر کرتا تے استاد جی, گل ہے کہ میں مریض ہو جاؤں تو ماں دنیا سے چلی گئی ہے. اچھا شاید انصاری صاحب کی زوجہ محترمہ چلی گئی ہے, اس تو علاوہ جناب اپنا تریڑ وان صاحب کی زوجہ محترمہ چلی گئی, تے انہاں نے یاد بھی دو لائن واسطے میں گانا گاسا, اے بابی تانیا تے جیڑی ہے جناب تریڑ وان صاحب کی زوجہ محترمہ, اس تو علاوہ شاید انصاری صاحب نے زوجہ محترمہ صدیقہ انصاری اس دنیا چ نہیں, تو ماڑی زوجہ محترمہ فریدا اشتیاق اس دنیا چ نہیں, تو انہیں یاد ہی تھوڑا جہا گنگنا سا, انہیں یاد تازہ کرنے بعد کدے یاد.
0: اچھا ماڑی گل سنے, بو نکا تے کم رکھنا نے الا
1: بالکل نکا جا استاد جی, بڑا طرح نہ کڈو نہ میں بیمار ہن ڈڑا.
0: نہیں نہیں اللہ سے سے دے ڈاکٹر کی چیک کرائے, اس طرح ریڈیو سننا گزارا نہیں ہونا.
1: تے انا انا استاد جی ماڑی تو تو کی ایڈوانس ہی مبارک ہوے, اے ایک جناب لاہور تو میں اتھے دی بچی ہے جناب رکشا بچی, بڑے پیار نہ لانی میں اس کی سلام پیش کرنا وا, اس تو علاوہ کھاریا تو ماسٹر عبد الغفور صاحب سارے شو پہ سننے نے, انہوں کی سلام تھا میں درخت تھوڑا جہا گنگنا سا تھوڑا جی استاد جی,
0: مکانے لی کرے ہیں مکانے لی
1: او او استاد جی, میں بالکل بٹن پر اتنا رکھے جی جی
0: جی جی آؤ جی.
1: کتے نین نہ جوڑی کتے نین نہ جوڑی, تینوں واسطہ خدا دا بغاوت نن موڑی, بغاوت نن موڑی, بغاوت نن موڑی, کتے نین نہ جوڑی,
0: کیا بات ہے جی,
1: میرا مان نہ توڑی, میرا توڑی کتے نین نہ جوڑی, او کتے نین نہ جوڑی, سلام پیش کرنا پاکستان جن آباد غزل فرقیانی جن آباد بس کا تمام سوال تک اسلام.
0: بہت شکریہ جی, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی دے, اور کیا کیا جائے جی, ماشاءاللہ ہمارے ریگولر لسنر ہیں, سینئر لسنر ہیں, इनकी कॉल भी हम ड्रॉप नहीं करते अगर करें तो, इनका दिल दुखता है लेकिन करनी ना हमेशा अपनी होती है जी। 12:44 हो चुके हैं दोस्तों, आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो लोग फीडबैक दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: अस्सलाम वालेकुम
0: यार, अंसारी साहब क्या हाल है यार?
1: आप यकीन कीजिएगा, ये अपना क्या ने मेरे मौला मुझे माफ करते, ये मेरी आदत से यार दफा ऐसा फंसा हूँ। मेरी दो भाभियां, मतलब जो मेरी दोस्त के वाइफ है मेरी दोनों भाभियां, अब वो आदत मेरी वही चला दे। मैंने
0: आपने उनको तो नहीं जाने क्या दिया था? अंसारी साहब देखो, तुसी किसे नहीं बेगम ने जाने कह दिते, तो शुक्र है तुसी बच गए हो। तुसी
1: नहीं, मैंने उन्हें सॉरी कहा ना, वो पहले मैंने माफ कर दे, मैंने मेरे नाम गलती हो गई और उनको पता नहीं सब पे आज फिर के जगह मैं कोई चीज में लेता हूं रुक ले रहा हूं या कुछ यार, जाने क्या सब लगाया यार।
0: बस आपने कहा ये तखल्लुस बन गया जा रहा है। अच्छा बशायद साहब, अच्छे दोस्त की क्या पहचान होती है, जल्दी से बताएं
1: यार। देखो पहले तो अच्छे दोस्त की पहचान वो ये, मैंने आपको पहले कहा था इसमें चार खूबियां हो, दोस्त दोस्त दोस्त दाल भाव सीन ते,
0: दाल भाव सीन ते,
1: हाँ तो उसमें है दाल दिल वाला, वाव वाव वफादार, तीन सच्चा,
0: ठीक है,
1: और ते ताबेदार,
0: ताबेदार, ठीक हो गया।
1: इसमें ये चार क्वालिटियां होंगी वो दोस्त होगा, मतलब मेरे जैसे तो पता नहीं कितने होते हैं।
0: ठीक हो गया अंसारी साहब, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है,
1: मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। से आज गाना मैं नहीं गा रहा हूँ
0: जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी अंसारी साहब, अल्लाह खुश रखे आपको, बहुत शुक्रिया जी। 12:46 हो चुके हैं दोस्तों, आपका और मेरा साथ रहेगा ठीक शब के 2 बजे तक। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जी, और जो लोग आप ज्वाइन करते हैं बात नहीं मानते वो एक अलग बात है, लेकिन अब क्या करें। बहरहाल आप लोगों के कुछ फेसबुक के कमेंट्स, क्योंकि वहाँ के दोस्त नाराज़ होते हैं कि आप लोग जो है वो कमेंट्स प्रोग्राम में शामिल नहीं करते, हम इतनी प्यार मोहब्बत से आपको कमेंट करते हैं, उसके बावजूद जो है वो हमारे जो मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल नहीं किए जाते। मैं जो हमारा ऑफिशियल फ़ैन पेज है facebook.com/FM1017 उसको मैं आप फॉलो कर लें, और उसको अपने कमेंट्स का ज़रूर पार्टिसिपेट भी करना है जी। उमर वकास साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, दाग दुनिया ने दिए, ज़ख़म ज़माने से मिले, हमको तोहफे ये तुम्हें दोस्त बनाने से मिले, डेडिकेट टू नुमान आबिद, आई थिंक आपके दोस्त हैं, उनको आपने डेडिकेट किया है। रोज़ी शेख हमारे साथ मौजूद हैं, शो अच्छा है दोस्त का, आपका खैर ख्वाह और आपका ही इसलाह करे, और मुश्किल वक्त में आपके साथ हो, ये अच्छे दोस्त की पहचान है। मुस्कान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी टीम एंड ऑल लिसनर्स कैसे हैं जी? हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, बहुत शुक्रिया। आयशा खान हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? दोस्त ऐसा हो जो कभी आपको बोले आए बुलाए आए और मुश्किल में काम आए, मतलब मुश्किल में काम आने वाले की पहचान आपने बताई, वो दोस्त होता है। फैसल चौधरी साहब, बुरे वक्त में साथ रहने वाला दोस्त होता है। उमर वकास साहब, आपने मज़ीद पोइट्री हमें लिख के भेजी है, थैंक यू सो मच। ये कुछ फेसबुक के कॉमेंट्स थे जिनकी तादाद जो है आई डोंट नो किस रीज़न की वजह से कम हुई है, इसको हम नेक्स्ट ज़रूर देखेंगे। facebook.com/FM1017 ऑलमोस्ट हर दूसरा बंदा दोस्तों फेसबुक का इस्तेमाल करता है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पेज को आपने फॉलो ज़रूर करना है। इसके अलावा एक पेज है आरजे गजनफर क्यानी के नाम से फेसबुक, उसको भी आप दोस्तों ने फॉलो लाजमी करना है। मलिक जी ने मैसेज किया है जी, सबको बहुत सलाम, अब्बास पाक आर्मी से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया जी। मेरे दोस्त इस वक्त आई थिंक आप ड्यूटी पर मौजूद होंगे और आप इस वक्त सुन रहे हैं, तो ड्यूटी पर बहुत शुक्रिया। कई ऐसे दोस्त हैं हमारे ऑफिस में, चाचा जी हैं वो, चूँकि उनकी ड्यूटी होती है रात के इस टाइम, मुझे जब वो मिलते हैं मंडे को या ट्यूसडे को, तो वो भी कहा करते हैं कि गजनफर साहब आप बहुत लेट प्रोग्राम करते हैं हफ्ते की रात, और वो भी जिक्र करते हैं ये इश्तियाक साहब का कि एक चाचा आते हैं आपके प्रोग्राम में, वो आपकी जान नहीं छोड़ते, तो मैं उनको कहता हूँ की करिए हूँ। तो अगर वो सुन रहे हैं तो उनको भी ढेर सारा प्यार सलाम। मुश्तबा हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं टेक्सला से, गुड शो। और इसके अलावा अभी जब मैं रेडियो आ रहा था, हमारे गेट पे भी ड्यूटी पर मौजूद होते हैं हमारे दोस्त जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं, तो उनको मैं देख रहा था। चूँकि दोस्तों मगरिब के फौरन बाद इस मौसम में बहुत प्यार करने वाले, बहुत मोहब्बत करने वाले जो मच्छर हजरात हैं वो आन पहुँचते हैं और वो आपको ना बहुत ज़्यादा तीज़ करते हैं। ख़ासकर आपने अगर ब्लैक पहना है, ब्लैक शर्ट है, ब्लैक कपड़े हैं आपके, तो बहुत ज़्यादा आप पे ना वो हमलावर होते हैं। तो एहतियात लाजमी करनी है अगर आपके इस वक्त ड्यूटी है। मैं जब रेडियो आ रहा था, मैं देख रहा था वो भाई कुछ काफ़ी ज़्यादा मेडिकेटेड चीज़ें आ चुकी हैं जब अपने आप बॉडी पे लगाते हैं, तो मच्छर करीब आपके ज़रूर आते हैं लेकिन आपको प्यार मोहब्बत आपसे नहीं करते। तो आपने जो जो लोग इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद हैं और वो ओपन एयर पर आप काम कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली मच्छर जो हैं वो इंसानी खून के पीछे आता है, तो आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। नेक्स्ट कॉल देखते हैं, पहले तो रेगुलर कॉलर थे, अब देखते हैं कौन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? अताउला जकी साहब फ्रॉम नौशहरा। अताउला भाई पहली दफा कॉल की है या मुझे लगता है पहली दफा की है?
2: पहली दफा से बात हो रही है। अताउला जकी, अताउला नहीं।
0: ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। पहली दफा आप कॉल कर रहे हैं, कैसा लगा आपको प्रोग्राम सर?
2: बहुत जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है और आप भी बहुत जबरदस्त
0: हैं सर। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताएं कि अच्छे दोस्त की क्या पहचान होती है सर?
2: अच्छे दोस्त में बहुत सारी खूबियां होनी चाहिए और नहीं मौजूद है। फेयरफुल है,
0: ठीक है।
2: आर से रिस्पेक्टेबल,
0: ठीक है।
2: आई से इंटेलिजेंट,
0: ठीक है।
2: ई से इनफ,
0: ठीक है।
2: इनफ का मतलब है एक ही दोस्त।
0: बिल्कुल सही बात, एक रखें, मुखलिस रखें।
2: एम से नोबल, और डी से डिवोटेड।
0: क्या बात है जी, बड़ा जबरदस्त आपने एब्रिविएशन ढूंढ के और बड़ा कैलकुलेटेड किस्म का ये किया सर। 101 कब से सुन रहे हैं आप?
2: मैं 2004 से सुन रहा हूं।
0: अच्छा,
2: 2004।
0: अच्छा, पेशावर के आप रेगुलर लिस्टनर हैं, चूंकि 12 बजे ट्रांसमिशन लिंक हो जाती है तो फिर आप इस्लामाबाद के आरजे या डिफरेंट लाहौर कराची से जो प्रोग्राम्स होते हैं वो आप सुनते हैं।
2: जी, जी।
0: बहुत शुक्रिया सर,
2: बहुत अच्छा लगा आपने फर्स्ट सॉन्ग जो प्ले किए ना, बहुत जबरदस्त।
0: जज़ाकअल्लाह। कोई प्यार भरा पैगाम देना चाहेंगे किसी को?
2: सब लिसनर्स को
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज जी। टारगेट एक कॉलर था आगे साढ़े नवे। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
0: कौन बात कर रहा है, कहाँ से?
3: मैं अफशा पठानी बात कर रही हूँ, मर्दान।
0: अफशा पठानी बात कर रही है मर्दान से। अफशा पहली दफा कॉल किया आपने रेडियो में?
3: जी भाई पहली दफा।
0: बहुत शुक्रिया अफशा, आपने पहली दफा कॉल की है। टॉपिक सुना आपने?
3: जी सुनिए।
0: तो सुनिए आपने टॉपिक, बताएं अच्छे दोस्त की क्या पहचान होती है?
3: अच्छे दोस्त की पहचान ये है कि वो बगैर बताए आपके चेहरे से जान जाता है कि आप इस वक्त खुश है या खफा।
0: खुश है या खफा
3: से गुजर रहे हैं।
0: बहुत प्यारी बात आपने की है और ये बिल्कुल होता है ऐसे, अगर आपका दोस्त बहुत अच्छा है ना, उसको आपके चेहरे से पता चल जाता है यार क्या मसला है आपको। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे आप?
3: नहीं बस, सब लोगों को
0: चले, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच जी। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लोग हमें कॉल कर रहे हैं, 12:53 हुआ चाहते हैं। मुझे कहते हैं गजनफर महमूद कियानी, जब स्टूडियो आ रहा था तो आते हुए एक जो मंडी है हमारी इधर जिया मस्जिद जो है, जो एक्सप्रेस वे है वहां पे है मवेशी मंडी, गवर्नमेंट की जानिब से बड़े ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं, खूबसूरत लाइट है, इसके अलावा बाकी भी जितनी फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं वो दी हैं। इससे कबल आज से 4-5 साल पहले ना मामलात बड़े डिफरेंट होते थे, रोड के किनारे ये तरामड़ी चौक में काफ़ी ज़्यादा रश होता था, अब यहाँ पर भी थोड़ा सा अलीपुर से आगे करके वहाँ पर मवेशी मंडी बाकायदा तौर पर इंतजाम करके ना फैसिलिटेट किया गया है, तमाम व्यापारियों को जो कि जानवर दूर से लेकर आए हैं, और इससे बड़ा एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनता है कि हर जगह आपको जानवर नहीं नज़र आते, तो एक मखसूस मंडियां जो हैं वो बनाई गई हैं जहां पर जो ख़रीदार हैं वो वैसे तो आजकल चक्कर लगा के वापस आ रहे हैं, चूँकि जेब जो है वो बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रही, चूँकि बहुत ज़्यादा रेट्स हैं। अब देखते हैं, कुछ लोगों की साइकी ये होती है कि ईद के पहले दिन या चांद रात को जो ईद से एक दिन पहले रात होती है उसमें कुछ हमें अगर सस्ता जानवर मिल जाता है तो हम वो करेंगे, अदरवाइज़ जो है फ़िलहाल काफ़ी मुश्किल है। अगर दूर दराज किसी इलाके से जानवर लेके आते हैं तो वो भी किराया इतने ज़्यादा हो गया, पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो गया, तो उनको निज़ाम वही पड़ जाता है। जो अस्सलाम वालेकुम जी।
1: जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम, की हाल जी जनाब, ठीक ठाक जी?
0: ओ जी क्या हाल है, तुसां दा ठीक हो?
1: हां बल अल्लाह दा मेहरबानी, अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूं जी।
0: सर अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। लाहौर का क्या हाल है?
1: बस माशाल्लाह बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। बस जरा बकरे महंगे हो गए हैं।
0: बकरे महंगे
1: हो गए, वो मेरे घर वाले कह रहे बकरा ले आओ, तो मैं तो खुद बकरा बन गया हूँ भाई। तो अभी इतने पैसे नहीं आ रहे तो मैं खुद ही बाज लगाता हूँ। तो वो आप समझ गए जी, आप बोल पे है, बकरा आ जाएगा हमारा।
0: क्या बात है जी।
1: इसी पे वो घर वाले अंदाजा लगा रहे हैं,
0: तो इसी पे खुश हो रहे हैं।
1: हाँ जी,
0: बस देखिए कि रगड़े ना जाए तुसी किथे।
1: मैं एक जगह थे ना, साडे दोस्ता ने ना अपना गान की दावत की थी जी।
0: अच्छा।
1: ते सारे कठे होके गए सा, तीन चार दोस्त गए सा।
0: अच्छा।
1: ते उन्होंने एक नु पता लग गया, इन्होंने दाल पकाई है जी।
0: अच्छा।
1: ते मेनू उन्होंने दस दिता, उन्हें कहा पहले बारी तेरी गान दी।
0: अच्छा,
1: ठीक है जी, मैं गाना वा जी।
0: ठीक है।
1: जिसले मैं बारी आई तो मैं कहन लग पिया दाल दाल दाल दाल दाल दाल। जो मैं बाबा को इस तरह गाना गा रहे थे ना, जेड़े भाई आए सर भाई, इको बोल बोली जा रहे थे, तो मैनू कहते चलो अगो को बोल से बदलो ना अगे, तो चलो मैनू कहते, मैं क्या तुम पहले हांडी से बदलो ना फिर अगे चला जाता। चल समझे,
0: क्या बात है जी, मैं बिल्कुल समझ गया। मतलब काफी जॉली पर्सन है, अपने दोस्तों वगैरह को भी काफी ज्यादा एंजॉय आप करवाते रहते हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। सर अच्छे दोस्त की पहचान क्या है ये बताएंगे आप?
1: देखिए जी, अच्छे दोस्त की पहचान है जो साथ हो
0: रहा,
1: वो अच्छा है। और मेरा एक दोस्त बहुत अच्छा काला, हम काला काला भी था।
0: अच्छा।
1: वो बहुत प्यार करता था मेरा, मतलब इतना प्यार, तो हमने उसको ये अर्ज किया था कि ना मैंने मांग ली।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो हार हम लेते हैं ना, ये हमारी दोस्ती में फिक पड़ गई।
0: अच्छा, दोस्ती में फिक पड़ गई।
1: हाँ जी, पैसे उधार है, दोस्ती में पैसे नहीं मांगने, बारे नहीं मांगने।
0: अच्छा, ये मतलब उधार से मामलात खराब होते हैं।
1: हाँ जी, हम करते रहे उधार नहीं मांगा, और उसको जब पता लग गया है ना कोई इसको कोई जरूरत है, जब उस मार खरीदना वो मेरे पास है।
0: ऐसे है सर, आपकी आपकी ना मैं कह रहा हूँ आपकी आवाज कटना शुरू हो गया, आप दोबारा करें कॉल, ये जो आखिरी आपने कुछ बोला या मॉनर सुन लेंगे या नेक्स्ट टाइम, ठीक है?
1: अब आप आई है कि नहीं आई? सही,
0: अब ठीक हो गया जी।
1: हाँ जी, वो मैं क्या जो मुझे कोई वो उसको पता चल जाता था ना कोई चीज की जरूरत है,
0: हाँ हाँ,
1: तो वो खुद ही ले आता था, पैसे नहीं मांगता था।
0: क्या बात है जी, क्या बात है।
1: दोस्ती हो वहाँ पे लेना देना, उधार नहीं चलाना, आपकी दोस्ती कायम रहेगी, बिगड़ेगी उधार से बिगड़ेगी,
0: पैसों की वजह से बिगड़ेगी। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, ख्याल रखिएगा।
1: एक छोटी सी बात हो रही, एक दफा ना वो ना चार पांच दिन मेरे मिलने नहीं आया, तो मैं उसके घर पहुंच गया।
0: अच्छा।
1: मैं बाहर से आवाज लगाई, मैं क्या काले घर है, थोड़ा भरा उसको भी काला बाहर आके कहना काला घर नहीं है। सर बड़ी बड़ी मेहरबानी, सारे मेरा दिल सलाम, सारे आरजी नु बोता बोता, जिन्हें मेरे भैन भरा आते हैं सारे बोता बोता सलाम, एडवांस ईद मुबारक जी मेरे।
0: जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच जी। प्रोग्राम में आवाज शामिल करेंगे जी लाला अताउल्लाह की, रंजिश ही सही, और इनके साथ दे रहे हैं जी अली सेठी,
4: बता
0: जी उनके साथ।

थैंक यू सो मच जी आपके मैसेजेस का। हमारे साथ मारिया अकबर कराची से मौजूद हैं। आपने मैसेज किया, आप कहते हैं जी अच्छे दोस्त की निशानी ये है कि वो आपके सीक्रेट्स को बहुत अच्छे से याद रखता है और वक्त आने पर भिगो भिगो कर ताने मारता है। मतलब आपने कहा कि सीक्रेट्स उसको याद होते हैं और जब भी वक्त आता है तो अच्छे खासे जो है वो भिगो भिगो कर ताने मारता है। और एक अच्छे दोस्त की पहचान ये भी है कि आप उससे कोई मशवरा करो और वो कहे हाँ कर लो, और फिर बाद में चीज़ें ख़राब होने पर कहे मैंने थोड़ी कहा था कि ये काम कर लो। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। हमारे साथ मारिया अकबर मौजूद थी कराची से। तो लिसनर्स शुक्रिया आपकी कॉल्स का, लेकिन थोड़ा सा ध्यान किया करें, फॉर्मेट को फॉलो किया करें। कुछ सीनियर लिसनर्स हैं और उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं इधर उधर हो जाती हैं। बहरहाल समर मुगल कॉन्ग्रेचुलेशन जी, फोर्थ कॉलर पहली बार शामिल हुई। जी हाँ, दो कॉलर्स नए आए हैं। उमर वकास साहब, आपने पोइट्री लिख भेजी है आपकी शायरी का, बहुत शुक्रिया। उमर वकास फ्रॉम मुल्तान से आप हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा मुश्तबा हुसैन, आपका मैसेज टेक्सला से था, ये हमने प्रोग्राम में शामिल किया। आप तमाम दोस्तों के मैसेजेस का बहुत शुक्रिया जो हमें फेसबुक पर रीच आउट कर रहे हैं जी। और 4471 पे हमारे साथ नजमा मौजूद हैं रावलपिंडी से। आप कहती हैं अच्छा दोस्त वो है जो आपकी एक पुकार पे आन पहुंचे अगर आप पे किसी भी किस्म का कोई मुश्किल वक्त है। शकील अहमद लाहौर से मौजूद हैं भाई, सलाम। वालेकुम सलाम जी। बेस्ट फ्रेंड वो होता है जो आपकी खुशी में बहुत खुश और दुख और तकलीफ़ के वक्त किसी भी रिश्तेदार से पहले एक कॉल पर आधी रात को भी आपके पास पहुँचे। मेरे दोस्त राना नादिर फ्रॉम SKP, आई थिंक सियालकोट पाकिस्तान या सियालकोट पंजाब आप लिखना चाह रहे हैं, को अल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी दें, आमीन। बहुत शुक्रिया जी। फरजान अली हमारे साथ थर पार्कर सिंध से मौजूद हैं। वो शख्स जो कहता था ज़रूरत पड़ी तो हुक्म करना, पागल तेरे लिए जान भी हाजिर है, और जब ज़रूरत पड़ी तो पता लगा कि इसके महज झूठे दिलासे थे, बेवफा दोस्त। फरजान अली साहब ने मैसेज कर दिया जी, और दुखी दिल हाजिर हो गए जी। फरजान साहब जी खुश रहें, अल्लाह ताला आपको खुश रखें, टेंशन ना लिया करें, भुला दें। निशायद सालार साहब हमारे साथ मौजूद। सर अच्छे दोस्त की निशानी ये है कि वो आपके साथ मुखलिस होगा और वो ऐसा दोस्त होगा जो आपके दिल के दिल की हर बात शेयर करें। सर एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो प्ले कर दें, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। ये मैं आखिर में प्ले करके जाऊँगा जी। या आई थिंक गज़ल की बात कर रहे हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा प्रोग्राम के आखिर में। सलाह साहब प्रोग्राम सुनते रहें, 1:55 पर लाजमी प्रोग्राम में शामिल करूंगा। अब्दुल नूर हाशमी साहब आप लाहौर से मौजूद हैं, आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया। ये कुछ मैसेजेस थे दोस्तों जो प्रोग्राम में मैंने शामिल किए फेसबुक के भी, और 4471 पे आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, खासकर 4471 वालों का, चूँकि ये रोकड़ा खर्च करके मैसेज करते हैं जी।

0: ड्रामा वर्जन जो है वो गाना प्ले हो गया जी। आई खाला हीर बन के आना, जहाँ पे कहती हैं गदिका कैनी, बड़ा ज़बरदस्त ये ट्रैक है, इसके लिरिक्स बड़े कमाल के हैं। रिसेंटली उनको एक अवार्ड भी मिला है और उस पर जो है वो नेशन बहुत ज़्यादा खुश है, चूँकि गदिका कैनी ने इंसानी खिदमत के लिए बहुत ज़्यादा काम किया फ्लड के हवाले से। इसके अलावा भी जब जब नेशन पे मुश्किल वक्त आया है उस पर इन्होंने बढ़ चढ़ के जी खिदमत की है। अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखें और इनकी ज़िंदगी में जितने भी मसले मसाइल हैं उनको ख़त्म करें, आमीन। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं, हम इनको जानते तो आप याद हैं कि म्यूज़िक की वजह से थे, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो बेहतर जानते हैं कि इनकी बाकी जो फील्ड्स हैं ख़ासकर इंसानी खिदमत में बहुत ज़्यादा इनकी जो है वो खिदमत हैं। अल्लाह ताला इनको इसका अजर दुनिया और आखिरत में देगा, आमीन। नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम, कह रहे भाई क्या रहे, ठीक ठाक?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसे आप?
1: अल्लाह का करम है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। कयानी भाई बदल गए हो आप।
0: मैं बदल गया हूँ
1: जी?
0: सर ऐसी बातें ना किया करें, क्या आपने देखा?
1: ऐसी बातें कर, 1:36 से काले में ला रहे हैं सर, आप गाने चला रहे हो तो गाने कौन सुनते हैं? हम तो आपको सुनते हैं यार।
0: नहीं नहीं देखिए, मैं गाना हल्का फुल्का चला के वापस आ जाते, देखें ये ना रूल है, मैं गाने नहीं चलाऊंगा तो मुझे चैनल घर भेज देंगे।
1: तो फिर मेरा भी गाना चला दो।
0: नहीं आप बताएं, मैं कोशिश करूंगा चलाने का उसको।
1: मैंने तो 2-3 मरतबा कोशिश की है मगर आपने चला ही नहीं है।
0: नहीं आप बताएं ना सर, बताएं।
1: दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने,
0: दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, इधर तो उम्मीदें तो हर कोई तोड़ता है लाला
1: भाई। तो यही तो बात है ना, यही गाना तो मैं चाहता हूँ कि आप सुनाए और आप क्यों उम्मीद हो जाए।
0: अच्छा आज चला देते हैं जी, आपने इतना गिला किया कि मैं बदल गया हूँ।
1: और सुना किस तरह,
0: अल्लाह का बहुत एहसान है, बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं कि अच्छे दोस्त की क्या पहचान होती है लाला?
1: अच्छे दोस्त की ये पहचान है कि बस आपने उसको देख लिया, उसके अच्छे दोस्त की पहचान उसके चेहरे से नजर आ जाती है। जब आपको नजर आ जाती है तो आप उसे, आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं आपकी क्या मदद करूँ।
0: अरे
1: आप उसे लाके, आप लाके उसे दे दो।
0: बड़ी प्यारी बात।
1: अक्सर यहाँ अक्सर लोगों को मैंने नोट किया, बोला यार बोलो आपको क्या परेशानी है। परेशानी क्या, आप उसको जूते दिलासे दे रहे हो, लाके उसके हाथ में रख लो।
0: हाँ बड़ी प्यारी बात की आप, ठीक हो गया लाला। आज आपको गाना चलाते हैं हम।
1: दो बंदों को मैं सलाम कर रहा हूँ। एक तो 2-3 महीने से किसी की कॉल नहीं आ रही थी, मैं टेंशन में था, मैंने कहा अल्लाह ना करे ये जो है ना कहना मैं कहाँ चली गई। एक हरिभा शाह को
0: आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है जी, मैंने नहीं की, आप जानते हैं कि मैं नहीं करता किसी भी की भी कॉल ड्रॉप। सेकेंडली मैं ये भी नहीं कहता कि आपका बैलेंस खत्म हुआ होगा, सिग्नल के आगे पीछे हो गए होंगे। अरीबा को आप जी सलाम दे रहे थे, एक सलाम तो हम तक पहुंच गया, दूसरा सलाम नहीं पहुंच पाया, चलें वो आप बाद में दे दीजिएगा। और आपने कहा क्या नहीं भैया बदल गए जी, क्या नहीं भैया बदल गए हो।

0: लुबना बहुत शुक्रिया आपने मैसेज किया जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हदीका क्यानी जो है उनकी बहुत मैजिकल वॉइस है और बहुत काइंड पर्सनालिटी है। उनकी ज़िंदगी जो है वो कुछ दो से लाजमी आप पढ़िएगा देखिएगा कि उन्होंने क्या खिदमात की हैं। तने तनहा ऑलमोस्ट इन्होंने 300 प्लस घर जो हैं वो, ये जब फ्लड वाला मामला आया था आपको याद होगा 2-3 साल पहले, पाकिस्तान की तारीख का बहुत बुरा सैलाब आया था जिससे हज़ारों ख़ानदान जो हैं वो अपने घरों से महरूम हुए थे। और घर से महरूम होना, आपकी छत चली जाना, ये मेरे ख्याल से अल्लाह ताला की सबसे बड़ी आजमाइश होती है। अगर आप बच्चों वाले हैं या फैमिली वाले हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, तो बस अल्लाह उनको अजर देगा। हदीका ने ये बड़ा अच्छा काम किया था। इसके अलावा लुबना आप कहती हैं ड्रामा आपने पूरा जी उडारी, आई थिंक इसके ड्रामे का नाम था, वो बहुत अच्छा ड्रामा भी काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ, लेकिन ये ट्रैक बहुत, मुझे वो लाइन बड़ी अच्छी लगी थी हीर बनाने वाली ना, तो हीर बन के आवांगी, तो आगे फिर वो खाला ने आवाज़ दे दी। ये उनके लिए ठीक है जिनकी शादियाँ खाला की घर हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है आपके?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कौन बात कर रहा
1: है? जी मैं लाहौर से रिमशा।
0: लाहौर से रिमशा बात कर रही है। रिमशा आजकल वो कॉल नहीं करते, आपने उनको मना तो नहीं कर दिया?
1: नहीं जी बिल्कुल भी नहीं, आज वो विदेशी मंडी गए हैं बकरा खरीदने के लिए। मैंने कहा था कॉल करना, लेकिन कह रहे थे कि मैं पहले बकरा खरीदूंगा फिर कॉल करूंगा।
0: कुरैशी मंडी गए हैं?
1: यही जानवरों वाली मंडी।
0: नहीं मवेशी आपने ठीक बोला था, मुझे लगा कि कुरैशी मंडी कह रही हैं आप।
1: नहीं नहीं मवेशी मंडी।
0: ठीक हो गया, तो आपके लिए कुछ स्पेशल गोश्त भेजेंगे वो?
1: लेकिन मैं गोश्त खाती नहीं हूँ।
0: अच्छा आप गोश्त नहीं खाती हैं, तो आप क्या खाती?
1: मैंने कहा, मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा मैं तो गोश्त खाती नहीं, तो कह रहे तीनों दिन में फिर मुर्गी कर लेता हूँ।
0: अल्लाह ताला जी आप लोगों को खुश रखे। रिमशा अच्छे दोस्त की क्या पहचान होती है? अब तक क्या आपको लगता है कि क्या होनी चाहिए
1: पहचान? भाई अगर मैं अपने लाइफ पार्टनर की बात करूं तो मेरे बिना कहे ही वो मेरी मजबूरी मुर्गी कर लेता हूं।
0: अल्लाह ताला जी आप लोगों को खुश रखे। रिमशा अच्छे दोस्त की क्या पहचान होती है? अब तक क्या आपको लगता है कि क्या होनी चाहिए पहचान?
1: भाई अगर मैं अपने लाइफ पार्टनर की बात करूं तो मेरे बिना कहे ही वो मेरी मजबूरी समझ जाते हैं।

0: आदत होती है कि जितने मर्जी अच्छे दोस्त हों, लेकिन मैं तो भाई ये कहती हूँ कि जो अच्छे दोस्त होते हैं ना वो आपके माँ बाप ही होते हैं, जो बिना कहीं आपके मजबूरी समझ जाते हैं।
1: ये बात आपने बड़े मजे की। दूसरी बात जो आपने कही है ना कि कहे बिना मेरी बात समझ जाते हैं वो, ये
0: बिल्कुल,
1: ये रिमशा मैं आपका दिल नहीं तोड़ता।
0: अभी देखिए कि अभी मैं इनकी लाइफ में आई नहीं हूँ, लेकिन हाँ, इनकी बातों को पकड़ लेती हूँ।
1: मेरी बात सुने ना, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाह रहा, लेकिन ये शुरू शुरू में और पहले पहले ऐसे ही होता है। ये
0: मैं
1: आपका बिल्कुल भी दिल नहीं तोड़ रहा हूँ जी, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। लेकिन ये हकीकत है कि शुरू शुरू पहले पहले एनजी होता है, बाद ही थोड़ा कम चेंज हो जाता है।
0: वो भी जाहिर सी बात है भाई, मैं भी ये भी समझती कि हाँ इंसान फिर आगे आगे मतलब इंसान के ऊपर काफी कुछ आता है, साथ सारी जिम्मेदारियां आती हैं, फिर इंसान उसमें वो हो जाता है, फिर इस वजह से इंसान के ऊपर काफी चेंज हो जाती है लाइफ इंसान की।
1: फिर बंदा ये कहता है पहले तो आप ऐसे नहीं करते थे, पहले तो मैं ये कहती थी आप वो कर लेते थे, आप क्यों नहीं करते। अपना ख्याल
0: रखें,
1: लेकिन अभी जो है
0: खुशी
1: मिल रही है, इश्तियाक अंकल जी हमारे दिलों के दर्द
0: है। और वैसे वो मेहमान है तो मैं यही दुआ करूंगी अल्लाह पाक सेहत दे, सलामत रखे,
1: मुस्कुराते
0: रहे, आते मुझे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। मेरी मामा बैठी हुई थी, हंस पड़ी, कहती कि कॉलर आ गए।
1: हाँ तो असल में ना हम इश्तियाक साहब को कहते हैं रेडियो कॉल काट के था करो, डॉक्टर ने चेक कराओ ताकि अल्लाह तुम सेहत दे।
0: बिल्कुल, डॉक्टर को चेक करवाएं, क्योंकि डॉक्टर को चेक करवाएंगे तो पता चलेगा ना कि आपको क्या मसला है।
1: चले अपना ख्याल रखिएगा रमशा, ठीक है।
0: आज भी सुनने वाले को शाम अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और आपको एडवांस में ईद उल अज़हा मुबारक।
1: बहुत शुक्रिया जी, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।
0: अल्लाह
1: हाफिज़। नेक्स्ट कॉल देखते हैं जी। 1:26 हो चुके हैं जी, आपका मेरा साथ रहेगा ठीक 2 बजे तक। बंदा नाचीज को कहते हैं जी, गजनफर महमूद कियानी। जून में जो फर्स्ट 2 प्रोग्राम है शायद मैं ना कर सकूँ, चूँकि मैंने कश्मीर जाना है, और कश्मीर से फिर वापसी होगी इंशाल्लाह ऑलमोस्ट 14-15 तारीख के बाद। तो फिर नेक्स्ट जो प्रोग्राम्स होंगे उसमें इंशाल्लाह आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे। ईद के दिनों में, चूँकि यहीं इस्लामाबाद होंगे, तो ईद के दिनों में आपको इंशाल्लाह ज़रूर ये 12 बजे के बाद की जो ट्रांसमिशन होगी इसमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन फर्स्ट जो आई थिंक मेरा ये लास्ट इंटरनेशनल प्रोग्राम होगा, नेक्स्ट जो है 31st को बन रहा है, या 1st को है, 31st को है जी वो प्रोग्राम होगा। फिर 1 से 2 इंटरनेशनल, ये जो 12 से 2 वाले प्रोग्राम्स हैं ये मैं नहीं करूँगा। मैं देखता हूँ कौन से आरजे अवेलेबल होंगे, वो ये प्रोग्राम करेंगे, चूँकि एनुअल लीव्स हैं तो वो फिर इंशाल्लाह गांव जाके गुजारनी है। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह वापस आके आपसे मुलाकात होगी। मैं तो जाके बहुत मिस करता हूँ वहाँ पर, चूँकि जहाँ पर हमारा घर है वहाँ पर नो इंटरनेट, नो सिग्नल, मोबाइल फ़ोन जो सिर्फ इसलिए कि अगर कोई चीज़ आपके पास डाउनलोड है तो आप वो देख सकते हैं। आप अंदाज़ा करें कि मैं जब भी ये गर्मियों की छुट्टियों में जाता हूँ गांव, तो पुरानी जितनी भी तस्वीरें होती हैं वो देखने का मौका मिलता है। किसी से फ़ोन पे बात करना हो तो अच्छी खासी 10-15 मिनट का फासला, वहाँ जाके सिग्नल आते हैं। तो ये कश्मीर के कुछ इलाके जो हैं, ये देरकोट ज़िला पुंछ जो है ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है माशाल्लाह। ये मीरपुर की बात की जाए वो तो खैर इंग्लैंड, उसको मिनी इंग्लैंड कहा जाता है, वहाँ पर हर किस्म की फैसिलिटीज़ हैं। ये जो मुजफ्फराबाद के ज़िले के कुछ गांव हैं जिसमें हमारा डन्ना की चिली थोड़ा सा आगे करके कोट तिराला एग्जैक्टली जो गांव का नाम है, उत्थे ना तो इंटरनेट आता है ना कुछ सिग्नल, बल्कि बत्ती आवाज़ चले तो बत्ती जाती है तो फिर मुड़ के फिर 2-3 दिन बाद ही आती है। बहरहाल नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे जी?
2: पहचाने जरा आप, कौन बात कर रहे?
1: असल में इतना बहुत कमजोर जहन है मेरा, मुझे चीजें याद नहीं रहती हैं।
2: अबीर
1: फातिमा फ्रॉम इस्लामाबाद।
2: हां जी, कैसे आप? ठीक
1: है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अबीर। मुझे लगता है या तो बहुत अरसे बाद आपसे बात हो रही है या पहली दफा बात हो रही है।
2: बहुत अरसे की बात हो रही है अबीर। वही पापाटे से पहले वही लिस्टर है जो बहुत रेगुलर कॉल किया करती थी, कुछ सुनाया करती थी। आज मैंने बहुत टाइम के बाद ऐसे मानो अनुभूतियों ने किया, आपकी आवाज सुनी और
1: अबीर

0: मौजू ये है आजकल के अच्छे दोस्त की पहचान क्या है, तो इस पे क्या ऐड करना चाहेंगे आप?
1: अच्छा कहने भाई, दोस्तियां तो हम कर लेते हैं, पहचान हमें दोस्ती करने के बाद होती है जब हम उनके साथ कुछ वक्त गुजारते हैं। और अच्छे दोस्त बेसिकली होते वही हैं कि जो आपके साथ बिना फायदा देखे आपके साथ हर मुश्किल अच्छे से बुरे वक्त में हमेशा आपके साथ रहे।
0: बहुत अच्छी बात की आपने कि बिना किसी मकसद के और बिना किसी लालच के अगर आपके साथ रहें तो ठीक हो गया। अभी बहुत शुक्रिया, कुछ और कहना चाहेंगे आप?
1: थैंक यू सो मच,
0: जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ जी। 1:30 हो चुके दोस्तों। ये टॉपिक रखने का मकसद मेरे जहन में आज कुछ और चीज़ें चल रही थी, मैंने कहा कि यार ईद से पहले प्रोग्राम है, इस पर हम ना थोड़ा सा सख्त किस्म के टॉपिक रखते हैं, उस पर गपशप करेंगे। लेकिन शाम को अब्दुल कदीर आरजे भी रहे हैं हमारे पास यहाँ पे और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, अब ये रेडियो छोड़ के वो कोई और प्राइवेट रेडियो कर रहे हैं, उनसे मुलाकात हुई तो एक जगह हम चाय पी रहे थे बैठे, मुझे कहते हैं कि यार आपको पता है कि कौन अच्छा दोस्त है, दोस्त अच्छा किसे कहते हैं? तो मैंने उनको कहा कि जो चाय का बिल देता है आपका ना, यानी तुम मेरे को पी जानते हो तो मैं चंगा दोस्त हूँ तुहाडा। तो ये वैसे लाइटर नोट पे मैंने उनसे बात की कि मैं क्या चाह तो थोड़ा बिल देता वो चंगा दोस्त है, कहते नहीं आप सीरियस नोट पे मैं आपसे पूछा, मैं कहा यार ऑब्वियसली जितने भी दोस्त हैं उन्होंने यही कहा जी लॉयल होना चाहिए, मुश्किल वक्त में आपके काम आना चाहिए और बिना किसी लालच के वो हमेशा आपके साथ खड़ा हो। तो उन्होंने एक बात की, मुझे कहते हैं कि यार अच्छा दोस्त वो होता है मेरी नज़र में कि जिसको कोई भी बात बताई जाए उसको दोबारा ये ना कहा जाए कि यार किसी ने दसी ना, मतलब राजदार आप जो है वो किसी को रखते हैं। तो मुझे वो बात बड़ी अट्रैक्ट की उनकी, बड़ी दिल को लगी कि यार ये बड़ी ख़ास बात की है कि अच्छा दोस्त वो है जिससे आप कोई बात कहें और आपको दोबारा ये ना कहने की ज़रूरत पड़े कि यार किसी को बताना नहीं है। अमूमन आप देखते हैं कि आजकल तो जब से ये टेक्नोलॉजी, जहाँ इसके बहुत ज़्यादा फ़वाद थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए, इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। स्क्रीन शॉट्स जो हैं, आप अगर 2-3 दोस्तों का आपका ग्रुप है या आप किसी के बारे में पर्सनल चैट करते हैं तो आपके दिल में ये भी डर लगा रहता है कि यार ये कहीं इसको स्क्रीनशॉट लेके कहीं दूसरे तक ना पहुंच जाए, फिर आप के पास कोई जवाब नहीं होता है कि आप उस चीज़ को डिनाई करें कि मैंने नहीं कहा। तो ये एक बड़ा मुश्किल सूरत हाल होती है कि अगर आप किसी के बारे में कोई बात करें तो आगे से वो एज इट इज़ फॉरवर्ड कर दी जाए, तो आप किसी का दिल झांक के नहीं देख सकते कि आपके साथ कौन कैसा है। मेरी नज़र में अच्छे दोस्त की क्या पहचान, तो खैर मैं नहीं कहूँगा चूँकि इंसान नहीं पहचान सकता आजकल के दौर में, या ये शायद मेरी नालायकी है, मुझे नहीं पता चलता। एक तो मुझे ना नहीं करना आता, मैंने बहुत डांट खाई है इस हवाले से, इवन मैडम सदफ़ से भी बहुत दफ़ा, हालांकि मैंने मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो रेडियो ही थी माजे के साथ ही।

0: अब बहुत दफा इस तरह वहाँ कुछ टास्क मैडम ने दिए, मैंने जी जी मैम जी सर करके वो निपटाए, और बाजू का इस तरह होता है कि चूँकि हमारे स्टेशन के साथ कुछ दीगर भी स्टेशन हैं जो रेडियो पाकिस्तान के ही अंडर काम करते, तो वहाँ के कुछ दोस्तों ने कुछ काम वगैरह दिया तो वो भी मैंने ठीक है कर लिया। तो मैम को जब पता चला तो मैडम ने कहा कि जेनिफर आपको ना करना आती है कि नो किसे कहते हैं। मैं कहा मैम मुझे समझ नहीं आई, कहती हैं कि जिंदगी में कामयाब तब होगी जब इनकार करना सीखोगे, हर चीज़ पे नहीं लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आप ना इनकार करना सीखते हैं, नो बोलना, तो ये भी एक बड़ा आर्ट है। आप बाज़ अवकात फैमिली में देखते हैं ना, या आपने ग्रुप्स में कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपके ग्रुप में कोई एक ऐसा दोस्त ठा करके ना, तो हम उसको आम अल्फाज में कह देते हैं यार थोड़ा सा मुँह फट है, दिल नहीं रखता, बस जो मुँह में आता है वो कह देता है। मेरे ख्याल से वो लोग ना ज़िंदगी में बड़े कामयाब लोग होते हैं जो लिहाज रखें आप चीज़ों का, लेकिन जहाँ आप जाके काफ़ी आपको डैमेज चीज़ें हो रही होती हैं फ़ौरन आप ना कर दें तो आपके लिए बड़ी आसानी होती है। यही केस आपसे कोई बाइक मांग ले मुझसे नहीं ना होती, गाड़ी मांग ले नहीं ना होती, बाद में सर पकड़ के बैठा रहता हूँ कि यार ए की हो गया ओ की हो गया। तो दोस्तों अगर आप मेरी इस वक्त आवाज़ सुन रहे हैं, आप में भी क्वालिटी कि आप ना नहीं कर सकते, तो प्लीज़ ना करना सीखें, और ये छोड़ दें कौन क्या कहेगा, ये कहने वाले मामलात ना अच्छी खासी उम्र हमारी भी होगी, हमसे पहले भी ये लोग कह के गुजर गए कि यार लोग नहीं माफ करते किसी भी हालात में। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम, कहने भाई कैसे हैं?
0: और सर जी क्या हाल है आपका, ठीक है?
1: अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने कहा कि भाई इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है लेकिन यार आपसे बात किए बगैर रहा नहीं ना जाता।
0: मैं सदके जावा, मैं मना थोड़ी की था, मैंने तो दूसरे हाफ में कहा है कि हम मेरे रेगुलर लिस्टर कॉल आप नहीं करेंगे तो कोई करेगा नहीं, फिर मैं की करेंगे इतने कला बह के।
1: नहीं नहीं इंशाल्लाह से भाई जिथे भी हो साडे दिल दे इक भाई रहंदा है, माशाल्लाह यार दोस्त की गल यही करांगा कि पहली बात तो ये है कि दोस्त वो होता है जिसको देखते ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए।
0: हाँ, जिसको देख के आपके
1: जितनी बीमारी में भी हो जितनी परेशानी में भी हो जब वो सामने आए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए।
0: बहुत प्यारी बात की आपने, बहुत प्यारी बात।
1: तो दूसरी बात ये है कि दोस्त वो होता है वो आप वाली बात की जिसको कहना ना पड़े किसी को बताना ना पड़े, यार किसी को बताना मत। कोई अच्छी मिस्टेक हो जाती है ना, क्या नहीं भाई वो उधार की पहले भाई बात कह रहे थे ना, अगर इतना अच्छा दोस्त आपकी जिंदगी में है ना तो आप 1,000 या 500 के लिए कभी भी उसको गवाना मत, क्योंकि गलती इंसान गलती का पुतला है वो उससे गलती हो जाती है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा शो है। आज ना यार वो ना हमारे इलाके के आते थे राणा हसन, बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं, यकीन करें मैं ना 2-3 हफ्तों से आपके शो में वो आते हैं।
0: अच्छा,
1: तो उनकी बड़ी वेट कर रहा था क्योंकि वो हमारे इलाके के हैं, आवाज सुन के खुशी भी होती है कोई मंडी का और भी तो जाग रहा है।
0: अच्छा अच्छा, नहीं नहीं अभी तक तो नहीं आए, बहरहाल चले आएंगे तो उनको खुशामदीद कहेंगे हम, ठीक है?
1: तो तमाम सुनने वालों को सलाम, आपके लिए ढेर सारी दुआएं। तो मेरे एक दोस्त इस वक्त सुन रहे हैं अहम रशीद बावल नगर से, उन्होंने मुझे याद किया था तो बहुत शुक्रिया, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।
0: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ जी। ये लिरिक्स सुनिएगा दोस्तों, ये वाले थोड़े से

एक बजकर 43 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, आपका मेरा कुछ ही साथ है। और शायर कहता है कि दरवाजे को दस्तक जिंदा रखती है, जैसे दिल को दख दख जिंदा रखती है। क्या बात है जी, आप ये अपना हाथ जब सीने पे रखते हैं तो आपको धड़कन फील होती है, और बाजू का जब आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं ना, रनिंग करें, अगर आप रनिंग से याद आया वज़न कम करने वाली बात, तो अच्छी खासी आपको फील होती है जी। वज़न कम करना, आप देखें मोटिवेशन कहाँ तक पहुँच गया है। मैं अभी आपको स्टोरी सुनाता हूँ, पहले मैसेज पढ़ दें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्यानी भाई कैसे हैं आप? मैं महताब तनोली, पाकिस्तान आर्मी फ्रॉम मानसेरा हज़ारा से। क्यानी भाई मैंने अगेन 101 सुनना शुरू किया है, वाहिद आपकी वजह से। खुश रहें, आबाद रहें, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं। मैडम नूर जहाँ का कोई सॉन्ग प्ले करते हैं। सर मैंने इसके बाद ना लिस्ट में शामिल किया और प्रोग्राम में शामिल करूँगा। रमज़ान से ना एक डेढ़ माह पहले अब मैंने कहा जी वज़न कम करते हैं, वो क्यों यार? रमज़ान में पकौड़े खाने हैं जी, ताकि वो आसानी हो जाए। वो कोई नहीं जी, एक दो दिन डाइट हुई, अगले दिन ऐसी कोई तबीयत ख़राब हुई कि मैं क्या भाई जान छोड़ो, डाइट की करनी है, ज़िंदगी एक ही बारी मिली है, नहीं करते डाइट। फिर अब ये जो महीना मई का शुरू हुआ, मैंने कहा यार गर्मियाँ हैं, पानी की इनटेक ज़्यादा करते हैं दोस्तों। वैसे पानी की इनटेक का इनटेक बोले तो आपने ज़्यादा पानी पीना है, ठीक है। हम जो है वो एक तो ठंडा पानी अवॉइड किया करें, नॉर्मल टेम्परेचर का जो है वो पिया करें, लेकिन पानी इन दिनों में आपने ज़्यादा पीना है। तो मैंने कहा यार मई का महीना है, मई जून में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, गर्मी होती है तो बंदा वज़न कम कर। वो एक दो दिन डाइट की थी, फिर तबीयत ख़राब, फिर उसके बाद अभी अभी क्या मोटिवेशन है अंदाज़ा करें। छुट्टियाँ लिया यार, गाँव जाना है, घूमना फिरना है, तो खाए पियेंगे, वापस आके देखते हैं जी डाइट क्या करनी है। तो मुझे लगता है वो मेरे कज़न मुझे कहते रहते ना तो तेरे को वज़न घट होना है, तो ना तू ना ये छाट ही दे डाइट शाइट नो। तो ये देखिए मोटिवेशन इंसान कहाँ कहाँ से लेता है। दोस्त की क्या पहचान है दोस्तों? जहाँ तक मुझे अभी तक समझ है, मैं पिछले दिनों लाइफ के बड़ा टफ टाइम चल रहा था, तो कुछ मल्टीपल चीज़ें होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, जॉब भी है और भी मामलात हैं कुछ, तो उन सब को लेके ना, तो मैंने एक दफ़ा ये इसी तरह का कोई टॉपिक रखा तो उसमें बात की थी कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त है ना जिसको आप ना अपना प्रॉब्लम बता रहे हैं और वो आपको खाली सुन रहा है, मतलब देखें एक चीज़ हमेशा मैंने अपने प्रोग्राम में की कि खुद साख्ता जो आजमाइश है वो किसी पे लागू नहीं करनी चाहिए। मतलब मैं ये दिल में ये सोच के या किसी को बता के कहूँ कि यार मैं ये प्रिटेंड करता हूँ, इसको देखता हूँ ये इसमें क्या करता है, अगर आप ऐसे करके किसी को आजमाते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपना बहुत कीमती रिश्ता खोएंगे, चाहे वो कोई भी है। तो खुद साख्ता आजमाइश आपको किसी पर नहीं डालनी चाहिए। हाँ यानी खुद साख्ता आजमाइश इन अ सेंस के खुद साख्ता टेस्ट किसी को आपने नहीं करना। अल्लाह ताला की तरफ से आप पे कोई चीज़ आई है तो ऑब्वियसली वो फिर पता चल जाता है चीज़ों का, तो उस पर कौन आपका बेहतरीन दोस्त है, कौन आपके करीब बात। अगर कोई आपको सुन रहा है बिना आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ किए, आपकी पूरी बात सुन के आपको कोई अच्छा सा मशवरा दे देता है, देखें बात वही है कि सहना आपने है, मुश्किल वक्त है तो आपने ही सहना है उसमें, कोई आपका दर्द कोई नहीं बांट सकता दोस्तों। जब आपको तकलीफ़ होती है, खुदा ना खासा आपकी सेहत ठीक नहीं है, जो पेन आपने सहना है वो सिर्फ आप ही हैं, कोई आपसे कोई आप भार नहीं है, कोई आपसे ले लेगा कि यार थोड़ा जब पार मेनू दे दे, या वो उठा लेगा आपका भार तो आपकी सेहत ठीक हो जाएगी, तो सहना आपने खुद ही है। तो अगर कोई इस 2026 इस भागती दौड़ती दुनिया में नफसा नफसी की दुनिया में अगर आप क्या कोई इशू बैठ के बिना फ़ोन यूज़ किए प्यार मोहब्बत से आपको सुनता है, आपको टाइम देता है, तो मेरे ख्याल से वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा है, और कभी आप बेधड़क होके कह सकते हैं कि यार ये बंदा ये मेरे बारे में ये नहीं कह सकता, बाकी आप कुछ भी कहलवा लें। तो ये एक मुझे लगता है कि अब तक मैं ये समझ पाया, तो मैं उस टाइम यही कहता दोस्त मेरे एक है, उसका मैं जिक्र भी करता रहता हूँ, अब्दुल कदीर। अब हम साथ बैठते हैं, बात ना भी करें, बस चाय पीते हैं इकट्ठे बैठ के, लेकिन अच्छा टाइम गुजर जाता है। तो अच्छे दोस्त होना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपको ना सहारा मिलता है, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये मैडम नूरजान को सुने, ये क्या कहती हैं, वापस आता हूँ, एक से दो कॉल शामिल करेंगे, फिर आपसे चाहेंगे इजाज़त। मुझे कहते हैं गज़नफ़र महमूद क्यानी, आपको क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। किताबों में फूल रखने से एक बात याद आई, वो बताऊंगा आपको।

0: एक बजकर 52 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, आपका मेरा साथ बस ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट का है। और ये ट्रैक जो आप सुन रहे हैं, किताबों में कभी फूल रखना और दरख्तों पे कभी नाम लिखना, दरख्तों पे नाम लिखने के वाले से मैं ये कहा करता था कि दरख्त पे महबूब का नाम लिखने से बजाय महबूब के नाम का एक दरख्त लगाएं, ताकि आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए भी फ़ायदा हो और कुछ जो है वो आपको भी इसका सवाब मिलता रहे। और हम उस जनरेशन में थे जब, आपको याद होगा, कोई दोस्त अगर सुन रहे हैं, बुक्स और इन्हीं किताबों में ना मोर के पंख पर रखे जाते थे, और उस टाइम ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि दो हो जाएंगे। और कुछ लोग तो और चीनी भी डालते थे उसके, यार इसको चीनी खिलाएं खाता है, दो हो जाएंगे। तो वो देखें कैसा दौर हुआ करता था, हम मतलब कहाँ क्या सोचते होते थे कि यार ये जो पर है उसको बड़ा संभाल के रखा जाता था, बड़ा खूबसूरत मोर के पर जो हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं, और वो रखे जाते थे बाकायदा तौर पे, और एक से दो होंगे, दो से तीन, और देखें क्या क्या चीज़ें हमने देखी हैं। और इसके अलावा अभी जब ये ट्रैक मैं सुन रहा था तो वो हल्का सा रिकॉल किया ना अपना रेडियो टाइम का सुनने का, तो उस टाइम हम ये सोचते थे कि यार जब ये प्रेजेंटर जो हैं गाना लगाते हैं क्या करते होंगे स्टूडियो में, मतलब क्या इनकी एक्टिविटीज़ होती होंगी। तो अभी हमारा, चूँकि मैं जब प्रोग्राम करता हूँ लाइटिंग वगैरह सारा ऑफ करके स्टूडियो में, एक जस्ट वो बाहर ड्यूटी रूम की लाइट जलती है, तो मतलब वक्त जो है वो कितनी तेज़ी से भाग दौड़ कर रहा है। दोस्तों आप जानते होंगे कि जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं या न्यूज़ वगैरह देखते हैं, कि अब से कुछ दिन कबल जो है, ऑलमोस्ट 2 दिन पहले, रवात शहर जो है ये मतलब खानापुर से आगे आप जाए, बहुत बड़ा शहर है, तारीखी शहर है, और वहाँ जी बाज़ार में आग लगी है और काफ़ी करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है जी। और जो लोग ऑब्वियसली ईद की तैयारियां कर रहे थे, अब उनका जो है वो गम में बदली है सारी चीज़ें, उनके घरों के चूल्हे बंद हुए हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो लोग लोन लेके, मतलब उधार लेके कारोबार शुरू करते हैं अपना, तो मेरी ये दुआ है उन सब के लिए कि अल्लाह ताला जो है वो उनके लिए कोई ना कोई वसीला बनाए। अगर हमारी आवाज़ कोई ऐसी पर्सनैलिटी सुन रही है जिसको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में बहुत कुछ दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ अप्रोच करें उन शॉप्स वालों को, उन दुकानदारों को जिनका लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है, सारा ना सही लेकिन कुछ ना कुछ उनकी मदद ज़रूर कीजिएगा। एक तो अल्लाह ताला ही उनकी मदद करेगा इंशाल्लाह, लेकिन आप में से कोई दोस्त अगर आवाज़ सुन रहा है, चूँकि रवात में हमारे बहुत ज़्यादा लिसनर्स हैं, कॉल करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे दोस्त हैं, उनका वो ससुराल है, तो 2-3 दफ़ा मेरा भी आना जाना वहाँ पे हुआ है, तो बहुत बड़े पैमाने पर वो आग से नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला उन सब को सब्र दें, उन सब को हिम्मत दें, और उनके लिए नया कारोबार शुरू करने का जो है वसीला, और दोबारा हिम्मत पैदा करें अल्लाह ताला उनके, कि वो खड़े हो सकें। इसके अलावा जी मेरी क्लास फेलो करती थी, मैं किताबें ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया समरा। समरा कहती हैं जी, ये जो मोर के पंख वाली आपने बात की, ये आपकी क्लास फेलो करती थी, बिल्कुल ठीक है जी, हमने भी ये बहुत ज़्यादा किया है कि मोर के पंख रखे हैं लेकिन चीनी नहीं पाई, एक हम कभी नहीं किया। अल्लाह ताला जी आप तमाम दोस्तों को हमेशा खुश रखें। आज वक्त का पता नहीं चला, मैं आखिरी कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं जी मेरी किस्मत क्या है, किस से बात होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। नज़ीर साहब बहुत शुक्रिया आपका, नहीं सेकंड हाफ में तो मैं हुक्म किया हुआ जी,
1: तो मैंने कहा हमारी ये सीनियर सिटीजन दोनों ये तो ज्ञानी साहब की बात नहीं सुन रहे हैं, तो चलो हम तो सुन लेना कम से कम।
0: सर जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह, नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा, देखें बस वो ये बात है, वो शायद जब मैं बात कर रहा होता ना उसी टाइम कॉल मिला रहे होते हैं।
1: जी
0: साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? से ठीक है आपकी?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है।
0: सर क्या आखिर में कुछ दोस्ती के हवाले से कोई कहेंगे?
1: दोस्ती के हवाले से ये बातें तो सब लोगों ने की हैं, है भी ऐसी कि जो दोस्त दुख सुख में शरीक ना हो, तो वो दोस्त दुख सुख में शरीक तो लोग होते ही हैं, और दोस्त को तो होना भी चाहिए ना,
0: ऐसे ही
1: दोस्त है ना,
0: बिल्कुल।
1: तो यानी एक दूसरे को देखते ही उनको एक दूसरे की तकलीफ का एहसास हो जाना चाहिए कि लेकिन जो मैं एक खास बात करना चाहता हूँ वो ये है कि दोस्ती का पता तब चलता है जब आपने आपने कभी कोई हल्की सी नाराजगी हो जाती है। जब आप नाराजगी हो जाती है तो फिर आप देखें कि अगर आपके दोस्त के साथ कोई आदमी, जब नाराजगी में थोड़ा दिल होता है ना इस तरह, तो कोई दूसरा आदमी वो कहे कि जी ये नजीर साहब यार तो ऐसे हैं या वैसे ऐसे, तो वो कहे खबरदार, तो कोई बात नहीं करनी, वो मेरा नजीर साहब का मामला है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है।
0: बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल
1: ऐसे पता चलता है दोस्ती का कि हाँ ये दोस्ती है या कैसी है।
0: बिल्कुल ऐसे
1: वो आपकी आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका आपके साथ हो, बेशक नाराज है फिर भी आपके साथ है।
0: सही बात है, बहुत प्यारी बात की रजी साहब, जज़ाकअल्लाह, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। दोस्तों आप तमाम दोस्तों की लाइव कॉल्स का, एसएमएस का, और जो दोस्त कनेक्ट रहते हैं फेसबुक के ज़रिए, आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जी। मुझे गज़नफ़र महमूद क्यानी कहते हैं, आप फेसबुक पर आर जे गज़नफ़र क्यानी के नाम से पेज है, उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थर्सडे फ्राइडे मेरा हाउस सेट होता है, लेकिन वो थर्सडे फ्राइडे ईद का सेकंड और थर्ड डे बनेगा, इंशाल्लाह ईद पे आपसे मुलाकात होगी, फिर उसके बाद एक से दो प्रोग्राम्स जो हैं वो मैं छुट्टियों पे होऊंगा, वो नहीं कर पाऊँगा। आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है, और जाने से पहले हमेशा की तरह एक बात कि ज़िंदगी में कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी दूसरे शख्स का दिल ना दुखे, अपने असाज़ा इकराम का हमेशा एहतराम किया करें, वालिदैन का ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें, और एक दुआ अल्लाह ताला की ज़ात से ज़रूर किया करें कि रब ताला की ज़ात हम सब को इस दुनिया में अपनी ज़ात के सिवा किसी दूसरे का मोहताज ना करें, आमीन। ज़िंदगी शर्त है दोस्तों, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और जाते जाते एक छोटा सा मशवरा आपको कि कोशिश करें कि आपके सुख का सबब कोई शख्स ना हो। अल्लाह हाफिज़।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: तरबियत दी जाती है उसके ऊपर आप देख
1: You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.

Tranquilo.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

मोमिनो, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिस में खुलकर बैठो तो खुल बैठा करो, अल्लाह तुमको कुशादगी बख्शेगा। और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो। जो लोग तुम में से ईमान लाए हैं और जिनको इल्म अता किया गया है, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करेगा, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है।

कह दो कि मौत जिससे तुम गुरेज करते हो वो तो तुम्हारे सामने आकर रहेगी, फिर तुम पोशीदा और जाहिर के जानने वाले अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर जो जो कुछ तुम करते रहे हो वो तुम्हें सब बताएगा।